You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। आज शनिवार 10 अक्टूबर 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5:01।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

Chillax with Radio Musty. A very good

0: मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? सैटरडे की एक खूबसूरत सुहानी और म्यूजिक से भरी सुबह में आप सभी का बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। वैसे अभी मौसम सुहाना होने वाला है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो ज़रूर कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुहाना होगा, यही मैनिफेस्ट करती है और आप देखेंगे कि यही होगा। और मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया और आप सुन रहे हैं चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। सुबह की बज रही है 5:06। अक्टूबर का महीना चल रहा है, वीकेंड आ चुका है और वीकेंड की सुबह का अपना ही एक अलग मज़ा होता है ना। ना ऑफिस से पहुँचने की जल्दी, ना स्कूल की भाग दौड़, ना मंडे वाली टेंशन। बस आराम से अपनी चाय या कॉफ़ी का कप उठाइए, आप बैठिए, खिड़की से आधी ठंडी हवा को महसूस कीजिए और अपनी सुबह को बनाइए एकदम खूबसूरत। देखिए हमने आज के चिलैक्स की शुरुआत कितने प्यारे गाने के साथ किए है। एंड जो हमने गाना अभी चलाया, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, लता जी की मधुर आवाज़ में गाना हमने चलाया तूने ओ रंगीली। क्या जादू है लता जी की आवाज़ में। कुछ आवाज़ें होती ही ऐसी है जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, क्या कहते हैं आप? और उनके गाने सुनते ही सुबह में एक अलग सी मिठास घुल जाती है। आप याद रखिए कि आज का दिन खूबसूरत होने वाला है और पता है इस खूबसूरती की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी सोच से। आज सुबह उठते ही अपने आप से एक वादा कीजिए कि चाहे कल का दिन कैसा भी रहा हो, आज मैं अपने दिन को एक नई उम्मीद, एक नई मुस्कुराहट और एक नए नज़रिए के साथ शुरू करूँगा। So come on, let's manifest कि ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन होने वाला है। दिल से कहिए कि आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ नया होगा और आज मैं खुद भी खुश रहूँगा और किसी और के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाऊँगा। चलिए तो यहाँ पर इट्स योर चिलैक्स रिया के साथ और बहुत सारी बातें करनी है आज, लेकिन गाने भी तो चलाने हैं। तो लेट्स से हियर अ ब्यूटीफुल गाना, हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है। एंड नॉट टू फॉरगेट आपकी डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499 1094।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

Chillax with Radio Musty. सुबह की इस खूबसूरत घड़ी में एक छोटी सी बात करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि हम अपने दिन की

0: शुरुआत कितनी बैड अक्कल की परेशानियों के साथ करते हैं, आंख खुलती ही और दिमाग में वही सोच, अरे ये काम करना है, वो काम पेंडिंग है, उसका फोन आना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बहुत कुछ दिमाग में चलता फिरता है और फिर दिन शुरू होने से पहले ही हम थक जाते हैं। इसलिए आमतौर पर आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि जब हम उठते हैं, सवेरे सवेरे उठते हैं बेड से, बिस्तर से, तो थकान महसूस होता है एंड इसी वजह से ही तो थकान महसूस होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आज सुबह हम अपनी सोच बदल दें तो अगर आँख खुलते ही हम ये कहे कि थैंक यू, एक दिन और मिला है हमें और एक और मौका भी हमें मिला है और कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का, अपनों के साथ समय बिताने का, तो कैसा लगेगा? वल, हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे कुछ मिनटों पहले और इस मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके अच्छी चीज़ों की कल्पना करना नहीं है। इसका मतलब है अपने इरादों को साफ रखना, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना और फिर उस डायरेक्शन में छोटे छोटे कदम उठाना। जी हाँ, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं, छोटे छोटे कदम ही आप उठाइए और देखेंगे कि ये हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आज का दिन पीसफुल हो तो सुबह सुबह ही अपने आप को आप अननेसेसरी स्ट्रेस से मत दीजिए और आप चाहते हैं कि रिश्तों में मिठास बनी रहे तो किसी अपने को एक प्यारा सा मैसेज आप ज़रूर भेज सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े तो जिस काम को आप टाल रहे हैं उसकी शुरुआत कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात है, हर चीज़ परफेक्ट होने का इंतज़ार मत कीजिए, कभी कभी इम्परफेक्ट दिन में भी बहुत खूबसूरत पल छुपे होते हैं। तो मेरे साथ आप एक बार जरूर दिल से कहिए कि आज का दिन मेरे लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज लेकर आया है, मैं खुशी को वेलकम करने वाला हूँ और मैं सुकून को वेलकम करता हूँ साथ में। और आप देखेंगे कि ये दिन माइंड ब्लोइंग बन जाएगा, संडे नहीं, सैटरडे संडे ये जैसी वाली बात हो जाएगी। वीकेंड वाइब्स हम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका साथ मिले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते चलिए क्योंकि चिलैक्स पर म्यूजिक का सिलसिला जारी है। We've got beautiful सदा बहार नगमे आपके नाम, आपकी सुबह को और भी हसीन बनाने के लिए लेकर ये ब्यूटिफुल ट्रैक्स हम इस सुहाने म्यूजिकल सफर में चलिए बढ़ जाते हैं। वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और वीकेंड की सुबह को दिल से महसूस कीजिए। दिस इज योर ट्रैक्स रिया के साथ। आपके मैसेजेस हम थोड़ी देर में लेकर जरूर वापस आएंगे।
1: विद रेडियो मास्टी, योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।

0: Chillax with Radio Musty.
1: इन खूबसूरत गानों के साथ आशा करती हूँ कि आपका दिन धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ रहा है और खूबसूरत बन रहा है। बस हम यही विश करते हैं। चलिए आपके मैसेजेस की ओर अभी हम बढ़ेंगे। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर। जयशन जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला आप ही का मैसेज आ जाता है यहाँ पर, सो प्रणाम आपको। और नेक्स्ट ट्रैक आप अपने दोस्तों के नाम तरकीब करते हैं, यानी कि आप काम पर जा रहे हैं या ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। सो आपके नाम तेम दानू, जीवन, अंगुतिया, आकाश, अरविंद, मेविंद, सभी के नाम हम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करेंगे, जरूर, क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग, अनिता चमन लालमाटी से है और डेडिकेट करना चाहती है नेक्स्ट गाना फो नातिन नायरा कालीचरण, जो आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। आज 2 साल की हो गई है। सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू नायरा। बहुत ही खूबसूरत नाम है और आई विश कि आपका दिन उतना ही खूबसूरत हो। सो बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम नाना अजीत, पापा अवि, मम्मा प्रीतिशा, मौसा है आकाश एंड शम, मौसी पूजा है नताशा एंड भाई है निवेश। आपको विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी ओर से भी, रिया की ओर से भी आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। साधना हमारे साथ है जुड़ चुकी है और अपने पति मुकेश के नाम आप नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं। ऑलराइट, आप भी लालमाटी से है, लगता है कि लालमाटी से बहुत सारे लोग हमारे साथ है जुड़े हुए हैं, तो आपका स्वागत है यहाँ पर। और रेडियो मस्ती के गाने आप एंजॉय करते रहिए। इट्स सैटरडे वीकेंड, वैलिड वाइब्स तो हम जरूर क्रिएट करेंगे और आपका साथ मिले तो हमने कहा है ना, क्या कुछ नहीं कर सकते। सो यस, यहाँ पर सारा बानू जी और अब्दुल हमारे साथ कनेक्टेड है और नेक्स्ट ट्रैक आप अपने दोस्त नशरीन, शाकिल, केशव के नाम डेडिकेट करते हैं। ऑलराइट, जरूर नहीं। एक अच्छा सा गाना बाबू की, धनेश्वर जी और सुनीता के नाम दीवानन, रेखा, संजीव, निशा एंड दावे दोस्त परिवार के नाम गाना जाता है। गुड मॉर्निंग आपको भी एंड विशिंग एवरीवन अ ब्लेस्ड वीकेंड। आपको भी हम यही विश करते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रैक जाता है सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, उर्वशी और सभी के नाम एंड यहाँ पर आपने क्या बहुत ही खूबसूरत मैसेज भेजा है। थैंक यू फॉर दिस लवली मैसेज। यहाँ पर वी ऑल्सो हैव हमारे साथ कौन, आप है विदुषा। विदुषा कैसी है आप? गुड मॉर्निंग आपको, सेबास्टोपोल से जुड़ी हुई है एंड आई विश एवरीवन अ हैप्पी

0: Saturday morning. And not to forget, tomorrow Ma Durga is coming to bless us all. जी हाँ, ये भूलने वाली बात है तो नहीं है. कल it's gonna be so beautiful. Yeah. वैसे आज से ही, अभी से ही ये जो वातावरण है बहुत ही पायस बन चुका है और माँ दुर्गा आ रही है, क्यों नहीं अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए. तो हम ज़रूर इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में. एंड आपके नाम, आपके पति के नाम, विमल के नाम एक ब्यूटीफुल गाना. वैसे आपकी, आपका छोटा बेटा भी है शिवांश, उनके नाम हम ज़रूर गाना डेडिकेट करेंगे. एंड एक और मैसेज यहाँ पर, वन ऑफ विश हैप्पी बर्थडे टू किरण सोहाई फ्रॉम सोहाई पेमी सौ तहसन सुनक सिंह ओहादन से बालक का परिवार जो है रोज हिल से. हैप्पी बर्थडे जो भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपको हैप्पी वाला बर्थडे. और साथ ही साथ दूतिका हमारे साथ है, जुड़ी हुई है रघुजना परिवार के नाम. नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करती है, राइट? नेक्स्ट गाना आपके नाम.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.
3: हाँ,
4: या चुप रहूं
3: ना,
4: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अपने घर मिलाते चलिए पौने छह बज रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि आज आपका दिन कैसे कटेगा. इस योर राशि टाइम.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है. अगर कोई काम काफी समय से पेंडिंग है तो आज उसकी शुरुआत करने का

0: अच्छा मौका है, फैमिली के साथ हर समय बिताने से मन खुश रहेगा, बस जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचे और अपने दिन को मुस्कुराहट के साथ एंजॉय करें। लकी नंबर है आज आपका 9।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज आपका ध्यान अपने परिवार सुकून और पर्सनल हैप्पीनेस पर रह

0: मन में कोई नया आइडिया है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं और दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुने। आज का मंत्र है खुश रहिए और खुशियां बांटिए। लकी नंबर है आज आपका 5।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आज अपनी इमोशंस और इनर पीस को इम्पोर्टेंस दीजिए। कभी कभी दूसरों का ख्याल रखते रखते हम खुद को समय देना भूल जाते हैं। वीकेंड पर अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए, घर वालों के साथ समय बिताइए और मन को रिलैक्स होने दीजिए। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात करके भी अच्छा लग सकता है। अपने पॉजिटिविटी को बनाए रखें। लकी नंबर है आज आपका 2।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म भरपूर रह सकता है। किसी क्रिएटिव एक्टिविटी या नए प्लान में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। अपनी बात रखने में हिचकिचाए नहीं, लेकिन दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश करें। पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़ा प्यार और अप्रिसिएशन दिखाना दिन को और भी खूबसूरत बना सकता है। अपनी स्माइल को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। लकी नंबर है आज आपका 1।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज आपका मन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने और पेंडिंग काम पूरे करने में लग सकता है, लेकिन याद रखिए हर समय प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी नहीं होता। वीकेंड का मज़ा लेने के लिए खुद को भी ब्रेक दीजिए। किसी अपने की सलाह आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी दे सकती है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें और अपनी मेहनत की कदर करना ना भूलें। लकी नंबर है आज आपका 5।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज आपके लिए रिलेशनशिप्स हार्मनी और हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। किसी अपने के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिले तो उसे ज़रूर आप एंजॉय कीजिए। अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है तो शांति से सोचकर फैसला लें और अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बनाएं और दूसरों की अच्छी बातों की तरफ की तारीफ करने में कंजूसी ना करें। आपकी एक प्यारी सी बात किसी का दिन बना सकती है। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज अपने गोल्स पर ध्यान देने के साथ साथ अपनी इमोशनल वेलबींग का भी ख्याल रखें। कोई नया थॉट या आइडिया आपको अपनी प्लानिंग पर दोबारा सोचने के लिए इंस्पायर भी कर सकता है। हर बात को दिल पर लेने के बजाय कुछ चीज़ों को जाने देना चाहिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताने से अच्छा महसूस हो सकता है। भरोसा रखें लेकिन फैसले प्रैक्टिकल सोच के साथ लीजिए। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: सैटरडे आपके अंदर एडवेंचर और कुछ नया करने की इच्छा जगा सकता है। किसी आउटिंग, फैमिली गैदरिंग या दोस्तों के साथ छोटे से प्लान का मजा ले सकते हैं। अगर रूटीन से बोर हो गए हैं तो अपने दिन में कुछ नया शामिल आप ज़रूर कीजिए। साथ ही अपने बजट और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखिए। आज खुली सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड आपके दिन को खास बना सकते हैं। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज आपका फोकस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्यूचर प्लानिंग पर रह सकता है, लेकिन हर समय काम के बारे में सोचना भी जरूरी है नहीं। अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताएं और उनकी मौजूदगी को अप्रिशिएट कीजिए। अगर कोई काम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा तो पेशेंस रखें और एक कदम आगे बढ़ाए। आज बैलेंस बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज आपकी क्रिएटिव आइडियाज और अलग नज़रिया आपको कुछ नया सोचने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात हो सकती है या कोई नया प्लान बन सकता है। अपने आइडियाज को लेकर कॉन्फिडेंट रहे और लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी उठाए। जी ये तो बहुत ही सत्य बात है। वीकेंड को सिर्फ प्लानिंग में नहीं बल्कि अच्छे एक्सपीरियंसेस और खुशियों में भी बिताइए। लकी नंबर है आज आपका 11।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज अपने दिल की सुनिए और उन चीज़ों के करीब रहिए जो आपको सुकून देती है। म्यूजिक, क्रिएटिविटी और अपनों के साथ समय आपके मूड को अच्छा बना सकता है। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे आप शांति से समझने की कोशिश करें और ज़रूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात ज़रूर कीजिए। लकी नंबर है आज आपका 7। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम एंड आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कहते चलिए। रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. घर में आते चलिए सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ है संध्या. नमस्कार आपको पूजा.
1: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार. जल आपूर्ति की एक नई योजना तैयार की गई है. आज शनिवार से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 15 लाकावेन फिनिक्स के उन सभी इलाकों में फिर से पानी की आपूर्ति की जाएगी जो पानी की कटौती से प्रभावित थे. नई योजना के तहत वाकौर फिनिक्स में बारी बारी से पानी की आपूर्ति की जाएगी. हर दो दिन में एक शहर को 5 घंटे तक पानी दिया जाएगा. इस प्रकार वाकौर फिनिक्स और सैंपिया में सुबह 3 बजे से 8 बजे तक पानी की आपूर्ति होगी. अगले दिन इसी समय क्यूपी फोरेसाइड और फ्लोरियाल में पानी की आपूर्ति की जाएगी. इस वितरण योजना का उद्देश्य माओवाकवा जलाशय से पानी प्राप्त करने वाले सभी इलाकों में पानी की समान और न्यायसंगत आपूर्ति सुनिश्चित करना है. और कैबिनेट की बैठक में कल लिए गए फैसलों में उन लोगों को पानी की 2 टंकियां और 1 पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिनके पास ये उपकरण नहीं है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को

0: डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष जाना होगा, ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास ये उपकरण नहीं है। कल रात कॉलिव्यू में 27 वर्षीय एक महिला को गोली लगने से विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के समय वो एक वैन में सवार थी और नौकरी से अपने घर वापस लौट रही थी। लगातार दूसरी रात कॉलिव्यू के निवासियों ने नलों में पानी नहीं आने के विरोध में टायर जलाए। स्थिति को काबू पर लाने के वास्ते पुलिस स्थल पर भी पहुंची। इसी दौरान कथित तौर पर गोली चलाई गई। इस मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल आयात करने के एक समझौते की घोषणा की है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। और अब मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी। शाम को भी बादल कुछ छाए रहेंगे, खासकर देश के पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर बारिश होने का अनुमान है। अन्य इलाकों में मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। रात को भी मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय देर रात को देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 23 से 25, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:44 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti।
0: तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30 बजे।
3: Your news on MBC+.

Chillax with Radio Musty. Once again, a good morning सभी को, सुप्रभात। क्या हाल चाल है आप सभी का? सैटरडे की एक और खूबसूरत सुबह में एक नए घंटे के साथ है आपकी अपनी ही रिया हाजिर है और आप सुन रहे हैं रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। जी हाँ, सेकंड आवर ऑफ रिलैक्स शुरू हो चुका है। तो बताइए कौन कौन उठ गया है, किस किस के घर में चाय की पहली चुस्की ली जा चुकी है और कौन है जो अभी भी कंबल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। कमॉन, वीकेंड है, आंखें खोलिए, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और इस खूबसूरत सुबह का स्वागत कीजिए। देखिए सरा कि सूरज देवता भी अपनी रोशनी लेकर आ चुके हैं, आसमान में उजाला फैल चुका है, सुबह की रौनक बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे नेचर भी कह रहा हो, उठ जाओ, मुस्कुराओ, आज का दिन तुम्हारा है। और सच बताऊं, सैटरडे की सुबह का अपना ही चार्म होता है, वही हवा, वही रोशनी, लेकिन दिल में एक अलग ही सुकून, क्योंकि आज वीकेंड है, आज थोड़ा अपने लिए जीने का दिन है। कोई जल्दी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस अपनी फेवरेट कॉफी, अपनी फेवरेट लोग और अपनी फेवरेट गाने। और म्यूजिक की बात हो रही है तो इस दूसरे घंटे में हम लेकर आए हैं एक खूबसूरत मिक्स गाने आपके नाम, कभी रोमांटिक, कभी मस्ती भरा, कभी ऐसा गाना जो आपको थोड़ा सा इमोशनल कर दे, तो कभी ऐसा धुन भी हम चलाएंगे जो आपके पैरों को थिरकने पर मजबूर कर दे, लेकिन अभी नहीं 7 बजे के बाद, क्योंकि अभी तो आप उठे हैं। बट इट्स गोना बी अ वैरायटी ऑफ वाइब्स, म्यूजिक, फुल ऑन मज़ा होगा यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, आज की सुबह में एक और खास बात है। क्या खास बात? कल से शुरू हो रहा है नवरात्रि का पावन पर्व, माँ दुर्गा आ रही है और उनके

0: आने की खुशी ही कुछ और है। घरों में तैयारियां होगी, मंदिरों में भक्ति का माहौल होगा, कहीं पूजा की सजावट होगी तो कहीं गरबा और डांडिया की प्लानिंग है। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम और भी बहुत सारे प्रिपरेशंस के साथ आएंगे, लेकिन आज से ही आपको शुभकामनाएं देने का मन कर रहा है। माँ दुर्गा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और घर में, हर घर में सुख शांति, सेहत और समृद्धि हो। तो चलिए इस सैटरडे को बनाते हैं और भी खूबसूरत, रोशनी के साथ, दिल में पॉजिटिविटी के साथ माँ का आशीर्वाद और कानों में प्यारा सा गाना। जी हाँ, हम जरूर चलाएंगे बहुत ही खूबसूरत गाने आपके नाम। वेल गॉट रोमांटिक ट्रैक नेक्स्ट जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तरिस्मी आपके रिया आपके साथ है, नाम सुन रहे हैं चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। बने रही हमारे साथ क्योंकि आज सुबह का मोटो है नो स्ट्रेस ओनली गुड वाइब्स, ब्यूटिफुल गाने और ढेर सारी मस्ती।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: एक प्यारा सा म्यूजिकल सलाम स्नेहा और कुशल के नाम दूरियां चाहे कितने भी हो कुछ कनेक्शंस दिल से जुड़े होते हैं आप दोनों आज दूर जरूर है लेकिन रेडियो मस्ती के साथ आपका रिश्ता और ये प्यारा भरा कनेक्शन हमेशा बना रहेगा तो स्नेहा और कुशल जहां भी हैं आप दोनों ये म्यूजिक अब तक हमारा प्यार और एक वार्म हग लेकर पहुंचे कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती ये नेक्स्ट ट्रैक इट्स एक्चुअली फ्रॉम स्नेहा कुशल तो चलिए देखते हैं कि स्नेहा ने आपके लिए डेडिकेट किया क्या है
1: अजय डोंट माइंड लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता गुलफाम साहब के फैन हो कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या
2: बिल्कुल आती है सुनो
1: सुना
2: अर्ज है दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे आदाब

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की ओर से नई योजना तैयार की गई है। आज शनिवार से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 15 लाकावियन फिनिक्स में के उन सभी इलाकों में फिर से पानी की आपूर्ति की जाएगी जो पानी की कटौती से प्रभावित है। हर दो दिन में एक शहर को 5 घंटे तक पानी दिया जाएगा। वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत उन लोगों को पानी की 2 टंकियां और 1 पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिनके पास ये उपकरण नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जनता को डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास ये उपकरण नहीं है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से मॉरिशस में महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। इसका विशेष प्रभाव परिवहन, वितरण और स्थानीय उत्पादन पर पड़ रहा है। इस प्रभाव को सीमित करने के लिए पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण संघ अपेक के अध्यक्ष सत्यदेव तैगौ ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और मॉरिशस में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने की वकालत की है। कल रात कॉन्लिव्यू में 27 वर्षीय एक महिला को गोली लगने से विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। घटना के समय वो एक वैन में सवार थी और नौकरी से अपने घर वापस लौट रही थी। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल आयात करने के एक समझौते की घोषणा की है। ये घोषणा इसी समय में हुई है जब ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। जल आपूर्ति की एक नई योजना तैयार की गई है। आज शनिवार से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 15 लाकावियन फिनिक्स के उन सभी इलाकों में फिर से पानी की आपूर्ति की जाएगी जो पानी की कटौती से प्रभावित थे। नई योजना के तहत वाक्वा और फिनिक्स में बारी बारी से पानी की आपूर्ति की जाएगी। हर दो दिन में एक शहर को 5 घंटे तक पानी दिया जाएगा। इस प्रकार वाक्वा, फिनिक्स और सैंपिया में सुबह 3 बजे से 8 बजे तक पानी की आपूर्ति होगी। अगले दिन इसी समय क्यूपी फोरेसाइड और फ्लोरियाल में पानी की आपूर्ति की जाएगी। इस वितरण योजना का उद्देश्य मऊवाक्वा जलाशय से पानी प्राप्त करने वाले सभी इलाकों में पानी की समान और न्यायसंगत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के कम्युनिकेशन जिम्मेदार सुनील गोपाल को सुनते हैं। उनसे बात की राजमिला सीतामोनी ने।
1: C'est un système que nous peut donner ben, alternité, ça veut dire chaque 2 jours, mais pour permettre à certaines régions bien le plein, ça veut dire qu'on va remplir le tank et tout le reste, et là nous basculons à une autre région. Alors c'est pour ça qu'il dans sa communiqué qui nous tirait là, et c'est après une mûre décision, hein, c'est nous avons beaucoup de discussions techniques, et nous gagnons l'aval aussi du ministère de l'énergie et des services publics. Alors, ce système-là, pour permettre une distribution plus équitable dans les plaines Williams, dans le district de Moka et une partie de Rivière.
0: बात करते हैं अब कैबिनेट की बैठक में कल लिए गए इस फैसले के बारे में। उन लोगों को पानी की 2 टंकियां और 1 पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिनके पास ये उपकरण नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जनता को डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास ये उपकरण नहीं है। इसके बाद उन्हें एक कूपों दिया जाएगा। इस कूपों की मदद से वे अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कंपनी से ये उपकरण प्राप्त कर सकेंगे। ये पहल वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा कठिन जल संकट को देखते हुए परिवारों को पानी

0: जमा करके रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। कल तक देश के सबसे बड़े जलाशय माओवाकुआ में पानी का स्तर उसकी कुल क्षमता का मात्र 35.5% था। अभी के लिए हरविन सुनारायण एनटीसी के जनरल मैनेजर का पद छोड़कर सार्वजनिक सेवाओं के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज का कार्यभार संभालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किए गए हरविन सुनारायण को जल क्षेत्र में तत्काल आवश्यक कदमों की निगरानी करने और मध्यम एवं दीर्घकालीन समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वे सोमवार से अपने नए पद का कार्यभार संभालेंगे। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से मॉरिशस समय महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। इसका विशेष प्रभाव परिवहन, वितरण और स्थानीय उत्पादन पर पड़ रहा है। इस प्रभाव को सीमित करने के लिए पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण संघ अपेक के अध्यक्ष सत्यदेव तैगौ ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और मॉरिशस में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने की वकालत की है। उनका मानना है कि इससे आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। कीमतों पर नियंत्रण के मुद्दे पर उन्होंने व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का समर्थन किया है। उनका मानना है कि कीमतें निर्धारित करने से व्यापारी सामान रोक कर रख सकते हैं, जिससे बाजार में आर्टिफिशियल कमी पैदा हो सकती है। सत्यदेव तैगौ को सुनते हैं, उनसे बात की उर्वशी भिकारी ने विवरण याचना मिश्रा का।
1: मॉरिशस c'est un pays d'importateur. Alors qu'on nous amène tout le monde commodité, bien
2: मॉरिशस एक आयातक देश है। जब हम कुछ लाते हैं तो उससे वितरित किया जाना चाहिए। परिवहन खर्च, वितरण खर्च होता है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, खासकर स्थानीय उत्पादन के लिए। इसीलिए उत्पादन खर्च भी बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन दर पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये कम करने के लिए कच्चा माल स्थानीय मंडी में ही खरीदा जाना चाहिए। मॉरिशस में दामों में नियंत्रण करना सही विकल्प नहीं है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की जरूरत है।
0: और वहीं कंज्यूमर्स आई एसोसिएशन CEA के सचिव क्लोद कनाबादी ने इस बात पर जोर दिया कि मॉरिशस के आयात पर निर्भरता जीवन यापन की लागत पर दबाव बढ़ा रही है। ये स्थिति तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति की लागत में बढ़ोतरी के कारण और भी गंभीर हो गई है। उनको सुनते हैं विवरण एक बार फिर याचना मिश्रा का।
2: आयातक दुकानदार से खर्च लेता है और दुकानदार ग्राहकों से खर्च की भरपाई करता है। प्रतिस्पर्धा होगी, स्थानीय पैदावार बढ़ेगा, तब जाकर दाम बदलेंगे। मॉरिशनों के हाथों में क्षमताएं हैं, वे बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ढांचा भी चाहिए। हम देश के 9 जिलों में साथ में रोडवेज में भी शुरुआत कर सकते हैं। पेशेवरों को इसमें मदद देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। बाद में इसे गांव तक भी बढ़ा सकते हैं। शुरुआत छोटे पैमाने पर कर सकते हैं।
0: मानसिक स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। इस यानी आज शनिवार 10 अक्टूबर को मनाए जा रहे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक सेहत का ध्यान रखने के महत्व पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से द सनफ्लावर चैरिटेबल फाउंडेशन एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें संवाद, दूसरों की बात ध्यान से सुनने और संवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ पेश आने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये कार्यक्रम पोर्ट लुइस स्थित ओडिसेओ में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। फाउंडेशन की संस्थापक और स्पीच थेरापिस्ट नाजा अबासाकू ने बताया कि इस कार्यक्रम में एक मनोवैज्ञानिक भी मौजूद रहेगी। वो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने और कठिन दौर से गुजर रहे किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए व्यावहारिक सुझाव साझा करेंगी। नाजा अबासाकू को सुनते हैं।

0: उनसे बातें की राजमिला सीतामुनि ने।
1: हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दबाव बढ़ता जा रहा है। कार्यस्थल पर दबाव, शारीरिक दबाव, पारिवारिक बहस, बदलाव आदि, इनका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत जरूरी है। मदद मांगने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, उसे कम करना चाहिए। संकेतों को पहचानना भी जरूरी है, बिना राय दिए सुनना जरूरी है और जानना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तो उसे कहाँ जाना चाहिए।
0: कल रात कॉलिव्यू में 27 वर्षीय एक महिला को गोली लगने से विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के समय वो एक वैन में सवार थी और नौकरी से अपने घर वापस लौट रही थी। लगातार दूसरी रात कॉलिव्यू के निवासियों ने पानी न मिलने के विरोध में टायर जलाए। स्थिति को काबू पर लाने के वास्ते पुलिस स्थल पर भी पहुंची। इसी दौरान कथित तौर पर गोली चलाई गई। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। माँ दुर्गा की आराधना, शक्ति, भक्ति और आस्था के 9 दिन 11 अक्टूबर से देश भर में नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक मंदिरों में विशेष पूजा, प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मौसे सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने कल एक प्रेस सम्मेलन में तैयारियों की जानकारी दी। चलिए मौसे सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन से गौतम मंथादीन को सुनते हैं।
2: हमारे सभी जो रजिस्टर्ड मंदिर हैं वो नवरात्रि आरंभ कर रहे हैं संडे यानी कि रविवार, संडे 11 अक्टूबर 2026 जहां पर कलश स्थापना से शुरुआत होगी और दुर्गा जो कथा है वो हर रात्रि को चलेगी सभी मंदिरों में। और सोमवार 19 तारीख अक्टूबर जो है वहाँ पर सभी मंदिरों में यज्ञ और पूर्णाहुति होगी और मंगलवार जो है 20 तारीख जो है वहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। कुछ मंदिर जो हैं मूर्तियों जो वो स्थापना की हैं वो लोग विसर्जन करेंगे और कुछ लोग जो हैं दशहरा या जो हम कहते हैं विजयदशमी वो हम मनाते हैं उस दिन।
0: हिंदी प्रचारिणी सभा लॉन्ग माउंटेन की ओर से आज शनिवार 10 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक ग्रेड 6 की परीक्षाएं चलाई जा रही हैं जो देश के 17 केंद्रों में चलेगी। ये केंद्रों की लिस्ट इस प्रकार है, जहां केंद्रों की सूची इस प्रकार है: महेश्वरनाथ सरकारी पाठशाला थियोली, पोम्पलेमूस सरकारी पाठशाला पोम्पलेमूस, एम फुगुआ सरकारी पाठशाला लॉन्ग माउंटेन, दुर्गाचन हरी सरकारी पाठशाला गुडलैंड्स, महादू सरकारी पाठशाला रिविया जुरांपोर, लुई नेलॉ सरकारी पाठशाला कैचबोन, यंग मैंस सरकारी पाठशाला रिमियोलिए पोर्ट लुइस, सुखदेव बिसुन दयाल सरकारी पाठशाला लालमाटी, जुपेरे सरकारी पाठशाला मेबर्ग, ससत कांबुलेल सरकारी पाठशाला सेबास्टोपोल, रिवेरॉन वॉल्टर सरकारी पाठशाला कर्ची मिलिटेर, रिविया दी जोंगी सरकारी पाठशाला, रोजबेल नोव सरकारी पाठशाला, ग्रांबोआ सरकारी पाठशाला, और आर्यन वैदिक सरकारी पाठशाला वाक्वा, रामनाथ जीता कॉलेज सेंट्रल फ्लैक और क्यूपिप कॉलेज क्यूपिप में। तो ये परीक्षाएं देश के इन केंद्रों में चलाई जाएगी हिंदी प्रचारिणी सभा की ओर से।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल आयात करने के एक समझौते की घोषणा की है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए

कल शुक्रवार को इस कदम से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की में नाराजगी फैल गई। उन्होंने इसे पुतिन के लिए एक उपहार बताया और कहा है कि ये उस युद्ध में निवेश करने जैसा है जिसे लंबा खींचने के बजाय समाप्त किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि इस समझौते के तहत अमरीकी वित्त मंत्रालय 7 अप्रैल तक रूसी डीजल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को निलंबित कर रहा है। हालांकि रूस की अन्य संपत्तियां जैसे कि अमरीकी बैंकों में जमा संपत्तियां अब भी फ्रीज रहेगी।

और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर वर्षा होगी। शाम को भी बादल छाए रहेंगे। देश के पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिरे रहेंगे। अन्य इलाकों में मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा और रात को भी मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय देर रात को देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 23 से 25, साहिल इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:44 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा।

देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। 6:48 हुए हैं। एक बार फिर सुर्खियों पर बात करते हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की ओर से नई योजना तैयार। आज शनिवार से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 15 लाकावेन फिनिक्स के उन सभी इलाकों में फिर से पानी की आपूर्ति की जाएगी जो पानी की कटौती से प्रभावित थे। हर दो दिन में एक शहर को 5 घंटे तक पानी दिया जाएगा। वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत उन लोगों को पानी की 2 टंकियां और 1 पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिनके पास ये उपकरण नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जनता को डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास ये उपकरण नहीं है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से मॉरिशस में महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। इसका विशेष प्रभाव परिवहन, वितरण और स्थानीय उत्पादन पर पड़ रहा है। इस प्रभाव को सीमित करने के लिए अपेक के अध्यक्ष सत्यदेव तैगव ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और मॉरिशस में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने की वकालत की है। कल रात कॉलिव्यू में 27 वर्षीय एक महिला को गोली लगने से विक्टोरिया अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया। घटना के समय वो एक वैन में सवार थी और नौकरी से अपने घर वापस लौट रही थी। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल आयात करने के एक समझौते की घोषणा की है। ये घोषणा इसी समय में हुई है जब ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। 6:50 हुए हैं। हम तकनीकी सहायक फैजन को धन्यवाद देते हैं। साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच रेडियो विभाग को भी कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

Շոգ սամաչար սյունի։ Railroad de Thabuchik Union Ville में Railroad Thabuchik Union Ville में 58 साल की 58 years old Shrimati Padmini Apadu, Shrimati Padmini Apadu पैदाशी नाम Apadu और जिन्हें लोग सुमिला नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ ही आज दिन के ढाई बजे इनके पति कन्हैया अपादू के मकान रॉयरोड थाबुचिक यूनियन विल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 2:30 PM। ब्लॉक ए चार

River Street, Cité Bédédame, Kassimé. Bayasi, Saliki, 82 years old, Shimati Pushpa Palanyandi, Shimati Pushpa Palanyandi, Pedashi Nam Jean, or Jinhe Log Madame Ville Nam Se Jante The, Ki Mrityu Ho Gayi Hai, In Ki Arthi, आज दिन के दो बजे इनके मकान ब्लॉक ए चार राहुल रिवे स्ट्रीट सीते बैदेदाम काशी से उठाकर सेंट जॉर्ज ले सालीन किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM ओबी लकलेन नोवेल फ्रांस में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड बीबी आयमून नेचा जुमन पैदाशी नाम निहाल खान और जिन्हें लोग नाज नाम से जानते थे का इंतकाल हो गया है। इनका जनाजा आज दिन के 11 बजे इनके बेटे नाजिया जुमन के मकान ओबी लकलेन नोवेल फ्रांस से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM हॉलीवुड नंबर एक वाकवा में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री मदन रामप्रसाद जिन्हें लोग लॉन्ग मौसम फ्री नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ आज दिन के ढाई बजे इनके मकान हॉलीवुड नंबर एक वाकवा से उठाकर आली भैया किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM रॉयल रोड लावांचुआ में सरकारी पाठशाला के पास 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड श्री जय सिंह गजाधर जिन्हें लोग जय सिंह नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ आज दिन के ढाई बजे इनके मकान रॉयल रोड लावांचुआ से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डॉट 2:30 PM जम्बो रोड श्रेमघनिये में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड श्रीमती दिलावती भुवन पैदाशी नाम अलकोरी और जिन्हें लोग तौचिन भवन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके थे आज दिन के 2 बजे इनके बेटे सुनील भवन के मकान जम्बो रोड श्रीमघनिये से उठाकर कोंगोपाल शामनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM प्रिंस डे गाल स्ट्रीट सिनेमा कासे ट्रियोले में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कलावती ओक्लू पैदाशी नाम हुकुम सिंह और जिन्हें लोग दादी इंदिरा नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ आज दिन के 11 बजे इनके मकान प्रिंस डे गाल स्ट्रीट सिनेमा कासे ट्रियोले से उठाकर दाहुची पे चिराफरे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 11 AM Avenue Pamplemousse, Camp de Pêcheurs, Grand River South East, May, 95 साल की 95 years old, श्रीमती सिंदरमणि टेंगरी, जिन्हें लोग चिंता नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे इनकी बेटी बिंटा केडू के मकान एवेन्यू पॉम्प्लेमूस कॉ दे पेशर ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM एलियन सेंट बोबासे में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रतिमा देवी सिवरतन पैदाशी नाम बुद्धू और जिन्हें लोग लता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे नंबर 3 एवेन्यू कुराराम बेर रोज की रहने वाली थी। इनकी अर्थी आज सुबह साढ़े दस बजे एलियन सेंट बुबासे से उठाकर फिनिक्स किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM पिचिटका बैंड कौंडिमास पावे में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड श्रीमती ऋषि कुमारी दसोई पैदाशी नाम गोपुल और जिन्हें लोग ऋषि नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे विराज दसोई के मकान पिचिका बैंड कौंडिमास पावे से उठाकर मेजिन कौंडिमास से किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM Avenue Virasami, ailleurs de Moselle-Mont-Raffré, le Haut-Chétier-Rouge, mais Tiralis.

0: साल की 43 ईयर्स ओल्ड श्री दिनेश रामनियाल, श्री दिनेश रामनियाल जिन्हें लोग बंटी और बैन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे औकाद की न्यू पोर्ट लुइस में बीड्स एंड ज्वेल के मालिक थे। इनकी अर्थी कल रविवार को दिन के 12 बजे इनके मकान अवेन्यू गासामी अयर मोसेलमों राफेलियो शेतियाहू जैसे उठाकर सिपाही भिले वाले दो प्रेत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। आलेजाक ग्रांबोआ में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सनमत गंगा बिसुन पैदाशी नाम बुधन और जिन्हें लोग मामा रामेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान आलेजाक ग्रांबोआ से उठाकर ग्रांबोआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 12:30 PM। रॉयल रोड मिडलैंड्स में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सावित्री सुकी की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके मकान रॉयल रोड मिडलैंड से उठाकर बिगाहा क्यू पिप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11:30 AM। एवेन्यू बूजों बुआ शेरी मुका में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती हरिवंती गुलाम, श्रीमती हरिवंती गुलाम पैदाशी नाम फुली और जिन्हें लोग सबित नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह नौ बजे इनके बेटे अविकाश सिंह गुलाम के मकान अवेन्यू अबोगो बुआ शेरी मुका से उठाकर सैं कॉन्स्टेंस सैं पिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 9 AM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC+.

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 7 बज रहे हैं।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग सभी को। सैटरडे की इस ब्राइट सनी और खूबसूरत सुबह में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो दैट इज रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। अरे वाह क्या खूबसूरत दिन है ना। अभी अभी हम झांककर आए हैं, बाहर झांककर आए हैं और देख रहे हैं कि सूरज पूरी जोश के साथ निकल आए हैं, अपनी रोशनी चारों तरफ फैला रही है और सैटरडे की सुबह में एक अलग ही फ्रेशनेस है। तो बताइए मूड कैसा है आप सबका? वीकेंड वाली स्माइल आ गई है चेहरे पर या अभी चाय कॉफी आप पी रहे हो और म्यूजिक के साथ दिन रॉक करने के लिए आई एम श्योर कि आप बिल्कुल रेडी है। लेकिन दोस्तों आज की सुबह सिर्फ वीकेंड की मस्ती लेकर नहीं आई है, आज हवा में कुछ अलग सा है ना, एक अलग सी पवित्रता, एक अलग सा सुकून, एक अलग सी भक्ति, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है नवरात्रि का पावन पर्व। जी हाँ माँ आ रही है, घरों में तैयारियाँ जोरों शोरों से शुरू तो हो ही चुकी है, कहीं पूजा की सजावट हो रही है, कहीं फूलों की खुशबू बिखर रही है, कहीं माँ के स्वागत के लिए मंदिर सज रहे हैं, तो कहीं नए कपड़ों और पूजा के सामान की शॉपिंग अभी भी चल रही होगी। वेल आज तो ये सैटरडे बहुत ही भरा पूरा रहेगा एंड इस बार सैटरडे की ये मस्ती भी कुछ स्पेशल है। वीकेंड की खुशी अपनी जगह, लेकिन माँ के आगमन की खुशी दिल को एक अलग ही सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे मन में एक नई उम्मीद जग रही हो, एक नई एनर्जी आ रही हो और हम सब अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों को भी माँ के स्वागत के लिए तैयार कर रही हो। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी श्रद्धालुओं को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबके घर में सुख शांति खुशहाली और समृद्धि लेकर आए, हर परिवार पर माँ का आशीर्वाद बना रहे। और हाँ चिलैक्स का ये तीसरा घंटा है तो म्यूजिक में कोई कमी नहीं होने वाली, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, वीकेंड वाली एनर्जी, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी पॉजिटिव बातें। जी हाँ और ढेर सारा प्यार भी हम लेकर आए हैं आपके नाम। सो कीप कनेक्टेड हमारे साथ, दिस इज योर चिलैक्स रिया के साथ ओनली।

0: Chillax with Radio Masti.
1: राइट वीकेंड लवर्स, बताइए हमें कैसा चल रहा है आपका ये सैटरडे। अब जब नवरात्रि बिल्कुल करीब है तो मुझे लगता है कि आज की सुबह हमें एक फेस्टिवल चेकलिस्ट भी तो होनी चाहिए। चलिए हम साथ में देखते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। नंबर वन, घर की सफाई और सजावट। आई एम श्योर कि ये ट्रैक यानी कि आज तो ये होने ही वाला है। नंबर टू, पूजा के लिए सारा सामान रेडी, फूल दिया अगरबत्ती और माँ की चुनरी। वैसे मैं कल ही ये सब शॉप कर रही थी और बहुत सारे लोग थे पूजा सामान में, तो आई एम श्योर कि आज भी ऐसा ही हाल होने वाला है। नंबर थ्री, ट्रेडिशनल आउटफिट तैयार है या अभी भी वार्डरोब के सामने खड़े होकर सोच रहे हैं कि कल क्या पहना जाए। एंड आई एम श्योर कि आप ज़रूर ये जो कलर है, नौ दिन का जो कलर है, आप ज़रूर फॉलो करने वाले हैं। वेल, फेस्टिवल्स की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि हमें एक साथ लाती है, घर में सब मिलकर तैयारी करते हैं। कोई फूल सजाता है, कोई प्रसाद की तैयारी करता है, कोई पूजा की जगह को डेकोरेट करता है और इससे सबके बीच कितनी सारी यादें बन जाती है। बचपन में फेस्टिवल का इंतज़ार अलग होता था ना, नए कपड़े, घर में स्पेशल खाना, रिलेटिव्स का आना और हर तरफ एक्साइटमेंट। बड़े होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन दिल के अंदर वो बचपन वाली खुशी कहीं ना कहीं आज भी जिंदा रहती है। तो इस नवरात्रि उस खुशी को फिर से महसूस कीजिए। बच्चों को भी अपनी ट्रेडिशंस के बारे में बताइए, फैमिली के साथ समय बिताए और हर छोटे मोमेंट को स्पेशल बनाए। और हाँ, वीकेंड है तो थोड़ी मस्ती

0: जरूर होनी चाहिए। तैयारियों के बीच अपना फेवरेट म्यूजिक चलाइए, थोड़ा गाइए, थोड़ा थरकिए और काम करते करते अपना मूड भी फ्रेश रखिए, क्योंकि सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ बड़े अरेंजमेंट्स नहीं होते, कभी फैमिली के साथ बैठकर चाय पीना, कभी सबका मिलकर ऐसा हंसना, कभी एक साथ प्रार्थना करना, यही तो असली खुशी है। तो हमारे साथ ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए, वी गट सम ब्यूटिफुल ट्रैक्स जो आपके सारे रिकॉर्ड भी रंगीन बना देंगे। सो लेट्स हियर द नेक्स्ट ट्रैक एंड दैट्स फ्रॉम द मूवी बार बार देखो।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: वेल, अपनी घर मिलाते चलिए, 7:30 बज रहे हैं और स्टूडियो में वी हैव विकास जी. तो चलिए उनसे सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको विकास जी.
4: नमस्कार रिया ने, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. सभी स्पोर्ट्स प्रेमियों का स्वागत है शनिवार की सुबह. सबका एकदम हार्दिक स्वागत. दो सप्ताह की लंबी अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक के बाद, छुट्टी के बाद, प्रीमियर लीग इज बैक. इंग्लिश फुटबॉल का बुखार फिर चढ़ा, फिर तेरी कहानी याद आई. यानी फुटबॉल का गोलमाल हो या क्रिकेट के चौके छक्के, स्पोर्ट्स के इस धमाकेदार सेगमेंट में खेल की हर खबर में होगा जोश और हर मुकाबले में होगा रोमांच. हर मैच में होगा बहुत जबरदस्त बातें होगी और इस सप्ताहांत महामुकाबले का महामंच एनफील्ड में सजाया गया है, जहां कल रविवार 7:30 बजे 7:30 PM कल संडे को लिवरपूल के लाल और मैनचेस्टर सिटी के स्काई ब्लूज एक दूसरे से भिड़ेंगे. किंतु इससे पहले आज रात 8:30 बजे आज ही शनिवार की रात 8:30 बजे 8:30 PM मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाल भूत अपने बंगले यानी ओल्ड ट्राफोर्ड में टोटेनहम हॉटस्पर से लोहा लेंगे. टोटेनहम जो अभी लीग टेबल के आखिरी पोजिशन पे है,

केवल 2 अंकों के साथ। किंतु सबसे पहले कल के खेले गए मैचों के नतीजे सुनिए। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में वेस्टहम यूनाइटेड फिर लड़खड़ा गया। जारेड बोवेन ने स्कोर तो किया किंतु इंजुरी टाइम में पेनाल्टी मिस कर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इट्स वेस्टहम यूनाइटेड 1 क्वींस पार्क रेंजर्स 1। स्पेन के लालीगा में मलागा भी 1 स्पानियोल 1। इसी में आज रात एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों अपने अपने मैदान अपने अपने होम मैदान पे होंगे। जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी मैच ड्रॉ रहा, बोरुशिया डॉर्टमुंड 2 वर्डर ब्रेमेन 2। जबकि फ्रांस के लीग 1 में रेसिंग क्लब दे लांस ने ओलंपिक दे लियों को 2-1 से परास्त किया। बाकी सभी मैच आज रात खेले जाएंगे। बैक टू इंग्लिश फुटबॉल। सो कई दिनों के इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग की रौनक एक बार फिर लौट आई है। फुटबॉल फैंस के दिलों की धड़कनें फिर से तेज होने वाली हैं। अब आज शाम 3:30 बजे से ही अर्ली किक ऑफ। डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल घायल शेर की तरह अपनी ही गुफा द एमिरेट्स स्टेडियम में लीड्स यूनाइटेड का स्वागत करेगा। ब्राइटन से मिली शर्मनाक हार द गनर्स को अभी तक हजम नहीं हुई है। सो आज शाम 3:30 बजे अर्ली किक ऑफ आर्सेनल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड। फिर शाम 6 बजे से विला पार्क में एस्टन विला स्वागत करेगा ब्रेंटफोर्ड का। उसी समय स्टैमफोर्ड ब्रिज में चेल्सी वर्सेस बोर्नमुथ। इप्स्विच टाउन खेलेगी फुलहम के विरुद्ध। जबकि स्टेडियम ऑफ लाइट में संडरलैंड का मुकाबला ब्राइटन से है। और आज रात 8:30 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टोटेनहम हॉटस्पर। बाकी सभी मैच कल संडे को खेले जाएंगे। कल शाम 5 बजे क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला नॉटिंगहम फॉरेस्ट से, और हल सिटी खेलेगी अपने होम मैदान पे एवर्टन के विरुद्ध। जबकि रात कल रात 7:30 बजे 7:30 PM नॉट टू मिस क्लासिकों का क्लासिक लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। एंजो मारेस्का के द सिटीजन्स आरोपों के साए में भी सुर्खियों का सरताज पहने हुए हैं। तब से जब से ये चार्ज साबित हुए हैं तब से ये उनका पहला मैच है जिसका एंटोनी इराउला और उनके लाल सिपाही जरूर फायदा उठाना चाहेंगे। इस महामुकाबले का महारोमांच कल रात 7:30 बजे महामंच एनफील्ड में। इट्स लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी कल रात 7:30 बजे। देखते रहिए और सुनते रहिए। फुटबॉल में ही फेनोमिनल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर स्कोर किया। सऊदी प्रो लीग में कल रात अल नसर ने दिरिया टीम को 3-0 से हराया। पहला गोल CR7 का ही रहा। पुर्तगीज कोच जोजी रेजुस के साथ पंगा मोलने के बाद और टीम को छोड़ने के बाद ये गोल रोनाल्डो की वापसी का ऐलान भी करता है। ये 41 वर्षीय रोनाल्डो की जादुई करियर का 980th गोल रहा। आज ही इज एमिंग टू बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री, इतिहास में पहला खिलाड़ी बनने के चक्कर में है टू रीच 1000 गोल्स, यानी केवल 20 गोल दूर है, इसलिए लगे रहो। क्रिकेट में वेस्ट इंडीज ने 9 गेंदें रहते और 6 विकेट से हराकर भारतीय टीम को पानी पानी कर दिया। टीम इंडिया इस दूसरे T20 मुकाबले में कुल 249 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के बावजूद जवाब देने में लुढ़क गई। वेस्ट इंडीज के शाई होप ने 102 नाबाद रन बनाए जिनमें 9 छक्के और 4 चौके भी रहे। केवल 4 विकेट के नुकसान और 18.3 ओवरों में ही वेस्ट इंडीज ने ये लक्ष्य पूरा किया। अंत में इतने छक्के चौके मारे कि भारतीय गेंदबाजों को पानी मांगने तक का मौका न मिला। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब तीसरा T20 कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। टेनिस में भी कुछ तो हुआ। शंघाई मास्टर्स के राउंड ऑफ 64 में ही चाइना ओपन के विनर नोवाक जोकोविच हार गया, कैजुअल्टी बना। कल रात ह्यूबर्ट उकाज ने उसे 6-4 और 6-3 से परास्त कर आउट किया। और फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के सिंगापुर ग्रां प्री में मैक्स वेस्टापेन पोल पोजीशन पे फिर आया। कल गत सप्ताह उसने जीत भी हासिल की थी। फिलहाल जनरल स्टैंडिंग में मर्सिडीज का किमी एंटोनिली पहले स्थान पर है 320 अंक लिए। वो 84 अंक आगे हैं अभी सेकंड पोजीशन पर स्थित रसल से, जबकि मैक्स वेस्टापेन छठे पोजीशन पे हैं 188 पॉइंट्स के साथ अभी।

0: अभी भी फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में 6 रेस बाकी है। मॉरिशस में यदि फुटबॉल की गाड़ी अपनी मरम्मत करवा रही है तो एथलेटिक्स में चिफानी पियात ट्रायथलन की अफ्रीकन चैंपियन बन गई है, यूफ अफ्रीकन चैंपियन बन गई है। इजिप्ट में कल सुबह चिफानी पियात ने अफ्रीका यूफ चैंपियन का खिताब हासिल किया। इसी में केरा राजाबाली चौथे स्थान पर आई, दोनों को हार्दिक बधाई। बाकी खबरें संगीत की भाषा में आज रात 7 से 9 बजे के बीच 7 to 9 हमारे झंकार बीट्स में। तब तक ढेर सारे प्यारे गाने रिया के साथ। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी, और शुभ दिन आपको भी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: Chillax with Radio Musty.
1: वीकेंड टाइम सैटरडे का दिन और सैटरडे की बात ही कुछ और है। सैटरडे मतलब जिंदगी की भागदौड़ पर थोड़ा सा ब्रेक, अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और खुद को याद दिलाना कि मौका तो हर एक को मिलता है, बस इसे निभाना, इसको जीना आपको आना चाहिए। कभी बिना किसी प्लान के दिन गुजारना भी ज़रूरी है। कभी फेवरेट गाना लगाकर घर के काम करना, कभी फैमिली के साथ बैठकर चाय पीना, तो कभी बस आराम से बैठकर आसमान को देखना। सैटरडे वो दिन है जब ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो सकता है, कॉफ़ी थोड़ी लंबी चल सकती है और कॉन्वर्सेशंस, संवाद में जल्दी ख़त्म करने की कोई मजबूरी नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात कि वीकेंड हमें याद दिलाता है कि खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं होती। कभी धूप की किरण, कभी किसी अपने का फोन, कभी रेडियो पर बजता हुआ फेवरेट गाना ही काफी होता है। तो आज अपने सैटरडे को सिर्फ गुजारिए मत, उसे जिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा गुनगुनाइए, कुछ अपनी पसंद का कीजिए और अपने दिल को भी वीकेंड की छुट्टी दीजिए। और हाँ, घर की फिक्र कल करेंगे, आज सैटरडे है तो सैटरडे को सैटरडे जैसा हम जिएंगे। आज का दिन है स्माइल करने का, रिलैक्स करने का और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने का। तो इसलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए चिलैक्स, जहां पर आप चिल भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। सो लेट्स डिग इन टू द नेक्स्ट गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना हम लेकर आए हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट उतना ज़्यादा समय यह शेष नहीं है। जी हाँ, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। मेरे बाद आपको मिलेगा दिव्या का साथ इन योर टाइमलेस तड़का।

0: बट कुछ माइंड ब्लोइंग गाने हम चलाकर जाएंगे एंड विशिंग यू अ हैप्पी सैटरडे वंस अगेन.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

shirke athe bajalba सब कोई के नमस्ते भोजपुरी के समाचार में हमने आप सब कोई के स्वागत करत है जा सेंट्रल वाटर अथॉरिटी बगल से नवा योजना तैयार करल गल बा आज सामदी से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 15 लाकावेन फिनिक्स में उस सब इलाका में फिनो से पानी के आपूर्ति मिली पानी मिली जो न पानी की कटौती से प्रभावित रहलन सा हर दो दिन में एगो शहर के 5 घंटा ले पानी देवल जाए वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत ऊ सब जना के पानी के दुगो टंकी और एक पंप मुफ्त में वितरित करल जाए जिकर पास ई उपकरण नहीं बाते ई खातिर जनता के DBM के समक्ष डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष ई प्रमाणित करे के परी कि ऊ लोग के पास ई टैंक या पंप नहीं बाते तेल की कीमत में बढ़ोतरी से मॉरिशस समय महंगाई बढ़ गल बा एकर असर परिवहन वितरण और स्थानीय उत्पादन पर परता ई प्रभाव के सीमित करे खातिर APEC के अध्यक्ष सत्यदेव तेंगर स्थानीय उत्पादन के बढ़ावा दे आर मॉरिशस में बनल उत्पाद के प्राथमिकता दे के वकालत कर ले हवन आर उधर कंस्यूमर आइज एसोसिएशन के सचिव क्लोद कानाबादी बुलन की बोले बाकी स्थिति से तेल की कीमत में उतार चढ़ाव और आपूर्ति के लागत में बढ़ोतरी के कारण आर भी गंभीर हो गल बा काल रात कॉलेव्यू में 27 बरिस के एगो महिला के गोली जैसन वस्तु लगला से विक्टोरिया अस्पताल के ICU में भर्ती करल गल घटना के बखत वो एगो वान में सवाल रहल और नौकरी से अपन घर जात रहल लगातार दूसर का रात के कॉलेव्यू के निवासी पानी के विरोध में ताय जलेली हवन से इस बीच कथित तौर पर गोली भी चलावल गल

0: दूसर देश की खबर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से डीजल आयात करे के कुछ समझौता की घोषणा कर लेबा। ये घोषणा ऐसा बखत में आल बाते जब ईंधन की कीमत में कमी यानी खातिर ऊपर दबाव लगातार बढ़गल बा। तेकरी संगी भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: Timeless Tadka.
2: RM2.
1: Timeless Tadka.

0: Seamless तड़का
1: RM2
2: क्या परफेक्ट टाइमिंग है 8:08 एंड चलिए वार्म वेलकम अ लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यकीन मानिए हम इंतज़ार कर ही रहे थे कि सुबह सवेरे कब आपसे मुलाकात होगी. और वैसे शाम को ही हम मिलते हैं कुछ कूल रोमांटिक म्यूज़िक के साथ, लेकिन सैटरडे को हमें मौका मिलता है सुबह सवेरे आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए टिल 11 AM, जहाँ पर हमें मौका मिलता है कुछ नॉन स्टॉप गीत आप लोगों के लिए भी हम सुनाएं. एंड Of course, यहाँ पर we have the best mix of music and साथ में we are all set to serve you your musical breakfast right here on the waves of Radio Masti. So चलिए आपका साथ है और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? तू है तू मुझे फिर और क्या चाहिए? सुबह सवेरे musical होना कितनी अच्छी बात होती है. और आप भी musical रहिए and of course हम तो चाहते हैं कि you stay musical and you stay magical. भाई आज Saturday है और आज के क्या plans बन रहे हैं ज़रूर बताइएगा on 549-912-94 अपने दिन को एनहांस करने के लिए. वी हैव द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल म्यूजिक और साथ में कुछ आपकी बातें ऑन 549-912-94. चलिए भी के लिए बात करते करते हम एक नज़र डालते हैं मौसम की हाल की ओर. चलिए जानेंगे पूजा के साथ कि दिन के दौरान मौसम कैसे रहने वाला है.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ओनली टू विनर्स.
4: पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे. देश के पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी. शाम को भी बादल कुछ छाए रहेंगे, खासकर देश के पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश होने का अनुमान है. अन्य इलाकों में मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा. रात को भी मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय देर रात को देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर बादल कुछ घिर आएंगे. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय आज सुबह 5:44 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: Du 9 au 25 octobre, rendez-vous chez Winners pour découvrir nos produits mis à l'honneur et nos offres exceptionnelles. Des nouveautés, des produits du quotidien et des offres pensées pour toute la famille. 250 ml de Dark Blue Energy Drink à 31,95 € et le set de 3 bagages de type trolley à 2499,95 €. Plus de choix, plus de promos, plus de découvertes. Alors, préparez votre liste et rendez-vous chez Winners.
6: On est tous Winners.

0: bon. Allô, rendez-vous les 31 octobre. SBM Trail, parade ça!
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Oh my God, trust me, early morning, आपके messages की बौछार हो रही है and thank you so much, Super 7 इतना प्यार बरसाने के लिए, we feel really very special. चलिए आपको स्पेशल फील कराने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो ये है कि आपके मैसेजेस को हम पढ़ें और आपको बताएं कि आपने किन किन के लिए डेडिकेशन किया है. सो चलिए थोड़ी देर में ऑफकोर्स विल बी हेडिंग टुवर्ड्स योर डेडिकेशन जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं ऑन 5499 1294. 8:25 टू ऑल दोज जो अभी अंगड़ाइयाँ भरते भरते उठ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जस्ट नो कि हम आपके साथ हैं एंड वी जस्ट प्रे कि आपका दिन अच्छे से जाए. And all those जो ऑलरेडी उठ चुके हैं सुबह सवेरे से, आप लोग कनेक्टेड हैं विद RM2 रेडियो मस्ती, बस ऐसे ही सुनते रहिए दिव्या का साथ है इन योर टाइमलेस तड़का टिल 11 AM.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: All right, 8:36 already. Divya ka saath on the waves of Radio Masti, jahan par chal raha hai aapka timeless tadka till 11 AM. Chale badhte hain aapke kuch beautiful messages ki aur. Namaste, please play the next song for Akshat and Daksh, jo navratri ki taiyariyon mein lage hue hain from their father. And chaliye, papa ji, aapka naam kya hai? Aapne to bataya nahi, but jankar bahut hi acha lag raha hai ki zoro shoro se navratri ki taiyariyan chal rahi hain. Namaste, a very fruitful good morning, Divya ji. Kya baat hai, aapko bhi good morning. Morning. आज आपकी वाइफ सबिता बिहारी और आपकी सिस्टर इन लॉ गीता कल्पनाथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. फैमिली में डबल सेलिब्रेशन और आपको डबल खुशी हो रही है. चलिए, आपकी खुशी में शामिल होकर हम भी दोनों को विश कर रहे हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम ज्ञान बिहारी. और बेटा है कविश, योवेश, डॉटर इन लॉ रवीना, नेहा, संजीव, स्मिता, शीना, केशव, सभी बिहारी कल्पनाथ फैमिली. एंड कहती हैं कि इफ़ पॉसिबल प्लीज़ प्ले द सॉन्ग आओ झूमे गाएं फ्रॉम द फिल्म एक लड़का एक लड़की. हम ट्राई करते हैं क्योंकि अभी के लिए रिक्वेस्ट गाने नहीं चल रहे हैं, बट फॉर श्योर उनको एक बार फिर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सबिता जी एंड गीता जी.

0: Yeah. साथ में यहाँ पर किसी का मैसेज आया है. हाय दिव्या, ग्लैड टू हियर यू ऑन सैटरडे. योर प्रोग्राम इज द बेस्ट. थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट. वाह, क्या मैसेज पे मैसेज आपने भेजा है. आई शुड से कि इतना कॉम्प्लीमेंट सुबह सवेरे आप भेजेंगे तो हम खुशी से बस हाय मैं गुड़ खा के मर जावा. लेकिन थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है. कीप इट अप फ्रॉम अरमान. हे अरमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट अर्ली मॉर्निंग. हेलो नमस्ते, आज मेरी मामा प्रेमिला का बर्थडे है. विशिंग हर वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड एंड गुड हेल्थ. कोई भी अच्छा सा गाना उनके नाम. काइंड रिगार्ड्स फ्रॉम नीना ऑफ क्रिवक्या. नीना जी, आपकी प्यारी सी मामा प्रेमिला को हमारी तरफ से भी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. हेलो दिव्या, प्लीज डेडिकेट अ सॉन्ग टू बेटी मनीषा, बेटा आदेश, दामाद है रोशन और पोते हैं तुषार, लक्ष्य. टू ऑल तिलुआ फैमिली ऑफ रोजबेल, लव फ्रॉम शीला तूरी ऑफ नुवेल फ्रांस. थैंक यू सो मच शीला जी हमारा साथ देने के लिए. स्टे कनेक्टेड और कीप लिसनिंग टू द वंडरफुल गाने टिल 11 AM. हाय नमस्ते दिव्या जी, प्लीज काइंडली डेडिकेट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर माय सिस्टर संध्या मुसाई ऑफ कांटोहल. वो आज सेलिब्रेट कर ही अपना बर्थडे. आपकी प्यारी सी बहना को हमारी तरफ से भी वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड आप कहते हैं कि मे लॉर्ड महादेव फुलफिल ऑल हर विशेज. मेनी मेनी आशीर्वाद फ्रॉम मुसाई एंड गंगादीन फैमिली. गॉड ब्लेस फ्रॉम भाई शशि, मामा सुनीता, गीतिका खेमी, हस्बैंड मनोज, बेटा आरव, बेटी है श्रिया एंड सासुमा मावती की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार. प्लीज प्ले सॉन्ग परदेसी परदेसी जाना नहीं न्यू वर्जन फॉर माय डॉटर भाविया एंड वाइफ प्रीति फ्रॉम विमल बुलक. चलिए विमल जी, हम ट्राई करते हैं. एंड जैसे हमने कहा कि अभी के लिए रिक्वेस्ट वाले गाने तो नहीं चला रही हैं, बट फॉर श्योर नेक्स्ट वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड योर स्वीट फैमिली.
1: टाइमलेस तड़का.
2: RM2.
1: टाइमलेस तड़का.

0: FM2
1: Radio Musti.
2: Eh, hey, cum salopo au tab de?
3: Tivali, Morias, Noël, l'année tout pécosté. Mon pégé t'écoute, nous capable faire un peu shopping.
2: Ben écoute sa nouvelle là. Et à Mauritius, paye de une valise en plus quand tu perds Mumbai ou Chennai. Trois valises te pour gagner. 3 x 23 kilos.
3: Pas dire moi. Ah bien, nous allez nous ici d'où? Nous faire nous shopping et qu'un petit vacances nous vini. Pour tout vol à destination de Mumbai ou Chennai, vous avez droit à 3 valises de 23 kilos chacune. Offre limitée. Pour plus de détails et conditions, appelez-nous au 207 75 75. Visitez notre site web Air Mauritius. Ou contactez votre agence de voyage.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
5: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
6: Nestlé, good food, good life.
7: जी हाँ दोस्तों, आज बजकर 45 मिनट हो चुके हैं। कहा जाता है कि ज़िंदगी किसी किताब के पन्नों की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना पलटना पड़ता है। हम अक्सर बीते हुए पन्नों को याद करके उदास होते हैं या आने वाले पन्नों की फिक्र में उलझ जाते हैं, लेकिन असली कहानी तो उसी पन्ने पर लिखी जा रही है जिसे हम आज जी रहे हैं। इसलिए कल की चिंता छोड़िए और आज के पन्नों पर खूबसूरती से आप दिल की सियाही से अपनी कहानी लिखने की कोशिश कीजिए।
4: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
5: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
6: Nestlé, good food, good life.
0: Music all day long. Radio Musti.

Well, 8:55 मिनट हो चुके हैं. How can we forget this गाना? To all those जिनकी एक खूबसूरत मेमोरी है इस गाने के साथ, enjoy this one. It's Loveology in the beautiful voice of Shan. चलिए कुछ ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. इसके बाद एक बार फिर से हमारी आपकी मुलाकात इन द सेकंड आवर ऑफ टाइमलेस तड़का.

0: अपने घर मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे है और यहाँ पर संक्षिप्त समाचार लेकर के आ गई है पूजा हस्साबे सुकालू। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार अभी सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की ओर से नई योजना तैयार की गई है। आज शनिवार से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 15 कार्यान्वयन फिनिक्स के उन सभी इलाकों में फिर से पानी की आपूर्ति की जाएगी जो पानी की कटौती से प्रभावित है। हर 2 दिन में एक शहर को 5 घंटे तक पानी दिया जाएगा। वाटर टैक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत उन लोगों को पानी की 2 टंकियां और 1 पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिनके पास ये उपकरण नहीं है। इसके लिए जनता को डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास टंकी और पंप नहीं है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से मॉरिशस में महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। इसका विशेष प्रभाव परिवहन, वितरण और स्थानीय उत्पादन पर पड़ रहा है। इस बीच अपेक के अध्यक्ष सत्यदेव तैगौ ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और मॉरिशस में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने की वकालत की है। वहीं कंज्यूमर आईज एसोसिएशन CEA के सचिव क्लोद कनाबादी ने कहा कि इस स्थिति से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति की लागत में बढ़ोतरी के कारण और भी गंभीर हो गई है। कल रात कॉलेव्यू में 27 वर्षीय एक महिला को गोली जैसी वस्तु लगने के बाद विक्टोरिया अस्पताल की ICU में भर्ती कराया गया। घटना के समय वो एक वैन में सवार थी और नौकरी से अपने घर वापस लौट रही थी। लगातार दूसरी रात कॉलेव्यू के निवासियों ने पानी न मिलने के विरोध में टायर जलाए। इस बीच कथित तौर पर गोली भी चलाई गई। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल आयात करने के एक समझौते की घोषणा की है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार और शुभ दिन।
2: Timeless Tadka. RM2. Timeless Tadka.

0: 9:08 मिनट हो चुके हैं. दैट वाज सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, अनिधि मोहन फॉर यू. कश्मीर में तू कन्याकुमारी, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस. एंड चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे ऑफ कोर्स, एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने आपको सुनाते रहेंगे ताकि आपको ये पॉजिटिव वाइब्स मिले एंड आपको भी लगे कि सुबह सवेरे ये माहौल कितना खूबसूरत है. और इस माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज स्टे हैप्पी. जब आप खुश रहते हैं ना तो इर्द गिर्द में जितने भी सारे आपके लोग हैं सराउंडिंग में वो भी खुश रहने लग जाते हैं. और वैसे कहते हैं ना कि अ स्माइल इज वेरी कॉन्टेजियस एंड अ स्माइल इज अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट. तो हमेशा आप हर एक सिचुएशन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. और क्या पता आपकी हंसी को देखकर कुछ लोग अपने साइलेंट बैटल्स लड़ रहे हैं, और क्या पता आपकी इस हंसी को देखने के बाद उनको अच्छा महसूस होता है. And you never know कि आपकी जो हंसी है might be a sign of strength to others. इसलिए हमेशा आप कभी weak ना पड़े. And चलिए उम्मीद करते हैं कि आज के दिन आप ज़रूर अपने Saturday को और भी special बनाएंगे. And अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो definitely it's going to be super extra special, क्योंकि आज है Saturday और ऊपर से आप good music के साथ जुड़े हुए हैं तो of course special तो होना ही है. और साथ में आपके messages का भी इंतज़ार करेंगे on 5499-1294. किसी की शादी की सालगिरह है, किसी का बर्थडे है, या फिर कोई बहुत ही जल्द शादी करने वाला है, या फिर ऐसे ही सुबह सवेरे समवन क्रॉस्ड योर माइंड और उनके लिए कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं टू मेक देम फील स्पेशल, तो ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस का हम इंतजार कर रहे हैं ऑन 5499-1294. इट्स अ वंडरफुल सैटरडे मॉर्निंग और ऐसे में दिव्या साथ है इन योर टाइमलेस तड़का टिल 11 AM.
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का.

0: Express तड़का
1: RM2।
2: चलिए आज है सैटरडे 10 अक्टूबर 2026 एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल विद योरसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, या फिर अगर आप काम पर हैं तो काम पर भी आप एक गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कभी कभी काम में क्या होता है, कुछ कलीग्स फ्रेंड से बढ़कर बन जाते हैं और फैमिली से बढ़कर बन जाते हैं, तो इस बॉन्डिंग को हमेशा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रखिएगा। एंड टू ऑल दोज वर्किंग राइट नाउ, आपको बो ख्वाश। टू ऑल दोज जो इस वक्त शायद ट्रैवल कर रहे हैं, बस में, टैक्सी में हैं, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल द ड्राइवर्स जिन्होंने चूज़ किया द नंबर वन रेडियो स्टेशन विच इज़ RM2 रेडियो मस्ती। चलिए यहाँ पर अगला गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर रेबेका स्नेहा चांद। एंड आप कहते हैं कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो चलिए आपको हम कहेंगे गेट वेल सून एंड हमारी पूरी पूरी विशेज आपके साथ हैं एंड विश यू अ क्विक रिकवरी। हाई रेडियो मस्ती, नेक्स्ट गाना गुजार फॉर गीता सीता बोलूराम ऑफ शातो बनारस। एंड ऐसे ही आप लोग हमारा साथ देते रहिएगा एंड इट फील्स सो गुड

0: जब आपके मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं। एंड चलिए आप इस शो में चार चांद लगाते रहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे टू कीप यू वेल एंटरटेन्ड टिल 11 AM।
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का।

0: Express Tadka.
1: RM2
2: 9:35 होने को हैं, बढ़ते हैं कुछ और ब्यूटीफुल आपके मैसेजेस की ओर. गुड मॉर्निंग दिव्या, यू सीम परफेक्टली फाइन विद फुल एनर्जी टुडे. यस यस, सेहत जब ठीक होती है ना तो सब कुछ अपने आप में ही बहुत ही ठीक लगने लगता है. इसीलिए शायद माधवी जी कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ. जब सेहत ठीक होती है तो सब कुछ अपने आप में ही सब कुछ अच्छा लगता है. तो माधवी जी, आप हैं सैफ्रांसवा कालू जी से, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एज यूजुअल सुबह से मेरी सिलाई में लगी हुई है. कीप इट अप एंड आपको बोन कुराज. हाय रेडियो मस्ती, प्लीज प्ले अ ट्रैक फॉर माय हस्बैंड दीपक फ्रॉम तिरासों पॉइंट टू साबल, हु इज बिजी डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स बिफोर दुर्गा पूजा फ्रॉम वाइफ लक्षणा चमन. थैंक यू सो मच लक्षणा हमारा साथ देने के लिए. एंड आपके पति को भी स्पेशल थैंक्स कि बस लगे हुए हैं घर के कामकाज में, आपकी हेल्प कर रही है. तो चलिए दीपक और लक्षणा के लिए अगला गाना. गुड मॉर्निंग, कैन यू प्लीज शाउट आउट टू आर्या परमा. आज उसका बर्थडे है, शी इज़ ऑफिशियली 7 years अ बिग गर्ल. एंड आप उनको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं. थैंक यू फ्रॉम भाई अवनीश, मामा पूजा, दीदी अरहा एंड पापा सतीश. तो हमारी छोटी सी प्यारी सी एंजल आर्या को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. और साथ में आशा जी आ चुकी हैं ऑल द वे फ्रॉम कॉटेज. हेलो आशा जी, कैसी हैं आप? नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ और सबको आपने विश किया है हैप्पी सैटरडे. एंड ऑल्सो गोज आउट फॉर मामा कुमारी, नेफ्यू हैं शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजूराज, सभी जानू फैमिली. नवरात्रि की साफ सफाई चल रही है रेडियो मस्ती के साथ. गीतों को एंजॉय करते करते आप साफ सफाई कर रही हैं तो चलिए आपको भी बों कुहाज. आई नो कि अगले हफ्ते से, बस अगले हफ्ते से नहीं बल्कि कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी. एंड इसके लिए सब लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं. टू ऑल दोज जो अभी बस थक रहे हैं घर की साफ सफाई के साथ, आपको हम विश करेंगे बों कुहाज. लेकिन इतना भी मत थकिएगा कि बस एनर्जी ही ना बचे फॉर दिस सैटरडे. आप थोड़ा काम बैलेंस कीजिए खुद के लिए और दूसरों में, जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं घर में, आप बस एक एक काम एक एक फैमिली मेंबर्स को दे दीजिए. एंड बस मिलकर सब लोग एक एक काम करेंगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा. सो वंस अगेन, बुक वॉश ऑल दोज जो काम पर हैं, टू ऑल दोज ऑल्सो जो घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: चले ऐसे ही आप ट्विस्ट करते रहिए एंड डांस करते रहिए. कीप ग्रूविंग एंड कीप मूविंग. चलिए यहाँ पर कुछ और आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं. हाय अनीता जी ऑफ फ्लैक, हैप्पी बर्थडे टू युधिश बुधुसाम ऑफ फ्लैक, विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल जिनकी पर साथ फैमिली और साथ

यहाँ पर आप कहती हैं गुड मॉर्निंग दिव्या, सैटरडे ब्लेसिंग्स, मैं भी सफाई कर रही हूँ नवरात्रि के लिए। यहाँ पर 10 डिग्री, ठंडी ठंडी हवाएं, तेज तेज हवाएं और बारिश हो रही है। ओ माय गॉड, बोंकवास्ट यू प्रकाशवती जी। एंड मौसम तो एकदम रोमांटिक वाला है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा इनकन्वीनियंस तो होता है ही, बट चलिए हमारा साथ देते रहिए, आप सारा कुछ भूल कर एंजॉय करते रहेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग वेडियो मस्ती एंड टीम, मैं अश्वनी बिलेया से

0: Anush, and we also have Bala, Kevin of Bolo. और हमारी प्यारी सी ज्योति जो अब शातु बना है. नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर आशनी, रेखा, सुरेखा, मतलब फैमिली एंड हमारे लिए. तो चलिए ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा. नेक्स्ट गाना गुज आउट उन तमाम लोगों के लिए जो नवरात्रि की तैयारियों में लगे हुए हैं माँ के स्वागत के लिए. तो चलिए माँ आपके ऊपर ज़रूर अपनी कृपा बरसाएगी और आशीर्वाद भी.
1: Timeless तड़का.
2: RM2.
1: Timeless तड़का.

थैंक यू सो मच हमें इतना चाहने के लिए रेडियो मस्ती पर इतना प्यार लुटाने के लिए अंतिश ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड कनेक्टेड है हमारे साथ क्या बात है ड्राइव करते करते फुल ऑन रेडियो आप सुन रहे हैं फुल ऑन वॉल्यूम के साथ थैंक यू सो मच अंतिश हमारा साथ देने के लिए एंड कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रहे हैं संक्षिप्त समाचारों की ओर इसके बाद एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात इन द थर्ड आवर ऑफ टाइमलेस तड़का

0: घर मिलाते चलिए दिन के 10 बजे हैं आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से नमस्कार
1: नमस्कार दिव्या सभी को मेरा नमस्कार जल आपूर्ति की एक नई योजना तैयार की गई है आज शनिवार से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 15 लाखावेन फिनिक्स के उन सभी इलाकों में फिर से पानी की आपूर्ति की जा रही है जो पानी की कटौती से प्रभावित थे नई योजना के तहत वाक्वा और फिनिक्स में बारी बारी से पानी की आपूर्ति की जाएगी हर दो दिन में एक शहर को 5 घंटे तक का पानी दिया जाएगा इस प्रकार वाक्वा फिनिक्स और सैंपिया में सुबह 3 बजे से 8 बजे तक पानी की आपूर्ति होगी अगले दिन इसी समय क्यूपी पफोरेसाइड और फ्लोरियाल में पानी की आपूर्ति की जाएगी बात करते हैं अब कैबिनेट की बैठक में कल लिए गए इस फैसले के बारे में उन लोगों को पानी की 2 टंकियां और 1 पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिनके पास ये उपकरण नहीं है इस योजना का लाभ उठाने के लिए जनता को डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास पानी की टंकी और पंप नहीं है इसके बाद उन्हें 1 कूपन दिया जाएगा इस की मदद से वे अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कंपनी से ये उपकरण प्राप्त कर सकेंगे ये पहल वाटर टेक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत लागू की जा रही है हरविंद सुनारायण फिलहाल एनटीसी के जनरल मैनेजर के पद से हटकर सार्वजनिक सेवाओं के महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किए गए हरविंद सुनारायण को जल क्षेत्र में तत्काल आवश्यक कदमों की निगरानी करने और मध्यम एवं दीर्घकालीन समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कल रात कालिव्यू में 27 वर्षीय एक महिला को गोली जैसी वस्तु लगने के बाद विक्टोरिया अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया है घटना के समय वो एक वैन में सवार थी और नौकरी से अपने घर वापस लौट रही थी लगातार दूसरी रात कालिव्यू के निवासियों ने पानी न मिलने के विरोध में टायर जलाए विदेश में इसायास तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में दस्तक दी है इस तूफान के कारण जानलेवा बाढ़ और तेज हवाएं चलने की आशंका है जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है इस सप्ताहांत उत्तरी अमेरिका को प्रभावित करने वाले 3 तूफानी सिस्टम में से इसायास तूफान 1 है अन्य 2 तूफान मेक्सिको और दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहे हैं प्रशांत महासागर के गर्म पानी और एल नीनो के प्रभाव को इन तूफानी प्रणालियों से जोड़ा गया है तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए नमस्कार और शुभ दिन
2: Your news on NBC Play and NBC.mu.
3: Timeless Tadka.
4: RM2.
3: Timeless Tadka.

0: घड़ी मिलाते चलिए 10:08 हो चुके हैं
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का

0: एस तड़का
1: RM2।
2: वैसे कहा जाता है कि beauty lies in the eyes of the beholder। अगर आप अपनी नजर घुमाएंगे ना तो चारों तरफ आपको खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देगी। स्पेशली जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो यू नीड टू रियलाइज कि आपके सराउंडिंग में जितने भी सारे लोग हैं या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, वो कितना खूबसूरत है। और तभी जाकर जब आप मन में ये खूबसूरती बसा कर रखते हैं ना तो दिन भर आप खूबसूरत चीज़ों पर ही फोकस करेंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा सोचें एंड दिल में भी अच्छा अच्छा रखें। सो चलिए, यहाँ पर 10:14 हो चुके हैं। देखते ही देखते वी हैव रीच्ड द लास्ट एंड द थर्ड आवर ऑफ योर टाइमलेस तड़का, जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 11 AM। सो चलिए, मुझे लगता है कि ये एक घंटा बहुत ही स्पीड के साथ

0: बस खत्म ही होने वाला है, बट जितना हो सके हम समेटने की कोशिश करेंगे ब्यूटीफुल गाने टिल 11 AM. चलिए यहाँ पर किसी ने हमें एक मैसेज भेजा है, हाय दिव्या जी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी स्वीट सॉन्ग हमेशा की तरह, एंड आपको हैप्पी सैटरडे. थैंक यू सो मच अनीता जी, आपको भी हैप्पी सैटरडे, सभी रेडियो मस्ती टीम को भी आपने विश किया है. तो चलिए अनीता जी, आप हैफली कॉन्फ्लैक्स से हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. अगर आपके मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं तो आप हमें ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ मौसम कैसे है और आप किस तरीके से अपने इस सैटरडे मॉर्निंग को स्पेंड कर रही है. तो चलिए यहाँ पर नॉनस्टॉप आप लोगों के लिए ऐसे ही गाने चलते रहेंगे और नॉनस्टॉप आपके मैसेजेस हम तक आने चाहिए ऑन 5499-1294.
1: टाइमलेस तड़का,
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का.

0: participants. Allô, rendez-vous les 31 octobre. SBM Trail, parade ça!
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की। सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि। मे दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल।
3: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन ब्रदर्स

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: L'occasion Durga Puja, Siddhi Vinayak Shop. Et habitez-vous pour son grand Durga Puja Mahotsav Sales. Commencez vendredi 9 octobre jusqu'à mardi 20 octobre 2026. Visite Duban Shop pour profiter jusqu'à 40% discount. Loin grand voyer des produits. Et qu'apportez ça vendredi 9 jusqu'à dimanche 11 octobre. Siddhi Vinayak Shop dans Payot, Mondésia. Pour recevoir pour late night shopping jusqu'à 23h. Allô, visite votre Siddhi Vinayak Shop qui plie près aux autres. Que pipe vis-à-vis Sai Baba Mandir. Payot, Mondésia. Yabakwa et Cœur de Ville Flac pour notre Navratri Shopping. Durga Puja Mahotsav depuis 9 jusqu'à 20 octobre dans tous les Siddhi Vinayak Shop.
2: RM2
3: Radio Musti.
4: Radio Musti M2PM Suntera.
5: 10:28 हो चुके हैं टू ऑल दोस कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती साथ देने के लिए दिल से आपको शुक्रिया एंड कहते हैं ना कि प्यार में सबसे कीमती चीज अगर आप किसी के लिए निकाल पाते हैं तो वो है आपका वक्त टाइम इज सो प्रेशियस और ऐसे में जब आप अपने समय किसी को दे पाते हैं तो इट मींस द वर्ल्ड टू देम और यकीन मानिए इट मींस अ लॉट टू अस दिल से आपको शुक्रिया कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं चलिए दिव्या का साथ इन योर टाइमलेस तड़का एंड ये गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे हमारे प्यारे से रोशन जी के लिए हमारे एमबीसी कलीग क्या कैसे हैं आप रोशन जी ठीक ठाक एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वक्त अपना नाम सुनकर जरूर मुस्कुरा रहे होंगे और ये गाना गुजाओ स्पेशली फॉर यू रोशन जी एंड खास तौर से हमारी प्यारी सी भाभी जी के लिए मनीषा जी एंड बच्चे हैं जयशल एंड रिशल के लिए भी कनेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम थ्रियोली थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए एंड चलिए ये गाना टू ऑल दोज जो इस वक्त घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं और नवरात्रि कल से शुरू होने वाली है माता रानी आप पर

अपनी कृपा बरसाती रहे। और कभी कभी हम क्या करते हैं, 9 दिनों तक हम व्रत रखते हैं, किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहते हैं या फिर बुरा नहीं सोचते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली अ प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ, ताकि आप इस प्रैक्टिस को बाकी दिनों में भी इसको लागू करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो फास्टिंग होता है, जो व्रत होता है और जो घर की साफ सफाई होती है, वो सिर्फ 9 दिनों तक नहीं होती है, वो बाकी दिनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब आप घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है रियलाइज़ करने के लिए कि बस आप अपने दिल की साफ सफाई भी कीजिए। जो मन में दूसरों के लिए मनमुटाव है, जो मन में दूसरों के लिए खटास है, जो करवाहट है, उसको दूर कर दीजिए। बस अच्छा अच्छा सोचिए और दूसरों के बारे में भी अच्छा कहिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा।

0: तजुर्बे के लिए हम यहाँ पर खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि सोच रहे थे कि आप इतने प्यार से साथ दे रहे हैं तो क्यों ना आपको एक गिफ्ट दिया जाए। यस यस, वी आर ऑल सेट आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट देने के लिए। एंड हम खेल रहे हैं विद सेंटर पॉइंट। अगर आपकी जीत होती है तो विनर को मौका मिलता है टू विन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 1500 रुपीज़। यस 1500 रुपीज़। तो बस आपको हमारे साथ पार्टिसिपेट करना होगा एंड जस्ट गेट रेडी टू सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ डांडिया विद सेंटर पॉइंट दिस सैटरडे 17th अक्टूबर। एक्सपीरियंस एन इवनिंग ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, फेस्टिव बीट्स एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स एट सेंटर पॉइंट थ्रियानो एज फ्रॉम 6 PM। तो चलिए अभी के लिए आपके साथ हम एक बॉलीवुड इक्वेशन करेंगे। बहुत ही आसान है, स्पेशली अगर आप बॉलीवुड को करीब से फॉलो करते हैं तो आपको जरूर पता होगा। अगर हम आपसे कहें साल 2000, यस ईयर 2000, प्लस मलाइका अरोड़ा प्लस बॉबी डियोल इज इक्वल टू कौन सी मूवी के बारे में हम बात कर रही हैं। अगर हम आपसे कहें ईयर 2000 प्लस मलाइका अरोड़ा प्लस बॉबी डियोल इज इक्वल टू कौन सी मूवी, एक्चुअली हम बता देते हैं कि ये एक्चुअली एक गाना है और इस गाने में मलाइका अरोड़ा ने अपना गेस्ट अपीयरेंस दिया था। शी वॉज नॉट इन द मूवी। बस आपको हमें बताना है कि हम कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294 पूरे नाम और पते के साथ। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना सरनेम नहीं बताएंगे या फिर अपना फुल एड्रेस तो लकी ड्रॉ में हम आपका नाम शामिल नहीं कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे नाम और पते के साथ हमें सही जवाब भेजें। ऑल द वेरी बेस्ट।
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: La fin l'année des costés, tu ne parais?
4: Pas juste l'année, et ta dépense aussi.
3: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client côte Rogers Capital pégaye 500 roupies rabais, l'osote premier mensualité.
4: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
3: Application facile! Zis avec de code identité.
4: Asté à mon faire l'année sans tracas.
3: Attendez, fais ou application premier crédit côte Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit. Perçu licence de la FSI.
5: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
6: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
5: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्म्थ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
6: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
7: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन ब्रदर्स

0: Right, 10:42 already and कुछ ही देर पहले हमने आपसे एक सवाल किया था कि हम आपके साथ एक बॉलीवुड इक्वेशन करेंगे और आपको सही जवाब देना था. एंड हमने कहा साल 2000 प्लस मलाइका अरोरा प्लस बॉबी डियोल इज इक्वल टू कौन सी मूवी. द राइट आंसर इज बिट्टू. यस, एक्चुअली हमने आपको एक हिंट दिया था कि वो इस मूवी में नजर नहीं आई थी, बट शी प्लेड गेस्ट अपीयरेंस. उनका एक कैमियो था इस एक गाने के अंदर और शायद वो गाना आपको याद होगा, सानू एक बार तकले सानू तू. तो दैट वॉज द राइट आंसर एंड बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए, कुछ कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिए, बट द राइट आंसर इज बिच्छू. तो चलिए यहाँ पर लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है धीरज जीते तो और वत्रियुले. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू धीरज जी, आपको मिल रहा है अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 1500 रुपीज. गेट रेडी टू सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ डांडिया विद द सेंटर पॉइंट दिस सैटरडे 17th अक्टूबर. Experience an evening of vibrant colors, festive beats and unforgettable moments at Center Point Trianu as from 6 PM. So आपका चांस था, आपने ये बाजी जीत ली. तो थैंक यू सो मच हमारे इस रेडियो गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड यू आर बींग ऑफर्ड 1500 गिफ्ट वाउचर ऑफर्ड टू यू बाई सेंटर पॉइंट, जहां हर ताल में है जश्न और हर कदम में है रंग. सेंटर पॉइंट डांडिया नाइट, वन इवनिंग वन रिदम एंड एक्सपीरियंस टू लिव. एंड धीरज जी आपको हम बता देते हैं दैट आवर टीम विल गेट बैक टू यू आपको ये बताने के लिए कि हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव द गिफ्ट. वैसे यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि मे बी द गिफ्ट वाउचर विल बी सेंट टू यू बाय पोस्ट, लेकिन फिर भी हमारी टीम विल गेट बैक टू यू. सो वंस अगेन धीरज जी आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस.
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. Timeless Tadka.
1: RM2.
2: 10:48 हो रेडी एंड चलिए एक फैशन टिप्स हमेशा हर सैटरडे की तरह हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए कुछ नुस्खे जो आप अप्लाई कर सकते हैं टू योर रूटीन मेकअप. तो आज हम बात करेंगे योर लिपस्टिक कलर. अगर आप कभी भी वाइट आउटफिट डाल रहे हैं तो इसके साथ न्यूड पिंक लिपस्टिक या फिर पीच या फिर सॉफ्ट रोज कलर ज़रूर लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं. इट लुक्स वेरी नाइस और ये आपके वाइट आउटफिट को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेगा. कभी भी आपने रेड आउटफिट डाला है तो इसके साथ क्लासिक रेड लिपस्टिक, डीप रेड या फिर ब्रिक रेड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं.

डार्क आउटफिट के लिए यू कैन अप्लाई मरून लिपस्टिक, वाइन कलर लिपस्टिक या फिर बोल्ड रेड. और ब्लैक एंड वाइट आउटफिट में बोल्ड रेड बहुत ही अच्छा लगता है. ये जो आपका कलर होता है वो निखर कर आता है, तो डेफिनेटली आप बोल्ड रेड को ऑप्शन में रख सकते हैं फॉर वाइट एंड ब्लैक आउटफिट. ग्रीन आउटफिट अगर कभी भी आप डाल रहे हैं तो इसके साथ कोरल पिंक या फिर न्यूड ब्राउन, पीच न्यूड या फिर रोज ब्राउन कलर लिपस्टिक बहुत

0: अच्छा लगता है. सो एवरी टाइम आप सजते हैं धजते हैं यू नीड टू बेयर इन माइंड आपका कलर कंट्रास्ट. एंड ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप आउटफिट पहन रहे हैं उसको आपको एनहांस करना है. और ये तभी भी निखर कर बाहर आता है जब आप अपने मेकअप लिपस्टिक और मस्कारा को इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.

चलिए यहाँ पर वी विल डेफिनेटली लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सूरज लचाना ऑफ काहोलिन बिलेरियासेस. आप 60 इयर्स के हो गए हैं, दैट्स अ वेरी स्पेशल एज. हैप्पी बर्थडे टू यू सूरज जी, बेस्ट विशेस फ्रॉम वाइफ तनुजा, बेटा आश्ले आशीष, बहन है मध्या, अमृता, जीना, विश्वामी, विद्या, ब्रदर्स हैं कपूर, विद्यानंद, चंदा, रीशा, प्रतीक्षा, रॉबिन, विनीता, विश्वला, पद्मिनी, कुणाल एंड सभी लचाना फैमिली की तरफ से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे.

0: FM2
1: Radio Musty.
2: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
0: RM2
1: Radio Musty.
3: Well, friends, it's 10:56 already, and चलिए इसी के साथ it's a time for me to say goodbye to all of you. Nilmani all set हैं आपको entertain करने के लिए, लेकिन लेकर चलेंगे आपको स्टूडियो के बाहर. तो चलिए अभी के लिए दिव्या के जाने का वक्त आ चुका है. हम जा रहे हैं वापस आने के लिए एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए very soon on Monday. तब तक के लिए take care, keep smiling, have a great week and have a blast. Bye bye.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा नमस्कार।
1: नीलमणि सभी को मेरा नमस्कार। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से मॉरिशस में महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। इसका विशेष प्रभाव परिवहन, वितरण और स्थानीय उत्पादन पर पड़ रहा है। इस बीच अपेक के अध्यक्ष सत्यदेव तैगव ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और मॉरिशस में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने की वकालत की है। वहीं कंज्यूमर आय एसोसिएशन के सचिव क्लोद कानाबादी ने कहा कि इस स्थिति से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति की लागत में बढ़ोतरी के कारण और भी गंभीर हो गई है। वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत उन लोगों को पानी की दो टंकियां और एक पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिसके पास ये उपकरण नहीं है। इसके लिए जनता को डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास टंकी और पंप नहीं है। और CWA की ओर से नई योजना तैयार की गई है। आज शनिवार से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 15 लाकावियन फिनिक्स के उन सभी इलाकों में फिर से पानी की आपूर्ति की जाएगी जो पानी की कटौती से प्रभावित थे। हर दो दिन में एक शहर को 5 घंटे तक पानी दिया जाएगा। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल आयात करने के एक समझौते की घोषणा की है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में। शुभ समाचार। हाईलैंड्स फिनिक्स में 89 साल के 89 years old जनाब अबू तालिब केदन, जनाब अबू तालिब केदन जिन्हें लोग ताले नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके मकान हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM एवेन्यू वीरा सामी अय्यर मुसलमान काफिले ओ शितिया रूज में 43 साल के 43 years old श्री दिनेश राम नियाल जिन्हें लोग बंती और बैन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान अवेन्यू वीरा सामी अय्यर मुसलमान काफिले ओ शितिया रूज से उठाकर सिपाही भीले वाली दुप्रेत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। और देसाई स्ट्रीट बोबासे में 87 साल के 87 years old श्री प्रवीण लाल देवचंद करमन शाह जिन्हें लोग प्रवीण लाल नाम से अधिक जानते थे और जो केयर होम पालमा कैटोबोन में बीजी थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज इनकी अर्थी मंगलवार 13 अक्टूबर को दिन के 1:30 बजे इनके भतीजे गिरीश देसाई के मकान देसाई स्ट्रीट बुबास ऐसे उठाकर शेबेल कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे एट 1:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
0: And yes, good morning. स्वागत है आपका once again RM2 Radio Musti पर। 11:05 हुए हैं नमनी और आज आपके लिए कुछ स्पेशल है। एंड यस बॉली ब्रांच में आपको घुमाने ले जाएंगे स्टूडियो के बाहर। कहाँ वेल जानेंगे जल्द ही। अभी के लिए वाइब करते हैं इस नेक्स्ट गाने के साथ आपके RM2 Radio Musti पर।

0: FM2
1: Radio Masti.
2: And yes, so basically it's time to go outside the studio to meet with Neetu Shah. Good morning, Neetu.
3: गुड मॉर्निंग हमारे जितने भी लिसनर्स एंड ओम गण गणपते नमः, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और हम स्टूडियो से बाहर डेफिनेटली आ गए हैं. और अगर आप जानना चाहेंगे हम हैं कहाँ आज हमारी टीम, सो हम हैं आज मोदीजिया, खास तौर से पायुट वाकवा, जहाँ पर सिद्धि विनायक शॉप. इस पूजा शॉप के बारे में हम जितना कहें जितनी तारीफ करें कम ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पूजा शॉप ही नहीं है, ये जो वाइब है यहाँ पर, क्योंकि आज अंतिम दिन है पितृपक्ष की और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है. और जब भी नवरात्रि शुरू होती है, जब भी कोई पर्व आता है, तो यहाँ पर माने कि आज मोदीजिया वाकवा, और भी इनके बारे में हम बताएंगे आपको, और भी हैं लाइक द विल फ्लैक और वुटन, जैसे कि क्यूपिप में है विसावी साई बाबा. सिद्धि विनायक शॉप आज खुले हुए हैं क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है. सो जय माता दी सभी भक्तों को, और हमारी पूरी टीम आपके साथ है. 3 घंटों का ये सफर हम आपके साथ तय करने वाले हैं, और आज खास तौर से हम आए हुए हैं आज मोदीजिया वाकवा सिद्धि विनायक शॉप. तो यहाँ पर कल से, जी हाँ, आपको बताते चले कि कल से शुक्रवार 9 से और 20 मंगलवार 20 अक्टूबर तक 40% डिस्काउंट. आप सोच रहे होंगे 40% डिस्काउंट, जितने भी पूजा सामान है यहाँ पर, सब तो नहीं कहेंगे लेकिन अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. और जब पूजा शॉप की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए पूजा के सामान हैं, वस्त्र हैं, मूर्ति है, तोरण दिए मिट्टी के हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, स्टेशनरीज हमने देखे हैं यहाँ पर, चुनरी है, माता के चेहरे है, श्रृंगार है. और इसके अलावा यहाँ पर हमेशा जब आते हैं तो आप अपने मुँह को है मीठा भी कर सकते हैं, स्वीट्स है, मिठाइयाँ हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ जलेबी है, बर्फी है, लड्डू है, और भी हैं यहाँ पर. हेलो जी, प्रणाम, नमस्कार. तो चलिए, यहाँ पर लोग हमें देख रहे हैं, ये कौन बात कर रही है, आप अपनी शॉपिंग कीजिए, आपसे हम भी बातें करते रहेंगे. लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू कि आज सिद्धि विनायक शॉप जो है एट मोदीजिया वाकवा खुले रहेंगे. लेट नाइट शॉपिंग आप कर सकते हैं रात्रि के 11 बजे तक, यानी कि अप टिल 11 PM यहाँ पर आप आराम से. आज शनिवार का दिन है, कई लोग जो है काम पर निकलेंगे, लेट नाइट शॉपिंग के लिए सोचेंगे कहाँ आना है. एक ही एड्रेस आपको आना है एट सिद्धि विनायक शॉप, या तो आप बनते हैं तो कहाँ, मोदीजिया पायुट जो है वाकवा, या तो क्यूपिप विसावी साई बाबा मंदिर, या तो कर्जविल फ्लाक, वहां पर भी आप जा सकते हैं अपनी शॉपिंग के लिए. और भी बातें होंगी, और भी डिस्काउंट्स के बारे में जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपको बताते चलेंगे. बस आप हमारे साथ जुड़े रहे टू रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: तो यहाँ पर श्री गणेश हो चुका है एट सिद्धि विनायक शॉप एंड आज रेडियो मस्ती टीम वी आर लाइव फ्रॉम मोजेसिया वाकवा, जहाँ पर कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चाहे वो घर के बड़े हो और बच्चे भी हैं साथ में परिवार। जब भी कोई पर्व हम लोग मनाते हैं तो परिवार के साथ मनाते हैं। तो आइए एट सिद्धि विनायक शॉप आपके पूजा सामान के लिए, हर ओकेजन के लिए। अभी आज तो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, पूजा भी बाकी है, कल से नवरात्रि, नौ दिनों तक माँ की आराधना करने के लिए आपको सामान चाहिए पूजा के। तो यहाँ पर लेट मी टेल यू कि जैसे हमने आपको शुरुआत में ही कह दिया है कि पूजा सामान जो होते हैं, बहुत सारे तोरण जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर वस्त्र है, वस्त्र के बारे में क्या कहना, ओ हो। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे हैं कहाँ ये, तो अगर आप कैथुबोन कौंडस से होकर वाकवा की ओर जाएंगे तो इट्स ऑन योर राइट, और अगर आप वाकवा से होकर कैथुबोन की ओर जा रहे हैं तो लेफ्ट है। आप देखोगे एक लाटोन जैसे कहते हैं, यहाँ पर पंडाल लगाया हुआ है, तो आप आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं आपकी मदद के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो ट्रैफिक में कोई रुकावट ना हो, इसलिए यहाँ पर हर कोई अपना काम कर रहा है। सो हाँ, हम बात करें अब बात माता की जो वस्त्र है यहाँ पर, और अगर आप ढूंढ रहे हैं रंग बिरंगे हैं यहाँ पर, कैसे हैं देवी जी? प्रणाम।
2: प्रणाम,
1: कैसे हैं आप?
2: ठीक।
1: क्या ढूंढ रही हैं आप? माता के लिए वस्त्र अभी बस देख रही है
2: बस।
1: तो चलिए, आप यहाँ पर आ गई है तो बिल्कुल ठीक है, अभी काम पर है तो आप यहाँ पर देखिएगा जरूर। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं देखने आएंगे हैं क्या, हम जो चीजें ढूंढ रहे हैं माता के श्रृंगार के लिए, माता के वस्त्र, माता की चुनरी, जो बैंगल्स हैं यहाँ पर, कंगन जो भी है आपको ढूंढ रहे हैं, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा है कि जब भी आप सिद्धि विनायक शॉप, चाहे वो मोदिस या वाकवा हो, चाहे वो क्यूपिप हो, क्यूपिप यानी कि विजावी जो है साई बाबा मंदिर, आपको पता ही है, एंड कर्देवीर फ्लैक में भी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं आपकी मदद करने के लिए, एवरीवन, हर कोई यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए है। आप बस कहें आपको चुनरी चाहिए, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ चुनरी है, लाल है, बेज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, यानी कि रंग बिरंगे आपको चुनरियाँ मिल जाएंगी। कई लोग छोटी जो चुनरियाँ पसंद करती हैं, कई लोग जो है बड़ी जो चुनरियाँ पसंद करती हैं, तो यहाँ पर आप आ जाइएगा, बस अपने जो टोकरी है उसमें जो भी है आप लीजिएगा, क्योंकि डिस्काउंट, यस ये मत भूलिएगा, 40% डिस्काउंट लगे हुए हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल द आइटम्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अबाउट चुनरी, तो आपके लिए है ड्रेस, जो ड्रेस है यहाँ पर एकदम मेरे हाथ में अभी एक लाइक पीली है, इसमें फूल भी है, बहुत ही खूबसूरत है, एक पिंक है, यानी कि छोटी चुनरियाँ हैं, बड़ी चुनरियाँ हैं, जो ड्रेसेस हैं माता के वस्त्र जो है, इसमें है पर्ल्स, वाओ सो खूबसूरत। मैं फोटो खींच के डालूंगी, ऑफकोर्स आप देख सकते हैं हमारे टिकटॉक पेज पर या फिर फेसबुक पेज पर, तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ रंग बिरंगे हैं यहाँ पर, तो आप बस इनको लीजिएगा। और मैं देख रही हूँ एक जो सेट है फुल है, एंड इट्स 1200 रुपीज़, 1200 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि आपको अगर अपनी मूर्ति को, अपनी माता के कलश को सुंदर बनाना है, श्रृंगार करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। और भी है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ, ओहो हो हो, क्या खूबसूरत है, इतने खूबसूरत जो माता की जो चुनरियाँ हैं, उनके जो वस्त्र है, आप बस आइएगा ज़रूर। हम तो कहते रहेंगे लेकिन अगर आप आकर अपनी आंखों से देखेंगे तो आप कहेंगे कि नीतू झूठ नहीं बोल रही है। बिल्कुल, आप कुछ न कुछ

0: कुछ कहा, बहुत सारी चीजें लेकर जाएंगे यहाँ पर। तो हम बात करें अब आज चुंदरी से, और भी बातें होंगी, आप आइएगा जरूर। अभी देवी जी से बात हुई, अभी वो देख रही है, थोड़ी देर में हम शायद उनसे फिर से बात करेंगे कि वो उन्होंने क्या क्या लिया है अपनी माता को सजाने के लिए, माता का आह्वान करने के लिए। सो स्टे वेल ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती, हमारी पूरी टीम है आपके साथ टिल 2 PM एंड हम लाइव है फ्रॉम सिद्धि विनायक शॉप मोदीजिया बाकुआ।
1: RM2 Radio Mastery.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: La fin d'année des costés, tu ne parais?
4: Pas ici l'année, et ta dépense aussi.
3: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client code Rogers Capital, pégaye 500 roupies rabais, l'oseux de premier mensualité.
4: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
3: Application facile! Zis avec ton code identité.
4: Astez à mon faire l'année sans tracas.
3: Attendez, fais ou application premier crédit code Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit. ओपर सु लाइसेंस दे ला FSC।
5: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
6: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
5: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कंफर्ट टू एवरी स्पेस।
6: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
7: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: जो दुर्गा पूजा सिद्धि विनायक शॉप पे अभी तू पुसो ग्रैंड दुर्गा पूजा महोत्सव सेल्स कुमार से वेंड्रेडी 9 अक्टूबर जिसका मार्डी 20 अक्टूबर 2026 विजिट दुबान शॉप पर प्रॉफिट जिसका 40% डिस्काउंट लो एन ग्रैंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ए कैपोटिए सा वेंड्रेडी 9 जिसका डिमांस 11 अक्टूबर सिद्धि विनायक शॉप दो पायोट मोंडेसिया पर सुवेर पर लेट नाइट शॉपिंग जिसका 23h हेलो विजिट जो सिद्धि विनायक शॉप की प्ली प्रेजेंट कैपिप विजावी साईं बाबा मंदिर पायोट मोंडेसिया Bakwa et cœur de ville flac pour cette Navratri shopping. Durga Puja Mahotsav depuis 9 jusqu'à 20 octobre dans tous ces Siddhi Vinayak shop.
2: À vos marques! Prêt? Promo!
3: Du 9 au 25 octobre, rendez-vous chez Winners pour découvrir nos produits mis à l'honneur et nos offres exceptionnelles. Des nouveautés, des produits du quotidien et des offres pensées pour toute la famille. Les 3 litres de lessive liquide machine Doha à 229,95 € et les 5 kilos de riz basmati Mahal 11-21 à 279,95 €. Plus de choix, plus de promos, plus de découvertes. Alors, préparez votre liste et rendez-vous chez Winners.
4: On est tous Winners!
5: RM2
6: Radio Musti

0: RM2 Radio Masti.
1: क्या बात है, भजन हो तो ऐसे जय जय राम सिया राम, तो प्रेम से बोले सिया पति राम चंद्र की जय। अभी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच रहे होंगे नीतू हाँ कहाँ पर हो आप, मैं हूँ एट सिद्धि विनायक शॉप, वो भी पायोज मोदेजिया वाकवा है, बहुत ही आसान तरीके से आप आ सकते हैं, बस में आ रहे हैं तो बस स्टॉप है, अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली है यहाँ पर पुलिस है आपकी मदद करने के लिए, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए, तो यहाँ पर 40% जो है डिस्काउंट लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सभी आइटम्स पर। अभी हम वस्त्र, माता के वस्त्र के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ और भी बहुत सारे वस्त्र हैं, चुनरी हैं, चुनरी तो लाल पीली नीली हरी हर रंग के हर साइज के। अगर यहाँ पर एक मैं देख रही हूँ माता के जो वस्त्र है 95 रुपीज, इतने खूबसूरत है ये वस्त्र, इसमें जो पर्ल्स हैं वाइट पर्ल्स रेड पर्ल्स जो तिकली जैसे हम कहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से जरी जो है लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आप ढूंढ रहे हैं छोटे से छोटे वस्त्र या फिर बड़े आपकी मूर्ति के हिसाब से आपके कलश के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको हर साइज हर रंग में मिल जाता है। तो ये जो छोटा सा वस्त्र है यहाँ पर एक है मेरे हाथ में 95 रुपीज के हैं, और भी खूबसूरत है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा वाला जो है 125 रुपीज, और थोड़ा सा बड़ा वाला एक यहाँ पर मैं देख रही हूँ प्राइस है कहाँ पर 275 रुपीज, और 200 रुपए के आपको चुनरी भी मिल सकती है, और भी खूबसूरत 7500 रुपीज, यानी कि 150 रुपीज, मानी कि आपको छोटे बजट में बहुत सारी चीजें मिल सकती है, एंड इट्स हैपनिंग एट ओनली सिद्धि विनायक शॉप। अभी तो हम हैं एट मोदेजिया वाकवा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आ नहीं सकते हैं आपके करीब है फ्लैक डेविल फ्लैक में हैं आप, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है 40%, एंड एट क्यूपिप आज वर्क, क्यूपिप तो है विजावी साई बाबा मंदिर, एंड यहाँ पर यानी कि एट मोडेजिया वाकवा वाला सिद्धि विनायक जो शॉप है पूजा शॉप है, आज रात के 11 बजे तक अप टिल 11 PM आप यहाँ पर अपनी लेट नाइट शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर प्रोडक्ट्स, मैं देख रही हूँ यहाँ पर तोरण है, जी हाँ तोरण अपने घर को खूबसूरत, अगर आपके यहाँ फ्रेश फ्लावर्स नेचुरल फ्लावर्स ना हो लेकिन ये जो तोरण आप लगाएंगे ये भी है लाल नीली पीली बहुत सारे रंग है, हर जो आपको लेंथ चाहिए ये भी आपको मिल जाएंगे। माता की और भी चुनरियाँ हैं मैं देखिए यहाँ पर, और बिंदी है टिकली है जैसे हम कहते हैं, तो रंग बिरंगे हैं आप ले सकते हैं जो बिंदीज हैं, यहाँ पर जो सिंपल वाले भी हैं, अगर आप जो थोड़े से डेकोरेटिव भी हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो लेडीज़ हैं अपने माथे को खूबसूरत बना सकती हैं इन बिंदीज के साथ। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी किसी से, हेलो जी नमस्कार प्रणाम,
2: नमस्कार।
1: आप यहाँ पर शॉपिंग करने आई, आप क्या ढूंढ रही है?
2: ड्रेस माता के लिए।
1: अच्छा, आप आस पड़ोस में ही रहती है?
2: नहीं, बॉम्बू से।
1: आप बॉम्बू से निकल कर आए हैं, आपको पता चला कि सिद्धि विनायक शॉप में 40% डिस्काउंट लगे, आप हमेशा आती है?
2: नो, फर्स्ट टाइम।
1: फर्स्ट टाइम आपने सुना या फिर आपने बस देखा कि यहाँ पर है?
2: बस देखा,
1: बस आपने तुक्का मारा जैसे कहते हैं, आपने देखा है पूजा शॉप है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर पहली बार आए हैं। टेल मी, आप अभी तो मैंने देखा है कि आपकी जो टोकरी में है आपने चुनरी ली है, माता के जो श्रृंगार है आपने लिए हैं, और क्या क्या ढूंढ रही है, आपको जो प्राइसेस है अच्छे लग रहे हैं?
2: वेरी गुड प्राइसेस।
1: और क्या क्या लेने वाली है, थोड़ा सा अपने अपने सीक्रेट्स बताए?
2: पता नहीं, मैं देख लूंगी क्या है। और
1: यानी कि यहाँ पर आप सैटिस्फाइड हो जब आए हैं, पहली बार आए हैं वो भी बॉम्बू से निकल कर आए हैं टू वाकवा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी शॉपिंग को एंजॉय कीजिए, जय माता दी आपको। एंड और भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, या फिर आप कहीं से भी निकल आ सकते हैं, चाहे आप नॉर्थ में हो साउथ में होंगे, व्हाटएवर यू माइट बी, एक ही शॉप है, आप फ्लैक में भी जा सकते हो, क्यूपिप में भी जा सकते हो, एंड यहाँ का जो मोडेजिया वाकवा है सो पॉपुलर, यहाँ पर आए जाए लोग आते रहते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, रुक कर देख रहे हैं, ओके यहाँ पर जो शॉपिंग है यहाँ पर पूजा के सामान है तो क्यों ना रुक कर भाई यहाँ पर हम लोग अपनी खरीदारी करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हमने बात की है अबाउट तोरण, अबाउट गार्लैंड्स जो है हार जैसे हम कहते हैं, वो भी है डेकोरेटिव आइटम्स हैं अपने घर को, क्योंकि जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगी तो हम दिवाली की तैयारियाँ करने लगेंगी, यहाँ पर और भी पूजा आप कर सकते हैं अपने घर में, माने कि यहाँ पर ओनली

डिस्काउंट प्राइसेस में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं डेफिनेटली, लेकिन आप अपने जो रोज़मर्रा के जो जिंदगी में हैं, अगर पूजा पाठ करने हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको आना है। एक ही एड्रेस अभी है हम एट मोडेजिया वाकवा सिद्धि विनायक शॉप, नाम याद रखिएगा। और यहाँ पर आप आएंगे तो डेफिनेटली चेहरे पर मुस्कान तो होगा ही, आपकी टोकरी भर भर के आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन बप्पा का माता का आशीर्वाद वो तो डेफिनेटली आप सबको मिलेंगे।

0: RM2 Radio Musti.
1: And yes, of course, studio ke bahar Raghuane din bhar to le hi jayenge. Abhi ke liye it's game time and aap jeet sakte ho 1500 rupaye ka voucher offered to you by Center Point. And yes, taiyar ho jaiye Dandiya ka magic celebrate karne ke liye with Center Point. Next Saturday ko yani ki 17th of October ko aap experience kar sakte ho an evening of vibrant colors, festive beats or unforgettable moments at Center Point Triano as from 6 PM. So abhi ke liye mauka hai aapke liye to win 1500 रुपीस का वाचर, जहां हर ताल में जश्न है और हर कदम में रंग है, तो सवाल है माँ दुर्गा के वाहन कौन से पशु को माना जाता है, यानी कि माँ दुर्गा किस पर सवार होती है, आपको बताना है 5499-1294 पर. तो चलिए ट्राई योर लक, अजमाई अपना लक. गुड लक टू यू.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: हेलो रे हेलो यस आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं टू रेडियो मस्ती और हम लाइव हैं फ्रॉम सिद्धिविनायक शॉप मोदीजिया वाकवा जहां पर 40% ऑफ डिस्काउंट ऑलमोस्ट सभी आइटम्स में जैसे कि हमने कहा है यहां पर पूजा सामान है जो चुनरियां हैं माता की कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो तैयारियां तो डेफिनेटली आज से ही शुरू हो रही है तो कई लोग जो हैं आज अभी आ रही है कल से क्योंकि कल से अप टिल 20th जी हाँ 20 अक्टूबर तक आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं और चाहे वो मोदीजिया वाकवा हो या फिर यहाँ पर नहीं आ सकते आप फ्लैग के रीजन में हैं साउथ के रीजन में हो अभी तो एक बहन जो है बॉम्बू से निकल कर यहाँ पर आई है और यहाँ पर इतनी शॉपिंग कर रही है क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट प्राइसेस में भी नॉट ओनली डिस्काउंट जबकि बात हम करते हैं अब बात सिद्धि विनायक शॉप तो क्वालिटी क्वालिटी मेक्स द डिफरेंस और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स छोटे से छोटे बड़े से बड़े आपको क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स मिल ही जाते हैं तो यहाँ पर मेरे सामने इतने रंग बिरंगे बैंगल्स है ओहो हो कंगन चूड़ियाँ जो है और कहते हैं ना बासली बुटे ये भी मैं देख रही हूँ जो कांच के हैं जो प्लास्टिक्स के हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरती से बांधे हुए हैं रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो हैं लेडीज़ यहाँ पर आप पसंद कर रही हैं माता को सजाने के लिए माता के श्रृंगार के लिए भी तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर भी बैंगल्स पर भी आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक प्यारी सी लेडी है वो अपने परिवार से के साथ आई हुई बेटी भाग रही है भाग्य मत कहीं कहीं जा नहीं पाएंगे मैं आपके पीछे हूँ प्रणाम जी कैसी हैं आप
3: जी मैं ठीक हूँ
2: आप कहाँ से हैं
3: पायुट से
2: पायुट यानी कि इधर से आप मैं देख रही हूँ कब से बैंगल्स ढूंढ रही है अपने लिए माता के लिए
3: माता के लिए फिर मैं यूज करूंगी
2: डेफिनेटली माता को जो चढ़ावा है आपको ही मिलेंगे तो आप जो जो कांच वाले बैंगल्स जो बॉटल्स के हैं वो ढूंढ रहे हैं आपकी चॉइस क्या है कि आप यहाँ पर एक प्यारी सी स्वीट लेडी है आपकी मदद के लिए आप कौन सी बैंगल्स ढूंढ रहे हैं
3: मैं एक वैरायटी यूज कर चूज कर रही हूँ ये जो बहन जी है वो हमें हमें हेल्प कर रही है
2: सो डेफिनेटली आप अपनी शॉपिंग जारी कीजिएगा जय माता दी आपको एंड जैसे कि आपने सुना माय डियर लिसनर्स यहाँ पर कई लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं चाहे वो बैंगल्स की तरफ से हो या फिर अगर आप चुनरी ढूंढ रहे हो क्योंकि यहाँ पर इतने सारे वैरायटीज़ है बहुत सारी वैरायटीज़ है बहुत सारे कलर्स हैं आंखें फटी की फटी रह जाती है जब अच्छी अच्छी चीज़ें होती है खूबसूरत सुंदर चीज़ें होती हैं तो चूज़ करने में काफ़ी मुश्किल आ जाती है जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार फिर चुनरी की ओर देख रही हूँ माता के जो वस्त्र हैं यहाँ पर सब के सब बहुत ही खूबसूरत है जैसे कहते हैं तो माता को कैसे सजाएं कौन से वस्त्र पहनाएं कौन से रंग के पहनाएं इसके बारे में आप परेशान हो जाते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए एकदम तैयार है रात के 11 बजे तक हाँ आज मोदीजिया वाकवा सिद्धि विनायक शॉप जो है रात के 11 बजे तक लेट नाइट शॉपिंग आप कर सकते हैं आप कहीं से भी आओगे शॉप्स हर तरफ बंद हो जाएंगे लेकिन सिद्धि विनायक शॉप आज मोदीजिया वाकवा वो ओपन रहेंगी अप टिल 11 PM जहाँ पर आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर की सजावट के लिए हो या फिर अपनी पूजा सामान के लिए हो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहाँ पर हमारे कॉलिग्स हैं डोमिनिक बैठे हुए हैं माता का आशीर्वाद उनको भरपूर मिल रहा है क्योंकि माता का जो माता की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर हो एंड छोटी सी मूर्ति है बड़ी मूर्ति है यहाँ पर सफ़ेद रंग की मूर्तियाँ मैं देख रही हूँ माता जो है अपने सिंह पर बैठी हुई है और खूबसूरत और भी सुंदर जो मूर्तियाँ हैं रंग बिरंगी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर सो अगर प्राइस के बारे में देखा जाए तो जो छोटी मूर्ति अभी मेरे सामने है एक जो कलर वाली है

0: है जहाँ पर माता बैठी हुई है अपने सिंह पर, तो इट्स 2,290 रुपीज। और भी है थोड़ा सा बड़ा वाला जो है, बड़ी वाली मूर्ति 2,590, उससे थोड़ी सी बड़ी मूर्ति 3,190 रुपीज, उससे और थोड़ी सी बड़ी है 3,990। ऐसे आप करते करते आप देखोगे माँ काली की बहुत ही सुंदर मूर्ति है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि माँ के दरबार में आए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यस, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यहाँ पर आए हुए हैं। और हर बार आप सिद्धि विनायक शॉप आएंगे तो यहाँ पर एक जो कोजी ऑम्बियंस है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मंदिर में ही आए हैं, तो माता का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। यहाँ पर एक प्यारी सी लेडी वो भी देख रही है, मूर्ति देख रही है। आप देखो देखो, हम तो बातें करते रहेंगे। और भी है यहाँ पर मूर्ति के बारे में, एंड इसका जो प्राइस है, यहाँ पर एक सफ़ेद जो मूर्ति है, इसके बारे में, मूर्तियों के बारे में हम थोड़ी देर में किसी से बात करेंगे। अबाउट द माछिया जैसे कहते हैं, मैं देख रही हूँ सबसे बड़ी वाली जो है 24,790 रुपीज़ जो है, यहाँ पर जो छोटी है उससे छोटी 13,890 रुपीज़, 13,890। जो सबसे छोटी मूर्ति यहाँ पर मेरे सामने है, इट्स 2,290 रुपीज़, 2,290। और ऐसे वराइटीज़ आपको मिलते रहेंगे और प्राइसेस जो है वो वारी करते रहेंगे, लेकिन जब आप दिल से, जब मन से कुछ करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, तो प्राइस के बारे में सोचते नहीं हैं, बस माता की, जैसे कहते हैं माता का बुलावा आया है। तो यहाँ पर भी आप सिद्धि विनायक शॉप के यहाँ आइएगा, बेट आट मोदेजिया वाकवा, बेट आट क्यूपे विजावी साई बाबा मंदिर, ओ आट कर्जविल फ्लाक, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही, आप अपनी शॉपिंग आराम से कर सकते हैं।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग
1: RM2
2: रेडियो मस्ती

0: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को मेरा नमस्कार। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कल रात आधी रात से, मतलब आधी रात से कुछ पहले कॉलिव्यू में गोली चलने की घटना पेश आई। इस मामले में संबंधित पुलिस सौजैत को गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया है। आज सुबह जारी पुलिस के एक बयान के अनुसार बंदूक को सुरक्षित कब्जे में ले लिया गया है। गोली लगने से 27 वर्षीय एक महिला घायल हुई है, उसे विक्टोरिया अस्पताल की ICU में भर्ती कराया गया है। सुपर मार्केट में काम करने वाली ये महिला एक वान में सवार थी। वो नौकरी से घर वापस लौट रही थी, तभी ये घटना पेश आई। लगातार दूसरी रात इलाके के निवासियों ने पानी न मिलने के विरोध में टायर जलाए। कैबिनेट की बैठक में कल लिए गए इस फैसले पर बात करते हैं। उन लोगों को पानी की दो टंकियां और एक पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिनके पास ये उपकरण नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जनता को डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास पानी की टंकी और पंप नहीं है। ये पहल वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत लागू की जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। आज शनिवार 10 अक्टूबर को मनाए जा रहे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक सेहत का ध्यान रखने के महत्व पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से पोर्ट लुइस स्थित ओडिसेउ में सुबह 10 बजे से द सनफ्लावर चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संवाद, दूसरों की बात ध्यान से सुनने और संवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ पेश आने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जा रहा है। फाउंडेशन की संस्थापक ने बताया कि इस कार्यक्रम में एक मनोवैज्ञानिक भी मौजूद रहेगी। वो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने और कठिन दौर से गुजर रहे किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए व्यावहारिक सुझाव साझा करेगी। और विदेश में इसायास तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में दस्तक दी है। इस तूफान के कारण जानलेवा बाढ़ और तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कल शुक्रवार शाम फ्लोरिडा के पश्चिमी पनहांडल क्षेत्र से टकराने से पहले ये तूफान थोड़ा कमजोर होकर श्रेणी 2 का तूफान बन गया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 175 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। फ्लोरिडा, अलाबामा और जॉर्जिया ने आपातकाल की घोषणा की है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 63 राहुल रिवे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 62 साल की 62 years old श्रीमती मांता रामलगन पैदाशी नाम भुजेधर और जिन्हें लोग आरती नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान नंबर 63 राहुल रिवे स्ट्रीट पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रिले वाले दो प्रेत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे अप टू 30 PM। हाईलैंड्स फिनिक्स में 89 साल के 89 years old जनाब अबू तालिब केदन, जिन्हें लोग तालिब नाम से ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 1:30 बजे इनके मकान हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। एवेन्यू वेरा सामी आयर मोसलमा गाफरे लियोशे तेरूज में 43 साल के 43 years old श्री दिनेश रामनियाल, जिन्हें लोग बंटी और बैन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान एवेन्यू वीरासामी अयर मोसलमॉब गाफरे लियोशिते अरूज से उठाकर सिपाही ब्रिले वाले दो प्रेत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। मोसलमॉब वेर्जे लेबैन नंबर 2 पेटी वेर्जे पोएटो साबल में 85 साल की 85 years old श्रीमती गोइंदामा मधुरे जिन्हें लोग मैडम नायकन नाम से जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे कल सुबह 10 बजे इनके बेटे अंगामुतु नाइकेन मादुरे के मकान मौसलमा वेजे लेबे नंबर 2 पेची वेजे पोएटू साबले से उठाकर सैलुई पेची रिवियर किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल टुमोरो 10 एम और देसाई स्ट्रीट बुबासे में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड श्री प्रवीण लाल देवचंद करमन शाह जिन्हें लोग प्रवीण लाल नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है वे बीजी केयर होम पालमा काचोबोन में रहते थे इनकी अर्थी मंगलवार 13 अक्टूबर को दिन के 1:30 बजे इनके भतीजे गिरीश देसाई के मकान देसाई स्ट्रीट बुबासे से उठाकर शिबेल किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे एट 1:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है
2: on NBC Play and NBC.mu.
3: RM2 Radio Misty.
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And RKG Classic Pure Cow Ghee.

0: बारह बजकर 8 मिनट हुए हैं। फिर से ले चलते हैं आपको शुरू के बाहर कहाँ मोरिजिया वाकुआ नीतुषा से मिलवाने के लिए। गुड आफ्टरनून
1: वंस अगेन आपको नीलमणि। यस, अभी भी मैं हूँ यहाँ पर और 2 बजे तक मैं हूँ यहाँ पर। डोमिनिक है तो हमारी पूरी टीम है एट सिद्धि विनायक शॉप मोरिजिया वाकुआ फॉर द फर्स्ट 40% डिस्काउंट। यहाँ पर कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और बहुत सारे जो भक्तगण हैं आ रहे हैं अपनी शॉपिंग के लिए। और लेट नाइट शॉपिंग अगर दिन में नहीं हो पाएगा, काम पर होंगे, काफ़ी बिजी हैं, अभी भी साफ सफाई हो रही है, रात को कैसे करेंगे भाई? नो टेंशन, काहे को टेंशन लेने का। यहाँ पर सिद्धि विनायक शॉप आपके साथ है, आपके करीब है। व्हाटएवर यू माइट बी, अगर आपको लेट नाइट शॉपिंग करनी ही है तो गाड़ी है तो फटाफट परिवार लेकर आ जाएगा यहाँ पर। एंड परिवार की चल पड़ी है बात तो सिर्फ पूजा के सामान ही नहीं है, हमने कहा कि प्रमोशन लगे हुए हैं, डिस्काउंट प्राइसेस में काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर धूप है, इंसेंस स्टिक्स है यानी कि सौंदार जैसे कहते हैं, और अगरबत्ती है यहाँ पर, हर तरह के फ्लेवर्स हैं यहाँ पर, रोज है, और मैं देख रही हूँ 7-in-1 फ्लोरा इंसेंस स्टिक्स, फ्रेग्रेंस फॉर एवर, दुल्हन वाइट डायमंड। बाप रे बाप, इतने सारे वैरायटीज हैं यहाँ पर। बस जो भी आपको पसंद है आपको एक ही जगह, एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ 75 रुपीज का था, अब 50 रुपीज़ सैकौ रुपी में यहाँ पर जो स्टेशनरीज हैं बच्चों के लिए, उनके पेंसिल, उनके गम, उनके जो इरेजर है, फिटवा है, छोटे से जो रूलर है, एक छोटा सा डायरी भी है, तो बच्चे लोग बहुत ही पसंद हो जाएंगे। और जब कन्या पूजा होती है तो डेफिनेटली बच्चों को, कन्याओं को दी जाती है जो भेंट है, तो यहाँ पर आप ये सब दे सकते हो उनको, उनके पढ़ाई के लिए उनकी मदद भी आप कर सकते हैं, उनको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो 50 रुपीज़ में आपको जो है ये जो स्टेशनरीज हैं मैं देख रही हूँ, क्यों कुले जैसे कहते हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए, तो ये भी है यहाँ पर। और बात हो रही है बात सिद्धि विनायक शॉप, तो सभी ओकेजन्स के लिए पूजा सामान आपको मिल सकते हैं, मूर्ति से लेकर हार, रुद्राक्ष माला, मुखी है यहाँ पर, इमिटेशन ज्वेलरीज भी है, रिलीजियस सीडीज डीवीडीज भी है, अगरबत्ती, धूप, और जो भगवान है, देवी देवताओं के जो वस्त्र है आपको मिल जाएंगे, स्पाइसेस भी है, मैं देख रही हूँ ब्रास के जो थाली है, लोटे हैं, एंड बहुत सारे स्वीट्स हैं यहाँ पर। स्वीट्स के बारे में चलिए थोड़ा सा देखते ही देखते मुँह हम मीठा करते हैं। डोमिनिक कह रहा है क्या है भाई, मैं देख रही हूँ डोमिनिक कहे लड्डू, जलेबी, बर्फी, काजू कतली, मैसूर, मावा सामोसा और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप ले सकती हैं। और माता के जो फ्रेम्स हैं, कई लोग शायद मूर्ति नहीं लगा सकती है, स्थापन नहीं कर सकती हैं या फिर कलश नहीं लगा सकते हैं, तो आप जो माता की जो फ्रेम्स हैं वो भी हैं, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, आपकी जो इष्ट देव हैं, आपकी जो पसंदीदा माता हैं, उनके स्वरूप जो है आप उनको पूजते हैं, तो डेफिनेटली एक ही छत के नीचे आपको मिल सकते हैं। मेरी आँखें घूम फिर कर बैंगल्स की ओर ही देख रही हैं, और यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं

0: रही है, मैं देख रही हूँ चुनरियां देख रही है, और जो वस्त्र है माता के उनके जो श्रृंगार के लिए, तो और भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो चेहरे जो मुखी है माता के आप अपने कलश में लगाते हो, अपनी माता को सजाते हो, भारी भी है और बहुत ही सुंदर भी है माता की सजावट। यहाँ पर कई लोग अपने हाथों से करते हैं माता की सजावट, लेकिन कई लोगों को शायद वक्त नहीं मिलता है उतना सब कुछ करने के लिए, तो रेडीमेड जो है जो मुखियाँ हैं जो चेहरे हैं माता के वो आपको मिल सकते हैं। मैं देख रही हूँ अगर मेरे हाथ में है एक माता जी चेहरा वो 750 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। उससे बड़ा वाला मैं देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर है ये चेहरा, ये है एट 1,890 रुपीज़ मिल विथ 80 रुपीज़। और जो छोटा वाला जो चेहरा है यहाँ पर मैं देख रही हूँ और भी है यहाँ पर, सो 350 रुपीज़, माने कि प्राइस जो है वैरी करते हैं अगर आप जो साइज के हिसाब से। और हार भी है यहाँ पर, सुंदर सुंदर हार है, ओहो आंखें तो इसी खुली खुली रह गई है, बस देखकर ही हमको इतना अच्छा लग रहा है। तो आप सोचिएगा जब आप लेकर जाओगे अपनी माता को सजाएंगे तो कितना आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही डेफिनेटली, लेकिन कितना अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पर माता की जो मंगलसूत्र है मैं देख रही हूँ, रंग बिरंगे हैं यहाँ पर जो काली दानी मोतियाँ हैं, आप ले सकती हैं जो आपकी चॉइस है अपनी माता को, आप कैसे सजाना चाहती हैं अपने आप को, ना सिर्फ माता को बल्कि जो लेडीज़ हैं जो महिलाएं हैं अपने जो बेस्ट अटायर में होती है, अपनी साड़ी पहनेंगी अपनी बैंगल्स पहनेंगी और जो आशीर्वाद आपको सब देंगे जितने प्यार से आपको देंगे, तो इतने प्यार से ही आप सिद्धि विनायक शॉप आ जाएगा। यहाँ पर लोग की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, एंड आई एम श्योर जितने भी दिन ये जो डिस्काउंट्स हैं यहाँ पर आपको आना है रात के 11 बजे तक, यस रात के 11 बजे तक एट मोदीज अवाकवा, नहीं तो आप जा सकते हैं at Queville Flag, oh at Kupip, Kupip माने कि विजावी साई बाबा मंदिर, इनके बारे में सब जानते हैं, तो बस बाजू में ही है, आप जा सकते हैं अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और भी बातें होंगी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कई लोग और भी हैं। हेलो जी नमस्ते, भाग का रही है, आप क्या ढूंढ रही है? कुछ नहीं ढूंढ रहे, बस देखने आ रहे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आए तो सही। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, एक भाई खड़े हैं, चले उनसे बात करते हैं, मैंने देखा उनकी टोकरी में काफी चीजें हैं। भाई जी प्रणाम।
1: प्रणाम।
0: आपने क्या क्या लिया है?
1: चुनरी, साड़ी, हार, बासले, कोंचा, लालों।
0: अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, यू नो जब भी हम बात करते हैं माता की सजावट, माता को सजाने के लिए नवरात्रि जब आती है तो मोस्टली यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लेडीज हैं जो महिलाएं हैं वो आकर अपनी शॉपिंग करती है, लेकिन मैं जब से आई हूँ आपको देख रही हूँ आप ही अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, आपकी प्यारी पत्नी आपके साथ नहीं है, लेकिन आपको पता है आपको माता की चुनरी चाहिए, आपको माता के खोइचा चाहिए, दिए चाहिए, आप पूछ रहे हैं ये चुनरी अच्छी लगेगी मेरी माता की मूर्ति को सजाने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एंजॉय कर रहे हैं, आप पर आपको कितना अच्छा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा।
0: और मैंने ये भी देखा है कि वो वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी से बता रही थी ये वाला ठीक है, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, पत्नी भी बोल रही है हाँ से हाँ मिला रही है, आपकी बेटी वो भी कह रही है कि हाँ जो भी है आप अच्छे से ले रहे हो, और पिताजी जो है जो खरीदारी शॉपिंग कर रहे हैं, तो बस आपकी शॉपिंग अच्छी हो और आपको भी हम कहेंगे जय माता दी, माता का आशीर्वाद आपकी बेटी आप पर आपके पूरे परिवार पर रहे।
2: रेडियो मस्ती, हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस,
3: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विधि अगरबत्ती,
2: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
3: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरम्भ करें दुर्गा माँ की। सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि, मे दुर्गा मां ब्लेस यू ऑल।
4: MRP Info ben contribuable individuel qui pas encore fait de return income tax ou ça l'année là qui deadline c'est le 15 octobre. Pas tarder à le site web MRP.

0: RM2 Radio Masti.
1: RM2 Radio Masti.
2: जी हाँ, पिछले हफ्ते में आपसे सवाल पूछा गया था एंड आप बन सकते हो विनर 1500 रुपए का. एंड सवाल पूछा गया था कि दुर्गा माता किस वाहन पर सवार होती है. एंड सही जवाब है शेर. तो विनर हमारे कौन बन चुके हैं, लेट्स सी. एंड यस, आप है शीला दुग्भंजन जी. कंग्रेचुलेशंस टू यू. आपको मिला है 1500 रुपीज सेंट्रल पॉइंट की तरफ से. एंड आपको बता देते हैं कि 17th of October यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को है मैजिकल डांडिया नाइट. एंड अगर आपको भी शामिल होना है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, यू मोस्ट वेलकम जी. ट्रोना कन्वेंशन सेंटर एज फ्रॉम 6 PM 17th of October को. अभी के लिए बैक टू नितुषा.
3: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग.

0: to Radio Musti.
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
0: RM2 Radio Musti.

0: FM2
1: Radio Masti
2: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप अपने हनुमान चालीसा डेफिनेटली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अपने मन में अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिएगा और प्रणाम अभी अभी आप चुन हुए हैं टू रेडियो मस्ती। देन वी आर लाइव फ्रॉम बोंदिया वाकवा, खास तौर से विशेषकर सिद्धि विनायक शॉप, जहाँ पर 40% डिस्काउंट लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सभी आइटम्स में। जी हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके चेहरे हम बैठे हुए देख रहे हैं, सबको शॉपिंग कर रहे हैं। अभी एक लेडी पूछ रही थी कब तक जो शॉप है वो रहेगी। बस अगर आपको लेट नाइट शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लाइन लगी हुई है पेमेंट के लिए, तो लोग कह रहे मैं बाद में आऊंगी, तो आप बाद में आ सकते हैं, लेकिन रात के 12 बजे तक नहीं है, रात के 11 बजे तक, अप टिल 11 PM। एंड अगर आप फ्लैक या फिर आस पड़ोस उधर के जो रीजन्स में रहते हैं तो आप कदविल भी जा सकते हैं, नहीं तो क्यू पिप। अगर आप इधर नहीं आ सकते हो आट मोदेजिया बाकवा, तो यू कैन गो टू क्यू पिप विसावी साई बाबा मंदिर। वहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर सिद्धि विनायक शॉप है जहाँ पर आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं नवरात्रि के लिए, या फिर कोई भी ओकेजन हो आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। सो 40% डिस्काउंट, यस 40% डिस्काउंट ऑलमोस्ट सभी आइटम्स पर, चाहे वो चुनरी हो, चाहे वो बैंगल्स हो, चाहे वो माता के चेहरे माता के वस्त्र हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं एंड अपनी शॉपिंग जो है कर सकते हैं। और बच्चों के लिए, कन्या पूजा के लिए आप ढूंढते रहते हैं कन्याओं को क्या देंगे, तो वो लोग स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो डेफिनेटली उनके पढ़ाई के लिए आप उनको दे सकते हैं जो स्टेशनरीज, पेंसिल्स, इरेजर्स वगैरह, ये सब उनके काम डेफिनेटली आएंगे। और अभी के लिए बस थोड़ी देर में विल बी हेडिंग टुवर्ड्स शॉटी मॉस फॉर द रेसेस। स्टे वेल ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती।
1: You're listening to RM2 or Radio Masti.

0: FM2
1: Radio Masti.
2: हां जी, दुर्गा पूजा महोत्सव सेल्स ओनली एट सिद्धि विनायक शॉप. चाहे आप मोदीज या वाकवा में हो, चाहे आप कर्दवील फ्लैक में हो, या फिर आप क्यूपिप में हो, विजावी साई बाबा मंदिर 40% डिस्काउंट्स. और कल से यानी कि 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप किसी भी सिद्धि विनायक शॉप तीनों में आप जा सकते हैं. वहां पर डिस्काउंट प्राइसेस में आपको बहुत सारे आइटम्स में डिस्काउंट मिल रहे हैं. चाहे वो माता की चुनरी हो, नवरात्रि आ रही है, या फिर बहुत सारे. और यहां पर हम बात कर रहे हैं और बात चेहरे जो मुखी है माता के, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हैंगर्स हैं, जो डेकोरेटिव हैंगर्स हैं, यहाँ पर जो तोरण है 250 रुपी पे, मैं देख रहा हूँ क्या बात है, इतने सुंदर सुंदर हैं. आप देखो अपने मंदिर को सजाना चाहते हैं या फिर अपने घर को, क्योंकि नवरात्रि के बाद तो दिवाली ही आने वाली है, साफ सफाई होगी, आप अपने घर की सजावट करने में लगे होंगे. तो 395 जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो खूबसूरत हैंगर्स हैं, आप अपने घर को सजा सकते हैं, अपने मंदिर को, अपने आउटसाइड, अपने इनसाइड जो भी है आपके घर को आप सजाना चाहते हैं. हर तरह के प्रोडक्ट्स, हर तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर. ओनली जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गेंदे के फूल. जी हाँ, गेंदे के फूल हैं यहाँ पर, फ्रेश फ्लावर्स आई मीन. हाँ, तो आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं. एंड पूजा हो रही है तो फल की ज़रूरत तो पड़ेगी. यहाँ पर मैं देख रही हूँ सेब है, नारंगी है, ओगौश है, यहाँ पर मौदागिन है, पेय है, पौ है, 10 रुपये में आपको मिलेंगे. एंड यहाँ पर जो दिए हैं मिट्टी के दिए, 3 pieces for 10 rupees, जो छोटे से दिए हैं मिट्टी के, तो आप यस 10 रुपये के लिए. यहाँ पर और भी हैं जो बड़े हैं थोड़े से वाले, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो भी हैं 10 रुपये का. और धूपदान भी है मैं देख रही हूँ. और दिए जो हैं जो पेंट किए हुए हैं रंग बिरंगे, 95 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे. और माता का अखंड जोत भी है यहाँ पर मैं देख रही हूँ, चुका जैसे कहते हैं, मटका है यहाँ पर, माने कि जो लकड़ी है जो हवन के लिए आप यूज़ करते हो. तो डेफिनेटली आपको सब कुछ यहाँ पर एक ही छत के नीचे एट सिद्धि विनायक शॉप. एंड सिद्धि विनायक शॉप स्पेशली एट मोदीजिया वाकवा रात के 11 बजे तक अप टिल 11 PM खुले रहेंगे, ताकि आप अपनी शॉपिंग को मिस मत करना. और अगर कुछ बाकी रह गया है, कुछ खरीदारी में मिस कर दिए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं. एक छोटा सा बेटा है, देख रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ. नो वरीज, आप अपने मामा पापा के साथ शॉपिंग कीजिएगा. एंड यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं मटका, ओहो यहाँ पर मैंने देखे मटके, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं. और घड़ा है यहाँ पर, टिकली है, बिंदी है, जो माता का खोइचा भी है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, 100 रुपये में आपको मिल सकता है. और रेडीमेड जो है एकदम तैयार है, बिंदी है, वंस अगेन यहाँ पर मैं देख है, और भी सारी चीज़ें हैं. हाँ, कन्या पूजा के लिए आपको याद दिला देती हूँ फिर से कि अगर आपको कन्या पूजा के लिए गिफ्ट चाहिए कन्याओं के लिए, हमारी पुत्रियों के लिए, तो यहाँ पर उनके स्टेशनरीज हैं, आप उनको दे सकती हैं. वो लोग स्कूल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में उनका काम ही आएगा. और हवन के लिए हवन कुंड भी है.

यहाँ पर मैं देख रही हूँ और बनी की सब कुछ आप जो भी सोच सकते हैं और थोड़ी देर में क्योंकि काफी लोग हैं अंदर जहाँ पर और भी मूर्तियां हैं और भी सामान है पूजा के हम आपको सब कुछ बताते चलेंगे। स्वीट्स भी है, हाँ मिठाई मत भूलिएगा, यहाँ पर बर्फी है, यहाँ पर गुलाब मैं देख रही हूँ क्या है क्या है क्या है, बर्फी है, जलेबी है और काजू कतली है, रंग बिरंगे मावा सामोसा है, तो आप ले सकते हो जाकर अपने मुंह को मीठा कर सकते हैं, मिठास जो है आप शेयर कर सकते हैं पूरे परिवार और अपनों के साथ। सो वी आर लाइव फ्रॉम सिद्धि विनायक शॉप मोदेजिया बाकवा विद रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Masti.
2: बार बार कहती रहती हूँ, जब भी आप सिद्धि विनायक शॉप आते हो, चाहे वो मोदीज या वाकवा हो, चाहे वो क्यू पिप हो, चाहे वो फ्लैक हो, यहाँ का जो माहौल होता है, वातावरण एकदम शुभ, एकदम भक्तिमय जैसे कहते हैं, और इस भक्तिमय वातावरण में आपका भी स्वागत है. यस, रेडियो मस्ती आपके साथ 2 PM अप टिल 2 PM, 2 बजे तक. और यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है. कोई लोग कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे, कई लोग कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे हैं. सुना है कि यहाँ पर रेडियो शॉपिंग है, 40% डिस्काउंट है. तो चलिए, जो भाई विनायक है उनकी अर्धांगिनी, जो करता धरता है जैसे कह सकते हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं. भाभी जी प्रणाम.
3: प्रणाम.
2: बहुत अच्छा लगा वंस अगेन आप सभी को, आपके पूरी टीम, भाई विनायक को बहुत बहुत धन्यवाद कि रेडियो मस्ती को एक और मौका दिया आपने यहाँ पर आने के लिए. तो अभी हम बात करें अबाउट 40% डिस्काउंट. अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं.
3: तो सबसे पहले आपका स्वागत है सिद्धि विनायक शॉप पे. हम कहना चाहते हैं कि जैसा आप जानते हैं, नवरात्रि के शुरू होने पे, तो आज से 20 अक्टूबर

0: तक 40% डिस्काउंट है हमारे तीनों शॉप पे, बक्वा, क्यूपी पर फ्लैग पे। मूर्ति प्यू मार्बल मूर्ति है, वस्त्र आपके कोंचा और सारे पूजा सामान पे 40% डिस्काउंट है। तो आप आए और हमारे साथ अपना शॉपिंग कीजिए।
1: अच्छा, यहाँ पर तो लोग आ ही रहे हैं, देख रहे सही है, तो जब भी यहाँ पर लोग आते हैं, आप हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। जब भी लोग आए हैं यहाँ पर आपके यहाँ, चाहे वो कोई भी ओकेजन है, अभी तो नवरात्रि शुरू हो रही है, फिर दिवाली आएगी, फिर और भी ऐसे इवेंट्स ओकेजन्स पूजा के लिए तो रोज लोग आते ही रहते हैं,

0: जब आते हैं तो सब यही बोलते हैं कि वो बहुत खुश है यहाँ पे शॉपिंग करके, उनको सारे चीज़ें मिलती है और वो बार बार आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं।
1: और क्या चाहिए भाई, अगर आप अगर क्लाइंट जो है भगवान का रूप होते हैं जैसे कहते हैं, वो आप आते हैं यहाँ पर, आप खुश होते हैं, तो यहाँ पर जितने भी आप हो, भाई विनायक हो, जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो आपको और भी खुशी मिलती है। तो मुझे पता है काफ़ी लोग हैं, उनको आपको देखना है, तो थैंक यू सो मच। एंड एक बार नहीं, बार बार आप आते रहेंगे एट सिद्धि विनायक शॉप, चाहे वो मोदीज या वाकवा हो, चाहे वो क्यूपिप हो, विजावी साई बाबा मंदिर या फिर क्यूजेविल फ्लैक, आप यहाँ पर एक बार आएंगे तो बार बार आने की आपको चाहत होगी। डेफिनेटली 40% ऑफ डिस्काउंट हर तीनों जो शॉप्स है सिद्धि विनायक शॉप, एंड खास तौर कर जो रात के 11 बजे तक, ओनली एट सिद्धि विनायक शॉप मोडेजिया बाकवा, रात के 11 बजे तक आप अपनी लेट शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो आपके पास टाइम है नहीं है तो रात को आइएगा, जरूर रात के 11 बजे तक आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, भाभी जी ने कहा, मूर्तियां जो है आप देखी होंगे, लेकिन जो क्वालिटी हम बात करते हैं, नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटी लेकिन क्वालिटी वाइज, अगर आप कुछ अच्छा ढूंढ रहे, बेस्ट ढूंढ रहे हो, तो एक ही एड्रेस है, सिद्धि विनायक शॉप।
2: RM2 Radio Masti, feel the Masti.

जी पप्पा का नाम लीजिएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा जरूर। जय माता दी सभी भक्तों को। यस वी आर लाइव फ्रॉम सिद्धि विनायक शॉप मोदेजिया वाकवा एंड लेट नाइट शॉपिंग अप टिल 11 PM और तीनों शॉप्स क्यूपी पेंटर डिविल फ्लैग में अप टू 40% डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं, वो भी कल से यानी कि 9 से 20 अक्टूबर तक 2020।

26 हाफ कोर्स डेफिनेटली 9 से 20 अक्टूबर 2026 तक 40% डिस्काउंट आपको ऑलमोस्ट सभी आइटम्स में मिल रहे हैं। अब चीजे टू जैसे कहते हैं तीनों शॉप्स में आप जाएगा एंड रेडियो मस्ती अभी लाइव है फ्रॉम मोडेजिया वाकवा ओनियात सिद्धि विनायक शॉप और 2 बजे के समाचारों के बाद जरूर मिलेंगे, 1 बजे के समाचारों के बाद जरूर मिलेंगे।

0: आफ्टरनून इट्स 1 PM और चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अदिति नमस्कार।
1: नमस्कार
0: निर्मल,
1: श्रोताओं को भी नमस्कार। कोलंबिया में कल रात गोलियां चलने की एक वारदात पेश आई। संबद्ध पुलिस सर्जेंट को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में आज सुबह पुलिस की तरफ से जारी कम्युनिके में कहा गया कि इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त कर लिया गया है। इस वारदात में 27 वर्षीय एक महिला को गोली लगी है, उसे विक्टोरिया अस्पताल की ICU में दाखिल किया गया है। एक हाइपर मार्केट में काम करने वाली ये महिला नौकरी के बाद वैन से घर लौट रही थी, जब ये वारदात पेश आई। पानी की कमी के चलते लगातार दूसरी रात कोलंबिया में अस्थिरता बनी रही। लोगों ने आक्रोश जताने के लिए सड़कों पर पहिए जलाए। प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिसके दौरान ये हादसा पेश आया। रेजिडेंस रिचलियो में आज एक चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया गया। मौके पर उप प्रधानमंत्री आर्यन नावामारी और जूनियर मिनिस्टर कुगान पारापेन मौजूद हुए। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की देखरेख में स्थापित इस क्लब में खेलकूद की गतिविधियां और विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। मकसद है बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना और उनके बेहतर विकास के लिए ज़रूरी समर्थन उपलब्ध कराना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पनामा में 7.7 अंकों की तीव्रता वाला एक जोरदार भूकंप पेश आया है, जिसके चलते कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई बिल्डिंग्स ढह गए हैं।

4.6 मिलियन लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसके चलते आसपास सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 63 राहुल हाईवे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में, नंबर 63 राहुल हाईवे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मानता रामलगन पिता श्री नाम बुजेदर, जो आरती नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान नंबर 63 राहुल हाईवे स्ट्रीट पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूली वाले देवपद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: चले RM2 रेडियो मस्ती।
1: भाई इसमें जलने की क्या बात है, अगर आप सिद्धि विनायक शॉप आते हो, चाहे वो क्यों पिप हो, फ्लैक हो या फिर मोदीज या वाकवा, तो अगर आप पे कर रहे हो कैश, जी हाँ, जब आपने शॉपिंग कर ली है पे तो करना पड़ेगा ना, तो अगर आप कैश पे करते हो तो और भी, एक तो 40% डिस्काउंट ऑलरेडी तीनों शॉप्स में, लेकिन अगर तीनों शॉप में जाते हो आप पे करते हो कैश, देन यू गेट 10% मोर, 10% डिस्काउंट मोर। अरे बाप क्या बात है, तो कह सकते हैं 50% अगर आप पे कर रहे हो कैश। ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सोने पे सुहागा, क्या कहते हैं भाई, यही है। तो चलिए, ओनली एट सिद्धि विनायक शॉप ही ऐसा ही हो सकता है, एंड 40% डिस्काउंट, यस, तीनों शॉप्स में। और अगर आप पे करते हो कैश, अगर आपकी शॉपिंग जो है आप पे कर रहे हो कैश, तो वो 10% आपको मिलता है डिस्काउंट। तो इस फायदे का आप उठाइएगा जरूर, इस जो डील है इसका फायदा उठाइएगा जरूर, एंड आप अपनी शॉपिंग कर सकते। बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, बच्चे लोग देख रहे हैं अपने मम्मा पापा को, माता पिता को देख रहे हैं, हम मम्मा पापा ये हम दिया ले ले। अभी मेरे पास एक छोटा सा बच्चा गुजरते हुए जा रहा है, वो भी ढूंढ रहे हैं। इसको कहते हैं जो भी पर्व हम लोग मनाते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट बर्थडे, दिवाली हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी ओकेजन हो, इवेंट हो, परिवार जब तक साथ में ना हो तो अधूरा सा लगता है। सो डेफिनेटली अगर आप अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी माता को सजाना चाहते हैं, तो बच्चों का भी पूरे परिवार, अभी भाई कह रहे थे उनकी बेटी उनका साथ दे रहे हैं, वीडियो कॉल कर रही है, उन्होंने ये लिया वो लिया, और यहाँ पर हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे अपने छोटे बच्चे जो है अपने मामा पापा के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर सकते हैं, चूज चॉइस अपनी हो सकती है। तो वी आर लाइव फ्रॉम सिद्धि विनायक शॉप, जहाँ पर पूजा सामान हर ओकेजन के लिए, अभी तो स्पेशली दिवाली के लिए यहाँ पर सेल लगे हुए हैं। ये है दुर्गा पूजा, हाँ जी, दिवाली तो अभी दूर है, लेकिन इट्स दुर्गा पूजा महोत्सव सेल्स, एंड लाइव है हम रेडियो मस्ती टिल 2 PM। ये 2 घंटे कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर आते हो मंदिर में, जब आते हो तो सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, सेम फीलिंग है यहाँ पर भी, ऐसा ही हो रहा है। और 40% डिस्काउंट ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, चाहे वो वाकवा हो यानी कि मोडेजिया, चाहे वो क्यूपिप हो विजावी साई बाबा मंदिर, या फिर कर्जविल फ्लैक, वहाँ पर भी आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। यस बेटा, आप कर सकते हो शॉपिंग, एंड कैश पे करते हो तो डेफिनेटली 10% डिस्काउंट आपको और मिलता है, एंड लेट नाइट शॉपिंग ओनली एट मोडेजिया वाकवा वाला जो सिद्धि विनायक शॉप है, रात के 11 बजे तक। और भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, हम अंदर जाना चाहते हैं लेकिन काफ़ी लोग हैं, लेकिन थोड़ी देर में हम आपको ले चलेंगे। सो डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ अगरबत्ती है, धूप है, और कन्या पूजा के लिए जो स्टेशनरीज हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मूर्तियाँ जो हैं मार्बल के, प्योर मार्बल की जो मूर्तियाँ हैं, और एक से एक आप छोटा वाला जो पसंद करते हैं यानी कि छोटी वाली मूर्ति या सब

सबसे बड़ी वाली मूर्ति आपको पसंद है, इट्स योर चॉइस, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं ये मिलता है वो मिलता है, सब कुछ मिलता है, पूजा के सामान बीट स्वीट्स जो लड्डू है अगर आप ढूंढ रहे, बर्फी, जलेबी, मैसूर है, मावा है, तो यहाँ पर आपको वराइटीज ऑफ स्वीट्स मिठाइयाँ भी मिलती है, बिंदी है, चूड़ियाँ है, रंग बिरंगी, और हर कोई मैंने देखा है कि कोई पति अपनी पत्नी के लिए चूड़ियाँ सिलेक्ट कर रही है, दिखने में अच्छा लगता है, जैसे कि कहते हैं फैमिली टाइम। सो ये फैमिली टाइम ओनली एट सिद्धिविनायक शॉप। एंड और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा चेहरे हैं, माता की जो मुख है आप डेकोरेट करेंगे, माता की जो चादरें हैं, चुनरी है, गार्लैंड है, हैंगर्स है यहाँ पर, और भी है तोरण भी है अपने घर के सजावट के लिए, घर के मुख द्वार पर तोरण लगाते हैं बुरी नज़र से बचाने के लिए। तो आप सच्ची भक्ति करते हो तो डेफिनेटली माता आपके आशीर्वाद देंगे, आप पर कृपा बरसाती रहेंगी। तो आइएगा, मेक इट अ मस्ट, आप आइएगा। कल से शुरू हुआ है ये जो 40% डिस्काउंट हर तीनों शॉप्स में, सिद्धि विनायक शॉप, क्यूपिप, फ्लैक एंड मोडिजिया वाक्वा। लेकिन स्पेशली अगर आप पे करते हो कैश 10% और आपको डिस्काउंट दिए जाएंगे आपकी पेमेंट पे, आप देखोगे आपका ही फायदा होगा। इट्स अपनिंग लाइव विद रेडियो मस्ती टिल 2 PM एट सिद्धि विनायक शॉप।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि। मे दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल। RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, भजन हो तो ऐसे जो मन को एकदम सुकून दिला जाए। यस, चलिए अभी थोड़ी देर पहले हम बाहर थे, अभी भी है, लेकिन यहाँ पर वी आर लाइव फ्रॉम सिद्धि विनायक शॉप मोतीजिया वाकवा, जहाँ पर रेडियो मस्ती टीम आपके साथ है। आप भजन सुन रहे हैं, आप डिवोशनल सॉन्ग सुन रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है और सबके चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखकर अच्छा लग रहा है। तो बस हम बात करें अब आर प्रोडक्ट्स, जो आइटम्स है एट सिद्धि विनायक शॉप, 40% डिस्काउंट ऑन ऑलमोस्ट सभी आइटम्स है। कि प्यारा सा बच्चा भी हमको देख रहे हैं यहाँ पर, लोग जो है अपने सामग्री जो है धान जौ जो कुमकुम अबीर, यानी कि आपको जो चाहिए अपनी पूजा के लिए, दुर्गा पूजा है और नवरात्रि है, तो आप अपनी पूजा को अपनी माँ को सजाने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स आप ढूंढ रहे हैं वो सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पर मेरी आंखों के सामने मैं देख रही हूँ घी है, कपूर है, धूप है, टीका है, टिकली है, सिंदूर है, जौ धान जितने भी आपको सामग्रियाँ चाहिए वो सब है। और सौंडाल यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ, इंसेंस जो कोन्स है यहाँ पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और अच्छी सुगंध भी आ रही है। मूर्तियाँ भी हैं, प्लाटो, जी हाँ प्लाटो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर भी है। चाहे वो शादी का सीज़न हो, थोड़ी देरी में थोड़े यानी कि महीनों में आ जाएंगे तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जो प्लाटो है, जो प्लेट्स हैं, ट्रेज हैं, यहाँ पर ये सब आपको मिल जाता है। मेरे सामने हैं छोटे छोटे डमरू जो है और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए हुए हैं। साथ में हैं बहुत सारी मूर्तियाँ, भी बात हो रही थी अबाउट मूर्ति, तो यहाँ पर यस मूर्तियाँ हैं प्योर मार्बल से एंड रंग बिरंगी जो है, शंकर भगवान नजर आ रहे हैं, कृष्ण राधा हनुमान जी, दुर्गा माता है और बहुत सारे हर देवता के बारे में आप सोच सकते हैं। यहाँ पर ब्रास के भी है मैं देख रही हूँ और रुद्राक्ष है, मालाएं हैं यहाँ पर। आपको बैंगल्स चाहिए, आपको पायल चाहिए, छमछन जैसे हम पहनते हैं वो भी है, और आपके लिए जो रक्षा सूत्र है ये सब भी है, माने कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ तिकली है और बिंदिया है, फूल, जी हाँ फूल आपको चाहिए अगर मिल नहीं रहे हैं तो फ्रेश फ्लावर्स आपके लिए हैं आज सिद्धि विनायक शॉप। एंड वंस अगेन रिमाइंड कर देते हैं, अभी जितने भी लोग लाइन में हैं, खड़े हुए हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पे आप कैश करेंगे, पे करेंगे तो डेफिनेटली 10% आपको और मिल रहे हैं डिस्काउंट। ऑलरेडी 40% 40 तो नहीं बल्कि 40% डिस्काउंट है।

आपको मिल रही है तीनों शॉप्स में, बीट एट मोदिजिया बाकवा, बीट एट क्यूपिप विजावी साई बाबा मंदिर और एट कर्जविल फ्लैक, वहां पर भी आप अपनी शॉपिंग करेंगे, पेमेंट करेंगे कैश तो 10% आपको और मिलेंगे। एंड यहाँ पर तो हमारी टीम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलकर लोग खरीदारी कर रहे हैं और कुछ लोग देख रहे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं और इस शॉप के बारे में हमेशा कहते रहते हैं। जब भी आप यहाँ पर आते हो तो एक कोसी ऑम्बियंस जैसे रहता है, जैसे कि हम बार बार कहते रहते हैं आप मंदिर में ही आए हुए हो और यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं भगवान की, और जहाँ पर डोमिनिक बैठा हुआ है माँ का आशीर्वाद तो उनको मिल ही रहा है, वो भी मार्बल्स के भाई। बस आप अपनी भक्ति को श्रद्धा से कीजिएगा क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है और शक्ति आपको मिलेंगी जब आप यहाँ पर आओगे। स्वीट्स भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, आपको अगर भूख लगे तो ले सकते हैं और प्रसाद के रूप में भी आप ले जा सकते हैं चढ़ावा के लिए। तो यहाँ पर बड़े बच्चे सब लोग आ रहे हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान देकर हमको तो बहुत ही खुशी मिल रही है।

0: रेडियो मस्ती.
1: डेफिनेटली माँ का आशीर्वाद तो है ही, माँ शेरावाली की कृपा तो सब पर है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शॉपिंग के बारे में, लाइव फ्रॉम सिद्धि विनायक शॉप मोदिजिया बाकवा में. और जैसे कि हमने कहा, बड़े बच्चे भी है. अभी मेरे साथ एक प्यारा सा बेटा. आपका नाम क्या है बेटा? What's your name? आयांश. तो आयांश ने कहा कि वो पूजा पाठ बहुत ही पसंद करता है. वो हमारे लिए छोटा सा मंत्र, छोटा सा भजन गाएंगे. ठीक है, सो आप शुरू कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट.

क्या क्या बात है, अच्छा लगता है जब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे अपनी पूजा पाठ के साथ, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ जुड़े रहते हैं और इनके माता पिता इतने प्राउड हैं। आई एम श्योर यहाँ पर उनके पिताजी खड़े हुए हैं और कहते हैं मेरे बेटे को पूजा पाठ बहुत ही पसंद है, तो ऐसा ही होना चाहिए अपनी

प्रीति के साथ जुड़े रहने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर जी अपने बेटे को ऐसे संस्कार देने के लिए। तो जितने भी माता पिता हमें सुन रहे हैं, बच्चों को जरूर सिखाए अपने जो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र जो भी हो, लेकिन अपने पूजा पाठ के साथ जुड़े रहना चाहिए। यही तो है हमारी संस्कृति। सिद्धि विनायक शप वाकवा से अभी रेडियो मर्सी टीम लाइव है, लेकिन अगर आप पोर्ट्रीस में तो हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं, नहीं तो आप क्यूपिप में भी जा सकते हैं, विसावी साई बाबा मंदिर एंड कर्जवील फ्लाक में भी आप वहाँ पर जा सकते हैं अपनी शॉपिंग। स्पेशली अगर अभी अभी आप लोग आए हुए हैं, आप लोग जब पेमेंट करने जा रहे हो तो आप कैश करोगे पेमेंट, तो आपको बता देती हूँ ऑलरेडी 40% तो है ही डिस्काउंट एनी शॉप पर। तीनों शॉप्स में भी आप जाएंगे 40% डिस्काउंट, लेकिन अगर आप कैश पे करते हो अभी तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलते हैं। सो अपनी शॉपिंग को एकदम खूबसूरत बनाएगा यहाँ पर, कह सकते हैं वस्त्र हो, मूर्ति हो, तोरण हो, दिए हैं, मिट्टी के फूल हैं, गेंदे के फूल हमने देखे हैं, नेचुरल फ्रेश फ्लावर्स, डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं, साथ में स्टेशनरीज भी हैं। मैं देख रही हूँ कन्या पूजा के लिए अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो यहाँ पर हैं उनके लिए, और इंसेंस स्टिक्स हैं, सौदा जैसे हम कहते हैं, यानी कि धूप, अगरबत्ती और माता के चेहरे हैं, रंग बिरंगे, छोटे से बड़े सब कुछ आपको मिल जाएंगे, एंड श्रृंगार भी है, खोइचा जो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर एक ही शॉप यानी कि सिद्धि विनायक शॉप में आपको सब कुछ मिल जाता है, ना सिर्फ नवरात्रि के लिए बल्कि हर ओकेजन के लिए। जी हाँ, जितने भी पूजा आप पाठ करते हो हर ओकेजन के लिए डेकोरेटिव आइटम्स हैं, स्वीट्स हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ बर्फी है और लड्डू है, जलेबी है, मैसूर है, मावा है, जो भी आपको चाहिए बहुत सारे, आपको बस नाम बताना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंड वो भी डिस्काउंट प्राइसेस में। जी हाँ, हर ऑलमोस्ट एवरी आइटम प्रोडक्ट पर डिस्काउंट लगे हुए हैं, तो बस स्टार्ट देने रहिएगा, और बस थोड़ी देर में विल बी हेडिंग टुवर्ड्स शॉदी मॉस फॉर द रेसेस।

92.2 रेडियो मस्ती। कहते हैं ना कि प्रभु के रंग में जो रंग जाता है उसका जीवन जो है एकदम सफल हो जाता है। जैसे कि अभी वही फीलिंग आ रही है एट सिद्धि विनायक शॉप लाइव फ्रॉम मोदीज यवाकवा, जहाँ पर 40% डिस्काउंट ऑलमोस्ट सभी आइटम्स में, ना सिर्फ एट मोदीज यवाकवा लेकिन अगर आप कर्जविल फ्लैक में भी

या फिर क्यूपी वाले जो सिद्धि विनायक शॉप है वहां पर भी आपको सेम 40% डिस्काउंट मिल रहे हैं। एंड इफ यू पे कैश तो 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाते हैं। क्या बात है, इसको कहते हैं फायदा ही फायदा, तो आपका ही फायदा हो। फायदा सिर्फ प्राइस में नहीं लेकिन क्वालिटी वाइज एज वेल। जी हाँ, हमेशा बार बार बस कहते जाते हैं कि जब भी आप शॉपिंग करते हो आत सिद्धि विनायक शॉप, जो भी, चाहे वो बैंगल्स हो, चाहे वो तोरण हो, चाहे वो हैंगर्स हो, चाहे वो माँ की चुनरी हो, माँ के चादर हो, या फिर जो भी आप प्रोडक्ट है, यहाँ पर लैंप्स हैं, लाइट्स हैं, मैंने साड़ी भी देखी है भाई, जली जली साड़ी, वो भी 500 रुपये के प्राइस में आपको मिलते हैं। रंग बिरंगी साड़ियाँ जो है आप अपने लिए, अपनी माँ को सजा सकती है। उनके श्रृंगार के बारे में बात कर रही हैं, हवन के लिए हवन कुंड भी है, लकड़ी भी है और चंदन की जो लकड़ी है वो भी है, मान कि आपको सब कुछ मिल जाता है। और सामान जो पूजा है, पूजा सामान जो भी, जौ, धान, तिकली, जो भी सिंदूर, अबीर, जितनी भी चीज़ें आपको पंडित जी सामान देते हैं, बस लेकर आप इधर आ जाएगा तो आप अपनी शॉपिंग जो है कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट शॉपिंग, तो लेट नाइट शॉपिंग भी है एट मोदिजिया वाकवा जो सिद्धि विनायक शॉप है, वो भी रात्रि के 11 बजे तक आज। जी हाँ, कल नवरात्रि शुरू हो रही है, सो आज आप आ सकती हैं लेट नाइट शॉपिंग के लिए। अगर आपको मौका ना मिले तो रात को भी आ सकती हैं, काम पर से गुजर रही हैं, काम पर जा रही हैं, थोड़ा सा एक चीजें तू जैसे कहते हैं, आप इधर आ जाएगा। एंड लोग तो आते जाते रहेंगे, शॉपिंग होती रहेगी, खरीदारी होती रहेगी और माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद सबको मिलता रहेगा। सो यस, वी आर लाइव फ्रॉम सिद्धि विनायक शॉप। यहाँ पर थोड़ी देर में हम भी चले जाएंगे, लेकिन आप आ सकते हैं एनी टाइम, हर रोज तो आप आ ही सकते हो, लेकिन स्पेशली जो नवरात्रि शुरू हो रही है कल के लिए, तीनों शॉप्स में आप जाओ, डिस्काउंट एट 40% एंड बस इनका फायदा बिल्कुल आप उठाइएगा जरूर, चाहे आप क्यूपिप में हो, कर्जविल, या फिर एट मोदिजिया वाकवा। एंड वंस अगेन आपको याद दिला देते हैं कि यू गेट 10% डिस्काउंट अगर आप कैश पे करते हो। जी हाँ, तीनों शॉप्स में आप अगर अभी पे करते हो कैश तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 40% तो ऑलरेडी है ही कई मोस्ट आइटम्स पर, तो ये जो डिस्काउंट है 10% आपको और मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नमस्ते जी, तो आइएगा जरूर, स्वागत है आपका। और बस म्यूजिक तो चलता रहेगा और हम भी आगे बढ़ते चलेंगे। दो मिनट

नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ, शंकरा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर रहे, माता रानी की कृपा सब पर रहे। यस, ये 3 घंटे कितने जल्दी बीत गए पता भी नहीं चला। वी आर स्टिल लाइव फ्रॉम सिद्धि विनायक शॉप मोदिजिया वाकवा, जहाँ पर भव्य स्वागत किया गया और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका स्वागत सत्कार तो होता ही रहता है। एंड आप शॉपिंग करने आते हैं, डेफिनेटली पूजा शॉप है हर ओकेजन के लिए। अभी नवरात्रि शुरू होगी, दिवाली की शॉपिंग होगी या फिर किसी भी ओकेजन की आप शॉपिंग कर सकते हैं। अप टू 40% डिस्काउंट आपको मिल रही है तीनों शॉप्स। वंस अगेन आई रिमाइंड कर देती हूँ, तीनों शॉप मतलब कि अभी है मोदिजिया वाकवा, देन क्यूपी विजावी साई बाबा मंदिर एंड कर्डवीर फ्लैग में। और वहाँ पर भी अगर आप पे करते हो कैश देन यू गेट 10% डिस्काउंट, ऑलरेडी आपको मिल रही है 40% देन मोर 10% डिस्काउंट आप पे करते हो कैश। तो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स सभी आइटम्स सब पर डिस्काउंट लगे हुए हैं। मूर्तियाँ भी हैं, पूजा सामान है यहाँ पर हर ओकेजन के लिए। तो आप अपनी शॉपिंग कीजिएगा, खरीदारी कीजिएगा। एंड माता का चादर है, उनकी चादर है यहाँ पर, साड़ी मैं देख रही हूँ, तोरण है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। खुद हम लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। और फल भी है और दिए भी हैं, मिट्टी के दिए भी हैं, छोटे वाले बड़े वाले जो भी आपको पसंद हो। माता का श्रृंगार है यहाँ पर, मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, बैंगल्स हैं यहाँ पर। तो जो भी आपको चाहिए आपको एक ही छत के नीचे यानी कि एट सिद्धि विनायक शॉप आपको सब कुछ मिल जाता है। सो हमारे जाने का टाइम आ गया है। थैंक यू सो मच भाई रोशन, थैंक यू डोमिनिक, थैंक यू नीलमणि एंड थैंक यू भाई विनायक और उनके सभी टीम। भाभी को भी बहुत धन्यवाद, जितने भी स्टाफ हैं यहाँ पर सबकी मदद मिली, अभी भी कर रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट रात के 11 बजे तक आप लेट नाइट शॉपिंग कर सकते हैं एट मोदिजिया वाकवा वाले सिद्धि विनायक शॉप। माता रानी की कृपा रहे, जय माता दी आप सभी को, टेक केयर, बाय बाय।

0: टाइम चेक एग्जैक्टली 2 PM. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. अदिति से आपको नमस्कार.
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार. कोलंबिया में कल रात गोलियां चलने की एक वारदात पेश आई. संबद्ध पुलिस सर्जेंट को हिरासत में लिया गया है और उसे आज अदालत में पेश किया गया. इस मामले में आज सुबह पुलिस की तरफ से जारी कम्युनिके में कहा गया कि इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त कर लिया गया है. इस वारदात में 27 वर्षीय एक महिला को गोली लगी है. उसे विक्टोरिया अस्पताल की ICU में दाखिल किया गया है. एक हाइपरमार्केट में काम करने वाली ये महिला नौकरी के बाद वैन से घर लौट रही थी जब ये वारदात पेश आई. पानी की कमी के चलते लगातार दूसरी रात कोलंबिया में अस्थिरता बनी रही. लोगों ने आक्रोश जताने के लिए सड़कों पर पहिए जलाए. प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया जिसके दौरान ये हादसा पेश आया. काथोबो नगर पालिका ने इस महीने की शुरुआत से शहर भर में कूड़ा उठाने का एक बृहद अभियान शुरू किया है. इसके लिए 1.2 मिलियन रुपए लगाए गए हैं. 10 लोरियां कार्यरत की गई हैं और करीब 60 सफाई कर्मचारियों को इस अभियान में शामिल किया गया है. रेजिडेंस रिशलियो में आज एक चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया गया. मौके पर उप प्रधानमंत्री आर्यन नवमारी और जूनियर मिनिस्टर कुगान पारापेन मौजूद हुए. नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की देखरेख में स्थापित इस क्लब में खेलकूद की गतिविधियां और विभिन्न अन्य कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. मकसद है बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना और उनके बेहतर विकास के लिए ज़रूरी समर्थन उपलब्ध कराना. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, भारत की राजधानी दिल्ली में आज वृहद प्रदर्शनों के लिए जंतर मंतर में इकट्ठा हुए लोगों को रोकने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. 500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. ये प्रदर्शन जेन जी द्वारा हो रहे हैं. वे इलेक्टोरल कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. नंबर 164 एवेन्यू बेतो काथोबोन में, नंबर 164 एवेन्यू बेतो काथोबोन में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शांता बालगोबिन. श्रीमती शांता बालगोबिन पिताश्री नाम

0: बाबूराम जो भानु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे के मकान नंबर 164 एवेन्यू वैद्यों का थोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगौद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Plug and play. RM2. Plug and play.

And well friends, who's that girl? मैं तो हूँ परी, आपके साथ निभाने आई हूँ, लेकर आई हूँ प्लग एंड प्ले ऑन दिस सैटरडे आफ्टरनून. साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स अ वार्म वेलकम. उम्मीद करते हैं वीकेंड एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त. जो भी है आपके प्लान्स, हमारा प्लान तो फिक्स है कि ये खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाने हैं. सो विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड, और वीकेंड में आपके मूड को सेट रखने के लिए बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक लेकर आए हैं प्लग एंड प्ले प्रोग्राम, जहां पर प्लग एंड प्ले करते रहेंगे आपके फेवरेट ट्रैक्स, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर थोड़ी देर में लेकर चलेंगे शौंदे मास फॉर योर रीसेस.

0: सो वेल वी विल बी टेकिंग यू बैक टू द रेसेस थोड़ी ही देर में. तब तक के लिए लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि. मे दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल. L'occasion Durga Puja, Siddhi Vinayak Shop. Payabitu Pusso Grand Durga Puja Mahotsav Sales. Commencez vendredi 9 octobre jusqu'à mardi 20 octobre 2026. Visite Nuban Shop pour profiter jusqu'à 40% discount. Loin grand voyer des produits. Et qu'apportez ça vendredi 9 jusqu'à dimanche 11 octobre là. Siddhi Vinayak Shop dans Payot Mondésia. Pour recevoir pour late night shopping jusqu'à 23h. Allô, visite Zot Siddhi Vinayak Shop qui plie près aux Zot. Kapip, vis-à-vis Sai Baba Mandir. Payot Mondésia. Et cœur de ville flac pour cette Navratri shopping. Durga Puja Mahotsav, depuis 9 jusqu'à 20 octobre dans tous ces Siddhi Vinayak Shop.
3: RM2
2: Radio

0: Plug and play.
1: RM2.
2: अधूरे हम अधूरे तुम बिन तुम्हारे एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म ब्रेक के बाद इस वक्त आप हमारा साथ दे रही हैं दोस्तों और जैसे हम कहते हैं कि हमारे लिसनर्स के बिना तो हम भी थोड़े से अधूरे ही हैं और आपका साथ आपका प्यार हमारे लिए ऑलवेज खास एंड स्पेशल मंडे हो या संडे हो हर एक दिन आप ही तो है जो हमारे हर शो में चार चांद लगाते हैं सो टू ऑल द लिसनर्स बड़े बड़े दिल से हम आपको कहेंगे थैंक यू सो मच क्योंकि आपने इतना जो हमारा साथ निभाया है इस प्यार को ऐसे ही बरकरार रखिएगा और आपकी स्वीट मैसेजेस दिल के हाल को हम तक पहुंचाते रहिएगा नंबर तो आप जानते हैं इट्स 5499-1294 सो वेल फ्रेंड्स आज का सैटरडे व्हाट्स द प्लान व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड आप हमसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं ऑन 5499-1294 अभी के लिए कविता जी कहती है हम तो निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पर क्या बात है लॉन्ग ड्राइव ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून वेरी नाइस सो इस वक्त डेडिकेट कर रही है गाना अपने पति के लिए इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं मिस्टर कैलाश ड्राइव करते हुए आप गानों को सुन रहे हैं बाजू में आपकी ब्यूटीफुल वाइफ बैठी हुई है गाना डेडिकेट कर रही है आपके नाम एंड आई एम श्योर दैट ये जो राइड है अभी के लिए बन रही है सुपर सुपर फन आप दोनों के लिए सो हैव अ वंडरफुल टाइम एंड क्रिएट सम ब्यूटीफुल मेमोरीज आज के सैटरडे को एकदम स्पेशल बनाएंगे और आपका जो साथ है बस हमारे लिए खास एंड स्पेशल तो ऐसे ही आपके मैसेजेस डेडिकेशन हम तक पहुंचाते रहिए चलिए यहाँ पर कविता जी के बाद आई है प्रिया जी कहती है व्हाट लवली सॉन्ग्स एंड एंजॉयिंग द ट्रैक्स कहती है मॉर्निंग सुबह 5 बजे से हम तो कनेक्ट हो जाते हैं रेडियो मस्ती के साथ उससे पहले भी कनेक्ट करेंगे तो गाने आपको सुनने को मिल ही जाएंगे लेकिन यस हमारे जो आरजेस है वो तो 5 बजे से आते हैं आपका साथ निभाने के लिए सो थैंक यू सो मच प्रिया जी आप हमारा साथ दे रही हैं जानकर अच्छा लगा और अगला जो गाना है इसे हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम इस वक्त आप किचन में है शाम के लिए कुछ यम्मी सा प्रिपेयर कर रही है सो उसमें थोड़ा सा हम म्यूजिकल तड़का लगाएंगे हमारे अगले गीत के साथ एंड मिस्टर गोविंद रघुनंदन ऑफ वाक्वा हमारा साथ दे रहे हैं आप भी सो मिस्टर गोविंद व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे आज तो आपका प्लान है फैमिली के साथ चिल करना वाइफ अभी के लिए कुछ टी टाइम के लिए स्पेशल तैयार कर रही होंगी यानी कि हमारी प्यारी सी वेदा जी आपके लिए कुछ स्पेशल तैयार कर रही होंगी फॉर योर टी टाइम एंड चाय की चुस्कियों के साथ अपने टी टाइम को एंजॉय करते हुए यहाँ पर वील प्ले सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स जिसे आप एंजॉय कर पाए तो ऐसे ही साथ निभाते रहिए और आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस हम तक पहुंचाते रहिए नंबर आप जानते हैं इट्स 5499-1294 इसी नंबर पर मैं परी करूंगी आपका इंतजार साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM

एंड वेल दोस्तों अगर म्यूजिक की बात करें तो हर दौर में डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक हमें सुनने को मिला एंड एक दौर जिसे हम हमेशा याद करते हैं वो है द एवरग्रीन 90s. अभी के लिए विनोद राठौड़ सपना मुखर्जी की आवाजें रक्षक फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए जिस पक साथ दे रहे हैं टू गेट यू इन द सैटरडे मूड टू गेट यू इन योर वीकेंड मूड एंजॉय दिस वन

0: रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
2: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: एक और ब्यूटीफुल ट्रैक दोस्तों, और इसी ट्रैक के साथ हम लेकर चलेंगे आपको शॉन देमास फॉर योर रेसेस। सुसा देते रहिए, ये है RM2 रेडियो मस्ती। इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले। परी का साथ है टिल 4 PM।

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो.
1: एंड आफ्टर रेसेस बैक टू म्यूजिक तेरी ओर, बिल्कुल आप ही की ओर इन गानों को हम पहुंचा रहे हैं. सिंग इज किंग फिल्म का ये गाना लेकर जा रहा है समाचारों की ओर. प्लग एंड प्ले कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ आरएन टू रेडियो मस्ती. आफ्टर समाचार पेरी का साथ है दिन के 4 बजे तक.

0: टाइम चेक एग्जैक्टली 3 पीएम देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार फोमिलिता प्रोग्रेसिस के अधिकारियों ने आज प्रेस को संबोधित किया दल के नेता पॉल बेरांजे ने देश में पानी की स्थिति को चिंताजनक बताया उन्होंने जल्द से जल्द नियमित जलापूर्ति के लिए समाधान लागू किए जाने और माहवाकुआ जलाशय के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की मांग की साथ ही शागस मामले और नेशनल क्राइम एजेंसी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई प्लाजा रोजिल में आज ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग का एक अभियान चलाया गया हेल्थ केयर लीडर्स नेटवर्क अफ्रीका की ये पहल निःशुल्क रही मकसद रहा महिलाओं में बचाव के तौर पर अर्ली स्क्रीनिंग की आदत उजागर करना क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार कुछ कैंसर के मामलों का जल्दी पता चलने से इलाज के बेहतर नतीजे हो सकते हैं काथवाबोन नगर पालिका ने इस महीने की शुरुआत से शहर भर में कूड़ा उठाने का एक वृहद अभियान शुरू किया है इसके लिए 1.2 मिलियन रुपए लगाए गए हैं 10 लोरियां कार्यरत की गई हैं और करीब 60 सफाई कर्मचारियों को इस अभियान में शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत की राजधानी दिल्ली में आज वृहद प्रदर्शनों के लिए जंतर मंतर में इकट्ठा हुए लोगों को रोकने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है ये प्रदर्शन जेंजीज द्वारा हो रहे हैं वे इलेक्टोरल कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ आगे आ दीजिए नमस्कार
2: Your news on MBC Play and MBC.mu.
3: Plug and play.
4: RM2.
3: Plug and play.

सो वेल फ्रेंड्स स्वागत करते हैं आपका इन दिस आवर 3:08 प्लग एंड प्ले ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स सैटरडे आफ्टरनून है और बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए लेकर आए हैं थोड़ी ही देर में लेकर चलेंगे शॉन देमास फॉर योर रेसेस एज वेल सो बहुत कुछ हो रहा है आपके लिए आपके सैटरडे को खास और स्पेशल बना रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती परी का साथ है दिन के 4 बजे तक

एग्जैक्टली दोस्तों, आपके दिल की फ्रीक्वेंसी तो हमने एकदम अच्छे से पकड़ ली है. हम तो जानते ही हैं कि आपके दिल को लुभाने वाले गीत यहाँ पर आपको मिलते हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सो अभी के लिए इट्स 3:23. थोड़ी देर में लेकर चलेंगे शॉन द मास फॉर योर रेसेस. अभी के लिए ये गाना डेडिकेट करेंगे फॉर सूरज लचाना. काहोलीन से है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं 60 years. एंड बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम वाइफ तनुजा. बेटा है एशले. आशीष है, साथ में है सिस्टर माध्या, अमृता, जीना.

विश्वामी और विद्या सभी आपके भाई सभी आपके सिस्टर्स आपको विश कर रहे हैं अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सो ऑन योर स्पेशल डे बस हम भी आपको विश करते हैं जन्मदिन मुबारक साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन RM2 रेडियो मस्ती

0: Plug and play.
1: RM2.
2: So well, that's your plug and play. और जैसे हमने कहा कि हर दौर की जो different songs हैं, कोशिश यही रहती है कि morning से night ये different different गाने हम आप तक पहुंचाते रहें. कुछ लोग जिन्हें पुराने गाने पसंद होते हैं, कुछ listeners जिन्हें नए गाने अच्छे लगते हैं. Of course, हम बात कर रहे हैं हमारे Gen Z's और Gen X की जो अच्छे अच्छे गाने सुनना चाहते हैं और हमारे millennials जिनका taste थोड़ा सा अलग होता है. So बिल्कुल आप सब के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास है. And यहाँ पर it's time for your plug and play. आपके messages dedications भी आ गए हैं on 5499-1294. So, यहाँ पर साथ दे रही हैं ललिता जीतन और आप तो पहुंच चुकी है एटसी साइड एंजॉयिंग द आफ्टरनून और अगला गाना डेडिकेट कर रही हैं फॉर श्याम एंड कुमार देवीचंद पेबे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सो फॉर फुल फैमिली वी हैव दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्रैक अगला गाना होगा फॉर अक्षत एंड दक्ष जो अपनी नवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम उनके पापा जो उनके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेज साथ ही रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं सीता गीता भोलूराम और शातो बनारस से हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच साथ दे रहे हैं आप ही सो बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती

ऐसे ही ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए चलते रहेंगे बिकॉज दैट्स योर एम2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए हमारे सभी गप्पी परिवार हमारा साथ दे रहे हैं सेशेल्स से विद्या एलेना एंड डेविड. सो विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम. थैंक यू सो मच. कनेक्टेड हैं आप रेडियो मस्ती के साथ. द नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर योर वंडरफुल फैमिली. तैयब जी हमारा साथ दे रहे हैं आप प्यार भरा सलाम आपके नाम भी. परी साइनिंग ऑफ और आ रही है हंसनी लेकर कुछ और प्यारे गाने आपके लिए. सो उनका साथ निभाइए एंड एंजॉय योर सैटरडे. टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.

0: Wish you all a very good afternoon. Check your time. और शाम के ठीक 4 बजे हैं. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना के साथ. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शुक्रवार 9 अक्टूबर की शाम कौलोव्यू में हुई गंभीर घटना पर लगातार नजर रख रहे हैं. इस घटना में 27 साल की एलुजी टोमास को गोली लगी थी और वो घायल हो गई थी. प्रधानमंत्री संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में है ताकि हालात में हो रहे बदलाव की जानकारी मिलती रहे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएं और ये काम पूरी पारदर्शिता और मौजूदा नियमों और कार्यविधि के पालन करते हुए किया जाए. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रोड्रिग्स का अपना दौरा स्थगित करने का भी फैसला किया है. ये दौरा कल रविवार 11 अक्टूबर 2026 को होने वाला था. देश में पानी की कमी पर कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई. अब प्लान विलियंस में हालात सुधारने के लिए 9 बोहोल से महीने के अंत तक 30,000 क्यूबिक मीटर तक अतिरिक्त पानी नेटवर्क में दिया जाएगा. पिछड़े और पापा नदियों का पानी लामार स्टेशन की तरफ मोड़ा जाएगा जबकि मगलोंग जलाशय से भी हर दिन 30,000 क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी मिलेगा. पानी बांटने के लिए निजी टैंकरों की मदद ली जाएगी. साथ ही घरों में टंकी नहीं रखने वाले परिवारों को भी वाटर टैंक और वाटर पंप ग्रांट स्कीम का लाभ दिया जाएगा. फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के अधिकारियों ने आज प्रेस को संबोधित किया. दल के नेता पॉल ब्लांश ने देश में पानी की स्थिति को चिंताजनक बताया. उन्होंने जल्द से जल्द नियमित जल आपूर्ति के लिए समाधान लागू किए जाने और महोबाक्वा जलाशय के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की मांग की. साथ ही शागुस मामले और नेशनल क्राइम एजेंसी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. प्लाजा रोजल में आज ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग का एक अभियान चलाया गया. हेल्थ केयर लीडर्स नेटवर्क अफ्रीका की ये पहल निशुल्क रही. मकसद रहा महिलाओं में बचाव के तौर पर अर्ली स्क्रीनिंग की आदत उजागर करना. और विदेश में इसराइल की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख यायर गोलन ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर सवाल उठाते हुए उसे इसराइल के लिए एक गलती करार दिया है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गोलन ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका इसराइल युद्ध की शुरुआत में खामेनेई को निशाना बनाने से इसराइल के राष्ट्रीय हितों को कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचा है. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार. Your news on NBC+.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: वेलकम ऑन रेडियो मस्ती बिग हेलो टू एवरीवन विशिंग यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून मेरे प्यारे लिसनर्स यहाँ पर इट्स अ लवली टाइम जो बस आप बिता रहे हो सिंस मॉर्निंग सुबह से ये बस ये कारवां शुरू हो गया म्यूजिकल जर्नी जो आप लोगों के लिए हम बस तय कर लेते हैं हमारे ऑडियंस जो यहाँ पर थे सिंस मॉर्निंग और अब बारी है हंसने की और यहाँ पर हम तो साथ रहने वाले हैं अप टिल 7 PM सो वेलकम टू द शो जहाँ पर गाने हैं ज़बरदस्त बातें हैं बहुत इंटरेस्टिंग और जो आफ्टरनून है थोड़ा सा और दिलचस्प बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश हम कर लेंगे एंड विल ब्रिंग ओनली द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स ताकि जो एंटरटेनमेंट है वो पूरी तरह से हो जाए आज के लिए वेलकमिंग यू इन द शो एंड रियली होप कि सब ठीक है ऑन योर साइड और जो हमारे फ्रेंड्स बस काम करते हुए साथ निभाते हुए बस रेडियो मस्ती को ऑन कर रही हैं तो ऑफ कोर्स हम सभी का वार्म वेलकम कर लेते हैं यहाँ पर काम जारी है एज ऑलवेज वर्क इज वर्शिप तो काम करते रहेंगे और साथ में म्यूजिकल सफर के साथ भी हम जुड़ जाएंगे और बस ये जो इंटरेक्शन है और भी खास होने वाला है जब आप अपने मोबाइल फोन्स उठाएंगे टू सेंड अ मैसेज टू रेडियो मस्ती व्हाई नॉट अगर आज का दिन बहुत ही खास है या फिर ऐसे ही दिल को हल्का बनाना है दिल की जो फीलिंग्स है शेयर करने से आप हैप्पी हो जाएंगे सो व्हाई नॉट इसमें हम शामिल हो जाएंगे टू वेलकम योर डेडिकेशंस योर मैसेजेस ऑन 5499-1294 सो जहां पर भी साथ जारी है इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन और वैसे कल हम माँ दुर्गा माँ जगदम्बा का हार्दिक स्वागत करने वाले हैं और उनका आगमन के लिए बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई है घर की साफ सफाई तो बस हो रही है सुबह से आई मस्ट से कितना सारा काम हो रहा है ये तो है और जितने भी हमारे दोस्त अभी भी काम कर रहे हैं एट होम साफ सफाई जारी है हमें तो पता है कि यू नीड सम मोर एनर्जी राइट सो इसके लिए हम लेकर आए हैं कुछ स्पेशल गाने इसी पावन पर्व को और भी पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाने के लिए वी आर हियर ऑल सेट अप टिल 7 PM
0: Music, Tak Tak Tak.
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: It's a lovely afternoon और हम सब तो connected है with the one and only Radio Masti so just be our music हम सफर up till the end वैसे किसी special का message आ जाए ना तो यहाँ पर जो boring time है वो कुछ ज़्यादा खास बन जाती है ना ऐसा लगता है कि जो romantic messages आते हैं it's like the Valentine's feel किसी ने कहा है यहाँ पर thank you Reshma for sharing वैसे आप भी किसी के reply का wait कर रहे हो फोन जो है बार बार check करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर के बाद रिप्लाई आएगा जी जो नोटिफिकेशन सेगमेंट है वो भी छा जाएगा कुछ ही पल में सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस तो कुछ लोग अभी अपनी आफ्टरनून टी टाइम को एंजॉय कर रही हैं दैट्स वेरी नाइस यहाँ पर कुछ पल हमारे लिए तो बनता है इट्स आवर टाइम मे बी कुछ ऐसा है कि ये दिन भर के लिए आपने काम किया है और अभी थोड़ी सी फुर्सत आपको मिली है जस्ट टू स्टे काम एंड टू एंजॉय स्पेशल मोमेंट जो आप के लिए खुद आपने तय किया है वेरी नाइस एंजॉय योर टाइम एंड एंजॉय विद रेडियो मस्ती कुछ

0: That's a very nice. यहाँ पर कुछ पल हमारे लिए तो बनता है. It's our time. Maybe कुछ ऐसा है कि ये दिन भर के लिए आपने काम किया है और अभी थोड़ी सी फुर्सत आपको मिली है just to stay calm and to enjoy a special moment जो आप के लिए खुद आपने तय किया है. Very nice. Enjoy your time and enjoy with the Radio Masti. कुछ भी मैसेजेस पहुंचा सकते हो यहाँ पर बहुत ही इजी है. टेक योर मोबाइल फोन, अगर आप फ्री हो तो सेंड अ मैसेज ऑन 5499 1294.
1: म्यूजिक टक टक आता है.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

जी हाँ, यहाँ पे द बेस्ट ऑफ म्यूजिक राइट ऑन रेडियो मस्ती एंड वी आर हियर टू सेट द मूड फॉर दिस लवली आफ्टरनून. रियली होप कि सब ठीक है, एंजॉयिंग द टाइम, एंजॉयिंग द स्पेशल म्यूजिकल जर्नी हमारे साथ. अभी इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे पोल रेस, जहाँ पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस.

0: FM2.
1: Radio Musty.
2: Histoire gagnante du loto. 25 avril 2026, ticket gagnant 28,3 millions, quartier militaire.
3: Au moyen, il y a 4 enfants. Il a vérifié, il a mon numéro. Tombé. C'est pas facile. Bien content. Pas grave de oui.
2: Des histoires gagnantes, des histoires vraies. Ferez-vous partie de la prochaine histoire gagnante du loto? Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
4: Hey, comme salope au table 2.
5: Tivali, Moyaz, Noël, l'année tout picosté. Mon pégété, côte nous capable faire un peu shopping.
4: Ben écoute sa nouvelle là. Et à Mauritius, pédé une valise en plus quand tu perds le Mumbai ou Chennai. 3 valises te pour gagner. 3 fois 23 kilos.
5: Pas dire moi. Ah bien, nous allez nous ici d'où. Nous faire un shopping et qu'une petite vacances nous venir. Pour tout vol à destination de Mumbai ou Chennai, vous avez droit à 3 valises de 23 kilos chacune. Offre limitée. Pour plus de détails et conditions, appelez-nous au 207 75 75. Visitez notre site web Air Mauritius ou contactez votre agence de voyage.
6: Un total de 95 millions de roupies en jeu ce soir. Environ 35 millions de roupies au Loto Plus et approximativement 60 millions de roupies au Loto. 35 millions au Loto Plus et 60 millions au Loto. La chance pourrait vous sourire cette semaine, mais nous serons tous perdants quand nous n'aurons plus d'eau. Les réservoirs sont dans une situation critique. Agissez maintenant.
7: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2
1: Radio Musty
0: Music Dr. Gata
1: RM2 Radio Musty.
8: Already in the second hour of the musical show, it's our Bollywood Tuk Tuk Tuk with a great entertaining gaane jo hum lekar aa rahe hain, of course, to welcome everyone. वैसे यहाँ पर हाचा कैसा है जी? Really hope कि सब ठीक है, सुबह से सब कुछ अच्छा ही जा रहा है. अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अभी चांस है ये जो मूड है आपका उनको ठीक करने के लिए. And to make it a bit like हसमुख, as we say, यहाँ पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बस हम आगे बढ़ेंगे. And to make it a bit more fun, it's the musical show. यहाँ पर हंसनी है आपके साथ, welcoming everyone. जहाँ पर भी आप सुन रहे हो Radio Musty, it's like a beautiful time आपके साथ. जब भी हम यहाँ पर आते हैं, it's always precious. तो हम बस आप लोगों का इंतजार करेंगे, जहाँ पर आप कुछ भेजेंगे, कुछ जो आपकी दिल की बातें हैं शेयर करने वाले हो हमारे संग on the 549-1294. We are here to celebrate this Saturday time. 10 अक्टूबर है आज, मिलकर धूमधाम से हम जन्मदिन को मनाने वाले हैं. उन लोगों के लिए बस हम लेकर आए हैं शुभकामनाएं, लेकर आए हैं ढेर सारी गुड विशेस जो आज अपना स्पेशल डेट मना रहे हैं.

0: उनको और भी खास बनाएंगे. अगर आपके मैसेज आएंगे तो पता लगाएंगे हम कहाँ पर है हमारे बर्डी बॉयज एंड बर्डी गर्ल्स. यहाँ पर मैसेजेस पहुँचाने का नंबर आपको तो पता है. चलिए आपको रिमाइंड कर लेती हूँ 1059-1294 पर यू कैन सेंड द मैसेजेस. इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक अनलिमिटेड फन एंड ग्रेट सॉन्ग्स जो हम चलाते रहेंगे अब टिल 7 PM. इट्स बॉलीवुड टकटकाटा कॉन रेडियो मस्ती.
1: म्यूजिक टकटकाटा
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: 5:25 PM. Thank you so much for connecting with Radio Masti. Hello to all the drivers. हमारे दोस्त जो अभी ड्राइव करते समय बस आपने ऑन कर लिया है Radio Masti को, इट्स अ वार्म वेलकम टू एवरीवन. वैसे स्पीड लिमिट में आप रहिए एंड ड्राइव सेफ, रीच सेफली. वैसे दोस्तों लाइफ में स्पीड कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए. और हाँ, यहाँ पे आफ्टरनून वाला ये सफर जारी है जहाँ पर स्ट्रेस का कोई नाम ही नहीं हम लेने वाले हैं. थोड़ी सी और मस्ती हम कर लेंगे. यहाँ पर म्यूजिकल सफर है आप लोगों के लिए. बस इसका नाम जिंदगी है. कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग और गुड वाइब्स तो जो है ना हम पहुँचाते रहेंगे. इट्स आवर आफ्टरनून टाइम और यहाँ पर सफर बस जारी है, तो आप कहीं मत जाइए. स्टे वेल कनेक्टेड. आपकी कंपनी, आपकी फेवरेट गाने और हमारी बातें, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है. टू सेट द मूड एंड टू मेक इट अ वंडरफुल टाइम. काम जो हमारे फ्रेंड्स कर रही हैं, सो काम करते रहिए, स्माइल करते रहिए. और याद रखिए, लाइफ को सीरियसली लेना है जरूरी है ना, लेकिन हर वक्त नहीं, कभी अनलिमिटेड फन भी जरूरी है. राइट, यू आर जस्ट कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती. और जितने भी हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, साफ सफाई जारी है. ओ माय गॉड, सुबह से इतना सारा काम हो रहा है. अभी यू नीड अ ब्रेक, या फिर आप कहेंगे अभी तो शुरुआत हुई है. ओके, लॉन्ग वे टू गो. सो कुराज आप सभी को एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर टू कीप द वाइब ऑन. हेलो टू ऑल माय लवली लिसनर्स. हेलो टू एडोरेबल मॉम सुशीला जी, कैसी हो? और आप अभी तो कहने वाली हो अभी तो काम शुरू हुआ है. सो बो कुराज आपको एंड लगे रहो जी. यहाँ पर टू गिव यू सम कुराज, हमने सोचा है अगला गाना हम स्पेशली आपके लिए डेडिकेट करने वाली है. एंजॉय.
1: Music Takta Kata.
2: RM2 Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Yes, connecting you with the best of super songs in आज का बॉलीवुड टक टक टक विद आरजे हंसनी. स्टे वेल कनेक्टेड. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का 10th of October. और वैसे बॉलीवुड की दुनिया में बात करें तो वी हैव गॉट समवन वेरी स्पेशल जो आज अपना जन्मदिन मना रही है. शे इज द एवरग्रीन रेखा जी. हैप्पी बर्थडे टू हर फ्रॉम ऑल हर फैंस जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है विद द रेडियो. वैसे बोर्न ऑन 10th of October 1954 और आज the great star मना रही है अपनी सालगिरह. And one of the super fine actress in Bollywood. और कई उनके सुपर हिट मूवीज भी आए हैं, कई नेशनल अवार्ड्स, कई फिल्मफेयर अवार्ड्स, अच्छा एक नेशनल फिल्म अवार्ड और कई फिल्मफेयर अवार्ड्स. Correct. यहाँ पर रेखा जी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम ऑल योर फैंस. और वैसे कल और एक जन्मदिन हम मनाने वाले हैं धूमधाम से. एंड दैट विल बी द बर्थडे ऑफ द ग्रेट बिग बी साहब अमिताभ बच्चन जो कल अपना बर्थडे मनाने वाले हैं. तो खास शुभकामनाएं आ गई है फ्रॉम ऑल हिज फैंस. उनके सब शुभचिंतक की तरफ से बधाइयों है. उनकी आवाज जो करोड़ों दिलों पर राज किया है और अपने अभिनय से हर किरदार को अमर बनाया है और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी. जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द बॉलीवुड के शहंशाह हर दिल को अजीज बनाने वाले अमिताभ बच्चन जी जो कल अपना बिग डे मनाने वाले हैं. उनका कल जन्मदिन होने वाला है. सो मिलकर धूमधाम से इन एडवांस हम उनको विश करेंगे. हाँ, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ रेडियो मस्ती एज़ वेल. सेलिब्रेशन बस जारी हो गया है. तो जितने भी हमारे लिसनर्स से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्पेशल दिन है आज. तो चलिए, हैप्पी बर्थडे आप सभी को फ्रॉम हंसनी एंड ऑल द टीम.

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग. रेडियो मस्ती सुनते रहो.
1: Yes, I keep listening to Radio Masti और यहाँ पर great गाने and in advance wishes है to the great अमिताभ बच्चन साहब. नाम है अमिताभ बच्चन, आवाज में दम और अंदाज ऐसा कि पूरी हिंदुस्तान कहे, सभी जहान कहे, वह शहंशाह क्या बात. वैसे आपको बस बताना है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली पहचान आपके जुनून, आपकी मेहनत और आपके काम से होती है. और अमिताभ जी इसके सबसे खूबसूरत मिसाल तो है ही. डायलॉग अनेक, किरदार अनेक और दिलों पर राज करने वाले वो बस अमिताभ बच्चन साहब है. आवा बिग बी, यस, कल उनका जन्मदिन हम मनाने वाले हैं धूमधाम से. और जो हमारे फैन फॉलोअर्स है वो सब तो बेताब है कब उनके गाने आएंगे. और वे जो मस्ती, वैसे उनके गाने तो हम चलाते रहते हैं, लेकिन जो मौका हमको मिलता है स्पेशली बर्थडे के अवसर पर, अगर ना चलाएं तो लगेगा कि कुछ कमी हो गई है ना. तो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट द सेलिब्रेशन राइट नाउ. एंड अ बिग हेलो टू ऑल द लिसनर्स जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है और बस ऐसे ही एंजॉय कर रही है विद आवर आज का बॉलीवुड टक टक आटम.

0: yo.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
3: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. Music tak-takata.
1: RM2 Radio Musti.
4: राइट माई लवली लेडीज, अभी ये टाइम हो चला है टू गेट सम फैशन टिप्स और यहाँ पर तैयारियाँ बस हो रही है धूमधाम से और दुर्गा पूजा के लिए कई बस साड़ियाँ पहनने वाले हो टू लुक स्टाइलिश एंड टू लुक

बस ये जो एलिगेंट लुक है बस आप पर एकदम जचने वाला है, तो इजी टिप्स आप लोगों के लिए. एंड दुर्गा पूजा का जो सीजन है कल से शुरू हो रहा है, तो लाल साड़ी यहाँ पर आप पहनने वाले हो अगर, तो कुछ टिप्स. अगर आप भी माँ दुर्गा के दर्शन के लिए दिखना आप चाहती हो एलिगेंट, ट्रेडिशनल और एब्सोल्युटली गॉर्जियस, तो अपनी वार्डरोब से निकाल लीजिए एक ब्यूटीफुल लाल साड़ी. सबसे पहला फैशन टिप. अगर आपको चाहिए रॉयल बंगाली लुक, तो बस आपको पता है जो कॉम्बिनेशन होता है बंगाली लुक के लिए, इट्स रेड एंड वाइट. तो साड़ी को आप चूज कर लीजिए और उनके साथ जो गोल्डन वाला बॉर्डर है, बस आपको उस टाइप को चूज करना है. और अगर चाहिए फुल ऑन फेस्टिव ग्लैमर, तो एक लाल बनारसी सिल्क साड़ी जो एकदम खिल जाएगी आप पर. और आप जो है बात करती हैं ज्वेलरी की, गोल्ड झुमके आप बस यूज़ कर सकेंगे अपने आप पर. एक छोटा सा सिंपल नेकलेस अगर आप पहनना चाहते हो, लाल चूड़ियाँ और एक बहुत ही खूबसूरत लाल बिंदी, बस आपका जो ट्रेडिशनल लुक है वो हो जाएगा कंप्लीट. और मेकअप को रखिए थोड़ा सा ग्लो, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक और बालों को एक एलिगेंट बन फ्रेश वाइट फूल के साथ आप सजा सकते हो. ट्रस्ट मी, आपका जो लुक है वो होगा एब्सोल्युटली स्टनिंग.

0: दिवा की तरह ही आप सेलिब्रेट करने वाले हो, लाल साड़ी के साथ आप खिल जाएंगे एंड यू लुक मोर एलिगेंट. ये थे कुछ आसान से टिप्स.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: वेलकम बैक और अभी हम लेकर आए हैं आपके मैसेजेस. थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑन 5999124. जय माता दी हंसरी जी, थैंक यू सो मच. जय माता दी आपको भी. आज प्यारी बेटी और नाम है अंजू, शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज, जो मेबर्ग की रहने वाली है. हैप्पी बर्थडे टू यू अंजू. लॉट्स ऑफ विशेस कमिंग फ्रॉम माँ कृष्णी और सभी परिवार आए हुए हैं आपको बधाइयाँ पहुँचाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. I want to share a small poem. Never blame anyone in your life. अच्छे लोग आते हैं आपको खुशियाँ देने के लिए. जो bad people हैं वो आते हैं to give you experience. And जो worst people आते हैं just to give you the lesson. और जब best people आते हैं ना वो आपको दे जाते हैं lots of great souvenirs. That's nice. Thank you for sharing. यहाँ पे जना जी का साथ है from Flack. और अभी काम से घर वापस आई है. So अभी take some rest. कुछ आराम फरमा लीजिए और रेडियो के साथ बिल्कुल आप जुड़ गए हो तो गाना तो बनता है आपके लिए. एंड फॉर ऑल द फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. विष्णु जो यहाँ पर काम कर रही है, कुआज टू हिम फ्रॉम वाइफ जो यहाँ पर प्यार बस पहुंचा रही है रेडियो मस्ती द्वारा. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कनेक्टिंग योर मैसेजेस ऑन 5999124. एंड द ग्रेट म्यूजिक कंटिन्यूज अप टिल द एंड. लेकिन अभी इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे समाचार बुलेटिन की ओर और इसके बाद बिल्कुल हम मिलने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट आवर ऑफ बॉलीवुड टकटका टक. स्टे कनेक्टेड. यहाँ पे हम सुनी है आपके साथ अप टिल 7 PM.

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। Quand le vieux गोलीकांड में पुलिस सर्जेंट गौतम सिंह तुको को अदालत में पेश करने के बाद दोबारा हिरासत में भेजा गया, गोली चलने के हालात की जांच जारी। इस बीच इलाके में बुधवार से तनाव का माहौल, सड़कों पर रुकावटें और आगजनी की घटनाएं सामने आई। एलर्जी तुम्मा के इलाज के लिए भारत से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम को तुरंत मॉरिशस बुलाने का फैसला, स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद दी जानकारी। Quand le vieux में गोली लगने से घायल एलर्जी तुम्मा की हालत को लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने चिंता जताई। उन्होंने परिवार से खुद की बातचीत, पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस घटना के चलते प्रधानमंत्री ने रोड्रिग्स की अपनी यात्रा स्थगित की। और विदेश में भारत की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई इलाकों में पुलिस ने बैरिकेड लगाई, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। और अब समाचार विस्तार से। Quand le vieux में कल रात गोली लगने से 27 साल की एलर्जी तुम्मा घायल हो गई। एक बच्चे की मां एलर्जी उस समय एक वान में सवार होकर अपने घर जा रही थी। बताया जा रहा है कि गोली पुलिस के सर्जेंट गौतम सिंह तुको ने चलाई थी। उन्हें आज दोपहर बाद वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें दोबारा हिरासत में भेज दिया गया। गोली किन हालात में चली, इसकी जांच अभी जारी है। इस बीच Quand le vieux में पिछले बुधवार से तनाव बना हुआ है। कुछ लोग सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। Quand le vieux में गोली लगने से घायल एलर्जी तुम्मा के इलाज के लिए भारत से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत मॉरिशस बुलाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के मुताबिक इस मामले में उनकी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से बातचीत हुई है। उन्होंने घोषणा की कि भारत से चार डॉक्टरों की एक टीम सोमवार को मॉरिशस पहुंचेगी। ये टीम एलर्जी तुम्मा का ऑपरेशन करेगी और स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी सेहत और इलाज को लेकर और क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं।
1: हम लोगों ने डॉक्टरों का एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मरीज की देखभाल के लिए हम लोगों ने वहां पर रखा और डॉक्टर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि मरीज को देश के बाहर इलाज के लिए नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि समस्या कुछ गंभीर लगता है। उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हो वे एंचुबे है, ताकि कोई ऐसा चीज ना हो जाए पेशेंट के साथ। तो हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि भारत से डॉक्टरों का एक टीम, चार सदस्य के टीम को मॉरिशस में हम यहाँ बुलाएं, ताकि मरीज का जो ऑपरेशन करना है, जो गोली गया है अंदर, उसके वे निकाल सकें। प्रधानमंत्री के संपर्क पर मैं हूँ और उनकी पूरी सहयोग हमारे साथ है, अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा रहे हैं और उनके सहयोग से ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भारत से एक अच्छे टीम डॉक्टर यहाँ आए और पेशेंट का ऑपरेशन कर सकें। हमारे देश के राष्ट्रपति भी मरीज की स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता प्रकट किया है। तो मैं सभी को आश्वासन दिलवाना चाहूँगा कि सरकार की ओर से, हमारी ओर से, डॉक्टरों की टीम की ओर से सब कुछ किया जा रहा है, ताकि जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनका इलाज हम अच्छी ढंग से कर सकें।
0: Quand le vieux में गोली लगने से घायल एलर्जी तुम्मा की हालत को लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने गहरी चिंता जताई है। महिला का इलाज इस समय आईसीयू में चल रहा है। प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने खुद एलर्जी तुम्मा के परिवार से बात की और इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अपना समर्थन दिया। उन्होंने एलर्जी तुम्मा के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना भी की है। घटना की जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि

0: मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी, किसी भी बात को छिपाया नहीं जाएगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोलोवियो में हुई इस घटना के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने अपनी रोड्रिक्स यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी है। प्रधानमंत्री दफ्तर के अनुसार इस यात्रा के लिए जल्द ही नई तारीख तय की जाएगी। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नवा मारी ने कोलोवियो गोलीकांड के मामले पर कहा कि सरकार इस मामले पर बारीकी से नजर रख रही है और कोई बात छिपाई नहीं जाएगी। उन्होंने गवाहों से बिना डरे आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने घायल महिला के इलाज के लिए जल्द से जल्द विदेशी डॉक्टरों को बुलाने की व्यवस्था की है और मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी।
1: Depuis ce matin, mon contact avec le ministre Nagalingom, qui est aussi député de la circonscription. Bozin Diaw, qui est en contact constant avec le Premier ministre, qui peut suivre l'affaire de près. Et le gouvernement, dans son ensemble, peut suivre ces affaires-là de très, très près. Nous avons sur la population qui, pas prenant aucun cover-up, et nous invite tout le monde qui a envie de témoigner, vigne de l'avant, pas besoin d'un pire. Nous exprimons nos solidarités à toute la famille. Et moi, sûr que le gouvernement pour faire tout ce qui est besoin, pour faire toute la lumière là, et que madame là, pour gagner tout soin qui est besoin.
0: अब हर दिन नलों में पानी नहीं आएगा। महोबाकुआ जलाशय में पानी का स्तर लगातार गिरने के कारण अब प्लेनविलियंस के कई इलाकों में पानी की सप्लाई के समय में बदलाव किया जा रहा है। इलाके के हिसाब से लोगों को एक दिन छोड़कर या हर दो दिन बाद पानी मिलेगा। इस मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कुछ आपात कदम भी उठाए हैं। पानी की सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ परिवारों को पानी जमा करने के लिए मुफ्त पानी की टंकियां भी दी जाएंगी। इन कदमों से लोगों को कितनी राहत मिलेगी और पानी की नई व्यवस्था कैसे होगी, इस पर आधारित हम बाद में एक रिपोर्ट पेश करेंगे। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के नेता पॉल बेरांजे ने मॉरिशस में पानी की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। आज सुबह एक प्रेस सम्मेलन में उन्होंने देश में पानी की कमी और इससे पैदा हो रही परेशानियों पर अपनी बात रखी। नेशनल क्राइम एजेंसी और शागस के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ज्यादा जानकारी अदिति अवतार के साथ।
2: पानी की स्थिति पर बात करते हुए पॉल बेरांजे ने कहा कि देश में जनता के बीच भेदभाव और अन्याय की भावना मौजूद है। उनका कहना है कि अगर ठोस समाधान नहीं किए गए तो ये समस्या और बिगड़ सकती है। फोमिलिता पोगसिस के नेता ने भूमिगत जलाशय खोदने, समंदर में बड़ी मात्रा में पानी के बहाव और रिविया दे ज़ोंगी बांध की परियोजना से जुड़े फैसलों पर टिप्पणी की, जो अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। पॉल बेरांजे ने कहा कि नियमित जलापूर्ति के लिए समाधान लागू करना बहुत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने माओवाकवा के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन स्थापित किए जाने का भी विचार दिया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आज की प्रमुख समस्या माओवाकवा है। इस पर हर तरह की जानकारी क्यों देनी कि अब वहाँ बारिश नहीं होती या बारिश की बूंदें अब पहले से ज्यादा छोटी हैं, जबकि मेरे अनुसार आज तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है कि वहाँ के फीडर कैनल्स के पानी कहाँ जाते हैं। इस समस्या के सही कारण आम किए जाने चाहिए और इस पर अध्ययन करना अनिवार्य है। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान मौजूद हुए विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल ने सरकार से पानी की समस्या का ठोस समाधान ढूंढने की मांग की। नेशनल क्राइम एजेंसी पर बा काउंसिल की बैठक पर भी चर्चा हुई। पॉल बेरांजे ने मॉरिशस के अनुकूल एक नेशनल पॉलिसी सर्विस संस्थान का प्रस्ताव सामने रखा। शागोस मुद्दे को लेकर एफएमपी के नेता ने इस बात पर खेद जताया कि मॉरिशस ने ग्रीनलैंड के मामले को उदाहरण की तरह नहीं लिया। एफएमपी ने कोलंबिया की घटना पर टिप्पणी की और पीड़ित तथा उसके परिवार के प्रति सॉलिडारिटी जताई।
0: से देश में पाई जा रही मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने रोड्रिग्स की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। इस संबंध में रोड्रिग्स के कमिश्नर फ्रांको घोंको ने घोषणा की कि 12 अक्टूबर को मनाए जाने वाले

0: एक स्वायत्ता दिवस के मुख्य मेहमान गणराज्य के उपराष्ट्रपति रॉबर्ट हगली होंगे। खेलकूद, मनोरंजन और नई चीज़ें सीखने का मौका। रेजिडेंस रिशलियो के बच्चों के लिए एक नया चिल्ड्रंस क्लब खोला गया है। यहाँ बच्चे खेलों और अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे, साथ ही अपनी कला और हुनर को भी निखार सकेंगे। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की इस पहल का उद्घाटन शनिवार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियाना वाओमारी और जूनियर मिनिस्टर कुगान पारापेन की मौजूदगी में हुआ। ज्यादा विस्तार अदिति अवतार के साथ।
1: खेलकूद, हंसी मजाक और अच्छी देखरेख रेजिडेंस रिशलियो में अब बच्चों के लिए खास तौर पर एक जगह बनाई गई है। इस शनिवार को इस नए चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया गया। क्विंचा कहती है, मैं 12 साल की हूँ। मैं ग्रुप में गतिविधियां करना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि खासकर छुट्टियों के लिए ये चिल्ड्रंस क्लब हमारे लिए फायदेमंद होगा। दान कहता है, इस क्लब में मैं छुट्टियों के दौरान अपने दोस्तों से मिल पाऊंगा। मुझे बास्केटबॉल खेलना और चित्र बनाना पसंद है। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की इस पहल का मकसद है बच्चों को ऐसा माहौल देना जहां उनका उचित विकास हो और वे अपनी प्रतिभाएं निखार सकें। काउंसिल के अध्यक्ष डैनियल मेवेन लुइस कहते हैं, हम पहले की तरह उत्साह का माहौल वापस लाना चाहते हैं, जैसे पहले फुटबॉल, वॉलीबॉल और अन्य खेल हुआ करते थे। मौके पर उपस्थित हुए जूनियर मिनिस्टर कुगान पारापेन ने कहा कि युवाओं के कल्याण के लिए ऐसे स्थलों का खास महत्व होता है। उन्होंने कहा, मात्र डिजिटल उपकरणों के साथ जीवन बिताया नहीं जा सकता। बच्चों को हम उम्र युवाओं के साथ घुलना मिलना आना चाहिए, क्योंकि आपसी आदान प्रदान से सभी का फायदा होता है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियाना वाओमारी ने बच्चों से ऑनलाइन अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखने की मांग की। उन्होंने कहा, ऑनलाइन जाते हुए अपना नाम, पता या अन्य निजी जानकारी आम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को गलत रास्तों की तरफ खींचते हैं। इसलिए टैबलेट का प्रयोग करते हुए बच्चों को अपने माता पिता को बताना चाहिए कि वे उस पर क्या देख रहे हैं। इस समारोह का समापन रेजिडेंस रिशलियो के बच्चों को तोहफे देने के साथ किया गया।
0: जैसे कि हम बता रहे थे, देश में पाई जा रही मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने रोड्रिग्स की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। इस संबंध में रोड्रिग्स के कमिश्नर फ्रांको घोंको ने घोषणा की है कि 12 अक्टूबर को मनाए जाने वाले रोड्रिग्स स्वायत्तता दिवस के मुख्य मेहमान गणराज्य के उपराष्ट्रपति रॉबर्ट हगली होंगे। उनको सुनते हैं।
2: Il fait l'informant qui, malheureusement, il peut trouver dans l'incapacité de faire le déplacement comme nous guessons honneur lors du 24e anniversaire de l'autonomie. Donc, nous aussi, nous chagrins et nous sommes bien préparés. Et par rapport à toute bonne activité qui se prévoit, donc le Premier ministre, finalement, comprend qu'il est pour... Simplement, il peut simplement repousser sa visite chez Rodrigue. Donc, les autres bonnes activités qui tiennent que tu peux inclure le Premier ministre, surtout bonne inauguration qui tu peux non. Donc, tout ça fait une cancel pour le moment. Et aussi, bonne activité qui tiennent avec bonne jeune. Et aussi, les autres bonnes rencontres qui tu prévois, fait une cancel. Donc, à la place du Premier ministre, c'est son excellence Robert Anglais du USK qui peut venir remplacer comme invité d'honneur.
0: तो ये बयान रॉड्रिग्स के कमिश्नर फ्रांको घोंको का रहा। सोफा पुराना हो गया है, गद्दा बेकार हो गया है, फ्रिज और टीवी भी अब किसी काम के नहीं, तो इसका इनका क्या करें? कैथोबोन में इन दिनों ऐसा ही पुराना सामान सड़कों के किनारे दिखाई दे रहा है। वजह है नगर पालिका का सफाई अभियान, जिसके तहत अक्टूबर की शुरुआत से घरों का बड़ा और बेकार सामान इकट्ठा किया जा रहा है।

0: सिर का समय पर पता चल जाए तो इलाज में बड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएं बीमारी के लक्षण दिखने का इंतज़ार ना करें। इसी संदेश के साथ आज रोज़ेल के प्लाजा में स्तन और सर्विकल कैंसर की मुफ्त जांच की गई। महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करने और जांच की सुविधा उन तक पहुंचाने की ये एक पहल है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और पीढ़ियों से जुड़ी एक अनमोल विरासत है। इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है पीढ़ी की प्रतिभा को आज विशेष सम्मान मिला। जैसे इसी विरासत को आगे बढ़ा रही नई पीढ़ी की प्रतिभा को आज विशेष सम्मान मिला। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने साल 2025 की स्कूल सर्टिफिकेट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं में हिंदी भाषा और साहित्य में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। हिमालय की पवित्र वादियों में बसे चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, हिंदू धर्म में इन चारों धामों की यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है। आस्था और भक्ति से जुड़ी इस पवित्र यात्रा को पूरा कर मॉरिशस के 48 श्रद्धालु 8 अक्टूबर को स्वदेश लौट आए। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से आयोजित इस तीर्थ यात्रा के बाद प्लेजांस हवाई अड्डे पर श्रद्धालुओं ने हमारी टीम के साथ अपने अनुभव साझा किए। विदेश में भारत की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। कई इलाकों में पुलिस ने बैरिकेड लगाए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। चुनाव आयोग के कामकाज पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली में आज क्या हालात रही है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
1: नई दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की भारी मौजूदगी, जगह जगह नाकाबंदी और वाहनों की जांच। राजधानी में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार करीब 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, खासकर जंतर मंतर और चुनाव आयोग के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है। इन इंतजामों के पीछे कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का विरोध प्रदर्शन है। संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि मतदाता सूचियों की जांच और उनमें किए गए बदलावों के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं। चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता है और उसका कहना है कि मतदाता सूचियों की जाँच तय नियमों के अनुसार की गई है। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद कई प्रदर्शनकारी जंतर मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ियों में बिठाया गया। शनिवार दोपहर तक 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। दिल्ली पुलिस की सीमाओं पर वाहनों की जाँच बढ़ाई गयी, कई प्रमुख रास्तों पर यातायात बदला गया। दिल्ली मेट्रो के करीब 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास पर पाबंदियां लगाई गई, कई रेलगाड़ियां भी रद्द की गई हैं। केंद्रीय दिल्ली के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इन पाबंदियों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक यातायात पर लगाई गई रोक की समीक्षा करने को कहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कदमों का मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
0: देश विदेश की खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है, साथ ही पूर्व में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का भी असर है। पूर्वानुमान आज रात पूरे देश में रह रहकर वर्षा हो सकती है और खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल पार्टों पर ज़्यादा बारिश होगी और बादल के गरजने की भी संभावना है। और कल सुबह और दिन के दौरान भी रह रहकर वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल पार्टों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के

बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी, जो पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है और जनता से निम्न सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि बादल के गरजने पर या भारी वर्षा के समय एक सुरक्षित जगह पर रहें, पेड़ के नीचे, खुले मैदान या समुद्र में न जाएं। कल सूर्योदय 5:43 पर होगा।

0: on NBC Play and NBC.mu.
1: Choc samachar sani. Nambarik sau chonset, avenue Beatu Quatre Bonmi. Nambarik sau chonset, avenue Beatu Quatre Bonmi. Tiran Bisal ki 93 years old ki shimati Shanta Balgobin, shimati Shanta Balgobin. पैदाशी नाम बाबू राम, पैदाशी नाम बाबू राम और जो भानु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर नंबर 164 एवेन्यू ब्यातु कात्रो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडगांव कात्रो बोन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। 80 साल के 80 साल के श्री कृष्णा मंगरो, श्री कृष्णा मंगरो जो चांद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो आंकड़े मौसिया कास्तल रहते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे पिट्सरिविया के मुहा फ्यूनरल पार्लर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगारा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एवेन्यू वीरासामी आयर Moncellement rafraîchi le hocher terre rouge, mais avenue Virasami ailleurs. Moncellement rafraîchi le hocher terre rouge, mais Tirali Sal qui 43 years old, qui chez Dinesh Ramnyal, Jo Banti or Ben nam on s'est jamais jeté, or Jo Arkad Kinu Portwike Beads and जीवल के मालिक थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके घर एवेन्यू वीरासामी आयर मोंसेलमेंट राफ्रे ले हॉचे टेर रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दीपक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12 AM। मोंसेलमेंट वर्जे ले बैं नंबर 2 पेटी वर्जे पॉइंट दे साब मे मोंसेलमेंट वर्जे ले बैं नंबर 2 पेटी वर्जे पॉइंट दे साब मे 85 साल की 85 years old की श्रीमती गोविंदा मां मदुरई, श्रीमती गोविंदा मां मदुरई जो मैडम नायकन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री अंगा मुतु नायकन मदुरई के घर मोंसेलमेंट वर्जे ले बैं नंबर 2 पेटी वर्जे पॉइंट दे साब से उठाकर दफनाने के लिए सैन लुई पेटी ट्रिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 10 AM। देसाई स्ट्रीट बोबासामी 87 साल के 87 years old के श्री प्रवीण लाल देवचंद करमन शाह, श्री प्रवीण लाल देवचंद करमन शाह जो प्रवीण लाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो बीजी केयर होम पालमा कैथ्रोबोन में रहते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी मंगलवार 13 अक्टूबर को दिन के डेढ़ बजे उनके भतीजे श्री गिरीश देसाई के घर देसाई स्ट्रीट बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए श्री बैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 13 अक्टूबर एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: और एमटू रेडियो मस्ती
2: 6:31 PM. Thank you for joining on Radio Masti. Sabhi ka warm welcome. Yes, we continue with the happy mood in aaj ka Bollywood tak tak tak. Yahan par aapke saath hai aur hum suni. Yes, it's evening time. Sunset ka beautiful view. Agar aapke saamne hai, so do enjoy. वैसे आज तो सैटरडे वाला दिन है, सो ट्रैफिक का कोई रश नहीं है और काम पर जारी है हमारे फ्रेंड्स. बस जो काम करते समय साथी निभा रहे हैं, आपको ख्वाहिश है. वैसे यहाँ पर जितने भी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं घर पर, मुझे पता है कि सुबह से इतना सारा काम हो रहा है यहाँ पे ऑफिस से. तो आज का दिन तो छुट्टी वाला दिन था, लेकिन घर पर इतना सारा काम बाकी था, ये तो हमें पता है. रियली होप कि इट्स कमिंग टू द एंड. यहाँ पे दिन भर के लिए कितना सारा जो काम काज आपने कर लिया है, साफ सफाई हुई है, और कुछ तो हमारे लिसनर्स अभी भी जुड़े हुए हैं विद द रेडियो. स्टिल सम वर्क बस जारी है, साफ सफाई जारी है. सो जैसे भी हो मूड, बस आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी तो जो शाम हो गई है ना, यानी कि शाम का मतलब है थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ी सी मस्ती एंड सम ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स. और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपके म्यूजिक पार्टनर जी. हम तो रहेंगे आपके संग अप टिल 7 PM आपके इस शाम को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए. बिल्कुल तैयार रेडी हमारे कुछ गाने जो हम चलाने वाले हैं अप टिल 7 PM. जॉइन अस. और बाकी के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, मे बी ड्राइविंग समवेयर, गोइंग समवेयर, प्लीज बी सेफ, ड्राइव केयरफुली. और बस परिवार के साथ अगर वक्त आप बिता रहे हो, सो स्टे चेयरफुल, स्टे हैप्पी. ये जो फैमिली टाइम है बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रेशियस है, तो मेक द मोस्ट एंड मेक इट ब्यूटिफुल, जैसे कि हमारे गाने जो हम चला रहे हैं अब टिल द एंड ऑफ द शो.
0: म्यूजिक टक टक टक
1: आरएमटू रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: पहला प्यार आपको हुआ है, सो दैट्स वेरी नाइस, आपको कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर गीतों का ये जो सफ़र है, बस हम तय कर लेते हैं आपके साथ, कभी प्यार होता है तो कभी खुशियाँ मनाने का दिन आता है। एंड वी आर ऑल हियर टू शेयर द ग्रेट एंड पॉजिटिव वाइब्स थैंक्स टू आवर रेडियो मस्ती, जो यहाँ पर बिल्कुल आपके साथ है टू कंटिन्यू द म्यूजिकल जर्नी। एंड अभी टाइम हो चला है टू हैव सम डेडिकेशन, चलते हैं पोर्टवेज से जहाँ पर मिस्टर श्याम ने हमको याद किया है। और अगला गाना प्लीज प्ले इट फॉर माय ब्रदर, और नाम है उनका देविशन, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज, और भाई से बढ़कर वो है तो आज उनका स्पेशल दिन है, तो लेट्स मेक दिस डे बहुत ही स्पेशल उनके लिए। बिल्कुल आपने सही सोचा है, तो आपके भाई को बहुत सारी खुशियां हैं, लॉट्स ऑफ गुड विशेस, हमेशा वो स्वस्थ रहे, ऑलवेज बी इन हैप्पी मूड, और ये तो है आपका विश। ओके जी, सो आपके जो स्पेशल विशेस है पहुंच गए हैं, एंड थैंकिंग यू फॉर योर मैसेज। शशि जी का साथ फ्रॉम क्यू पेप, और आज यू सेड हम सुनी कि बहुत सारा काम जो करते हुए बस हमारे लिसनर्स जुड़े थे सिंस मॉर्निंग, और अभी भी काम जारी है, साफ सफाई हो रही है, दुर्गा माता का स्वागत जो करना है और पूरे भक्ति भाव के साथ सजावट करनी बाकी है, अभी तो साफ सफाई हो रही थी, सो लगे रहो जी। एंड खुखाश टू एवरी वन। वैसे हमें तो पता है इस क्राइसिस में कई लोग तो बस पानी की सुविधा को लेकर काफ़ी यू नो चिंतित है, सो ट्राई टू डू योर क्लीनिंग, लेकिन ट्राई टू सेव सम वाटर एज वेल, ये बहुत खास है टू सेव वाटर एंड टू स्टे सेफ। तो यहाँ पर वी हैव साना, हेलो जी, वेलकम टू द शो, और एंजॉय कर रही हैं द ग्रेट सॉन्ग्स, एंड गोइंग टू गॉम्बे राइट नाउ, आई एम विद माय फियांसे अहमद, आई वांट टू टेल हिम ही इज वेरी स्पेशल एंड आई लव हिम वेरी मच। तो यहाँ पर पार्टी के लिए आप जा रही हो, प्लीज बी सेफ, हैव अ वंडरफुल टाइम टुगेदर, और ये जो सफर है बस आपके लिए सेफ रहे, यही हमारे गुड विशेस है। तो जहाँ पर भी साथ जारी है आप लोगों का, इट्स प्लेजर यहाँ पर साथ जो आप दे रही हो, और यहाँ पर गाने हम चला रहे हैं, सो ये जो कनेक्शन है बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही खास बनता जा रहा है। अफ्टर द एंड दिस इज बॉलीवुड टकटकाटक अफ्टर 7 PM, दीजिए हमारा साथ और हंसनी विद यू, एंड वी कंटिन्यू विद द ग्रेट सॉन्ग्स। अभी और एक जबरदस्त गाना आप लोगों के लिए चल पड़ेगा।
0: Music, Tak Tak Tak. RM2, Radio Musti.

0: All right, let's make it a bit more यहाँ पर fun with आज का शो जो हम सजा रहे थे आपके लिए. On this happy note, I'll wish Naina Jaleem a very happy birthday. And a sweet girl बस तैयार हो रही है for the great birthday treat जो उनके लिए बस ready है, all set. And we have got all the best wishes coming from Mama Poonam, उनके dad Likraj, उनकी प्यारी सी बहना, और साथ में है सभी जालिम परिवार जो आए हैं to wish Naina a very happy वाला birthday. Wishing you all the very best. चलिए इसके साथ our wave goodbye. यहाँ पर आ गई है विकास शांतनी, he is already here. Hello जी, आपका warm welcome. कैसे हो?
1: Hi Hansini, I'm fine. मैं ठीक हूँ. So 7 to 9 as usual सरदे की रात हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात. So get ready. नंबर वही है 7549912 94. So it's going to be me और हम alone. लेकिन आप साथ में है तो बस चलता रहेगा और म्यूजिक का सफर साथ में स्पोर्ट्स की खबरें भी.
0: That will be a great actually combination जो आप लेकर आएंगे after 7 PM. Sports news plus आपके धमाकेदार गाने. So यहाँ पर विकास शांतनी का साथ after 7 PM. Stay well connected on Radio MST. मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए stay safe and wishing you a happy evening.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: जुदाई के बाद मिलन की घड़ी आती है और मिलन का समय बन चुका है। इस समय रात के 4:04 और 50 सेकंड हुए हैं। यू आर ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती RM2 विद मी विकास रामधनी और आज शनिवार है, शनिवार की रात 7 से 9 के बीच हमारी आपकी मुलाकात होती है ऑन रेडियो मस्ती RM2। 2 घंटों का ये सफर, म्यूजिक का सफर, स्पोर्ट्स खेल जगत का सफर और बहुत सारी बातें। आपके मैसेज ऑन 5499-1294-549912-1294 पे आप हैं, हम हैं और ये स्टूडियो है, बस हमर आप और कोई नहीं। सो आपका जो भी मैसेज आएगा अनफिल्टर्ड, सारा कुछ यहीं पर 5499-1294। 2 हफ्तों की इंटरनेशनल ब्रेक के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग इज बैक। लीग लीडर आर्सेनल ने आज 1-0 से वो हार रही थी, लेकिन फाइनली दे वन बाय 2-1 अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड। ग्रेट गोइंग द गनर्स वापस टॉप पोजीशन पे आ गए हैं और इस समय जो मैच खेले जा रहे हैं हाफ टाइम की ओर, हाफ टाइम पूरा हो चुका है, सेकंड हाफ शुरू भी हो चुका है। चेल्सी नाउ लीडिंग बाय 3-0 अगेंस्ट बोर्नमुथ। एस्टन विला 1, ब्रेंटफोर्ड 1, इप्सविच टाउन 0, फुलहम 0 और सन्डरलैंड 0, ब्राइटन एंड होव 0। रात 8:30 नॉट टू मिस किसी भी हालत में। ओल्ड ट्राफोर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगी आज रात 8:30 PM अगेंस्ट टोटेनम हॉटस्पर। और हॉट हॉट खबरें हैं क्रिकेट वर्ल्ड से, टेनिस में भी, साथ में फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप ऑल इन वन एंड वन फॉर ऑल ऑन 5499-1294-5000।

0: सुनते रहिए और हम सुनाते रहेंगे।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
3: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
2: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्म्थ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
3: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
1: RM2

0: रेडियो मस्ती
1: झलकार बीट्स
0: RM2 रेडियो मस्ती
1: झलकार बीट्स।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: सो आज रात हमारे अंदर के स्पोर्ट्स का एनिमल जाग उठा है. ग्रेट सॉन्ग ऑन RM2 रेडियो मस्ती स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक झंकार बीच हर सत्यादि की रात 7 से 9 के बीच. सो आज से 2 हफ्तों की इंटरनेशनल छुट्टी के बाद ब्रेक के बाद प्रीमियर लीग इज बैक. प्रीमियर लीग का तेवर बदल गया है और आज बहुत सारे मैच खेले जा रहे हैं. इस समय 1, 2, 3, 4 मैच खेले जा रहे हैं और एक मैच समाप्त हो गया. सो लीग लीडर जो था मैनचेस्टर सिटी, वो अब आर्सेनल भी उसी की तरह एक मैच ज़्यादा खेलने के बाद आर्सेनल टुडे 1-2 आर्सेनल के लिए. आर्सेनल 1-0 से हार रही थी अपने होम मैदान पर लीड्स यूनाइटेड की ओर से. जस्टिन ऑन टारगेट सेकंड हाफ के 55वें मिनट पर, उसके बाद 62वें पर 62nd मिनट पर कैलाफ्यूरी का इक्वलाइजर और 70वें 8 मिनट बाद ब्रूनो गिमारेस ऑन टारगेट फॉर आर्सेनल. सो इट्स आर्सेनल 2 लीड्स यूनाइटेड 1. बैक ऑन टॉप आर्सेनल 15 अंक, मैनचेस्टर सिटी के पास भी 15 अंक, ब्राइटन के पास है 13 अंक, ब्रेंटफोर्ड विद 10 points, चेल्सी के पास फिलहाल अभी वो 3-0 से लीड कर रही है, वो अभी 5वें पोजीशन पे आ गई है विद 10 points. इक्वली लीड्स हार गई, फिर भी वो 6ठे पोजीशन पर है 9 अंक लिए. लिवरपूल 7वें स्थान पे. सो लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये कल का महामुकाबला होगा और महामंच होगा एनफील्ड, लिवरपूल का एनफील्ड रोड, जहां पर ये मैच कल खेला जाएगा. कल रात 7:30 इज गोइंग टू बी लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. आप क्या कहते हैं इस मैच के बारे में? जब से सिटी पर आरोप लगे हैं और आरोप साबित भी हुए हैं, अभी उसने अपील भी की है, तब से ये उसका पहला मैच है. सारी दुनिया, फुटबॉल जगत उसकी निंदा कर रहा है, लेकिन बस अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है. दे हैव अपील्ड और अपील के बाद जो भी फैसला सुना जाएगा उसके मद्देनज़र और सारे फैसले लिए जाएंगे. सो आज के लिए आर्सेनल 2 लीड्स यूनाइटेड 1 फुल टाइम रिजल्ट. अभी जो मैच खेले जा रहे हैं, एस्टन विला 1 ब्रेंटफोर्ड 1, चेल्सी 3 बोर्नमुथ 1, इप्सविच टाउन 0 फुलहम 1, सन्डरलैंड 0 ब्राइटन एंड होव 1. रात 8:30 आज भूलेगा नहीं. इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टोटेनहम हॉटस्पर.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: सात बजकर 28 मिनट और 6 सेकंड यू आर ट्यून टू रेडियो मस्ती और M2 विद मी विकास रामधनी और हर शनिवार की रात 7 से 9 के बीच हमारे की मुलाकात 729 जैसे धर्मेंद्र चुन चुन के मारते थे जब वे फिल्में किया करते थे वैसे ही हर शनिवार रात 729 हम भी आपके लिए चुन चुन कर लाते हैं चंद ऐसे गाने ऐसे दुर्लभ रया गीत जो आपको पिघला दे सकते हैं और साथ में खेल समाचार भी वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑन रेडियो मस्ती और M2 झंकार बीच में सो अलोंग विद योर मैसेजेस ऑन 5499-1294-5499-1294 पे वी हैव ए बर्थडे विश सो ये वाला विशिंग बर्थडे टू किरण सोहराई फ्रॉम सोहराई फैमिली परमेश्वर परिवार दर्शन सुनक सिंह ओगादन सिबालक फैमिली ऑफ स्टैनले रोजिल विशिंग किरण ए वेरी हैप्पी बर्थडे आपको भी प्रणाम भैया जी ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑन रेडियो मस्ती एंड प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग किसके लिए यलेश शाम के लिए आप रहते हैं सुरिनाम हाय यलेश ग्रेट फ्रेंड ऑफ रेडियो मस्ती एंड शाम फैमिली के लिए भी सुरिनाम के सभी दोस्तों को हाय हेलो हमारी ओर से एंड नमस्ते आपको भी प्लीज अगला गीत जो है अक्षत और दक्ष के लिए हुआ प्रिपेयरिंग फॉर नवरात्रि उनके पापा और ऑल लिवरपूल फैंस की ओर से डेफिनेटली ये अगला गीत आपके नाम जरूर करेंगे नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको कल से तैयार हो जाइए क्योंकि तैयारी में ही सब कुछ है और प्लान करना चाहिए सो फुटबॉल में आर्सेनल की आज जीत हो गई 2-1 से अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड और फिलहाल चेल्सी नाउ लीडिंग बाय 5-1 अगेंस्ट बोर्नमुथ एक के बाद एक बारिश हो रही है गोलों की सो वी हैव एंडरसन का एक पहला गोल खेल के दूसरे मिनट पर ही देन रॉजर्स का गोल तीसरे मिनट पर सो दो एक मिनट के अंदर दो गोल गुआओ पेड्रो का एक डबल एंड एंडरसन का एक और गोल ही इज डूइंग ग्रेट दिस गाय लिवरपूल से अजैक्स में गया था फिर वापस चेल्सी में और अब 5-1 से चेल्सी लीड कर रही है
2: RM2 Radio Musti.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: तो दो बातें टेनिस वर्ल्ड से टेनिस जगत से और इसमें चाइना ओपन के विनर विजेता नोवाक जोकोविच 41 ईयर ओल्ड की आयु में ही इज आउट शंघाई मास्टर्स के राउंड ऑफ 64 में ही कल नोवाक जोकोविच की हार हुई। ह्यूबर्ट ऊकाज ने उसे 6-4 और 6-3 से परास्त किया। सो मे बी थकान के कारण 41 ईयर ओल्ड का हो गया, 41 है ना। सो नोवाक जोकोविच को चाहिए थोड़ा सा आराम अब, क्योंकि वो नेक्स्ट भाग लेने वाला है अभी पेरिस ओपन में। और इस समय जो मैच खेले जा रहे हैं, फेलिक्स ओजे अल्यासिमे की जीत हुई अगेंस्ट कैमिलो उगो कराबेली, कास्पर रूड भी जीत गया है 6-1 और 7-6 से। देन वी हैव कार्लोस अल्काराज की भी जीत हुई आज, वो भी घायल था, वापस आ रहा है और आकर ये पहला मैच राउंड ऑफ 64 में जीत गया 6-3 और 6-3 से अगेंस्ट रुआन मैनुअल सेरुंडोलो। जबकि बाकी मैचों में दानिल मेदवेदेव की भी जीत हुई 4-6 एक सेट हारने के बाद, 6-4 और 6-3 से उसने यान लेना और स्ट्रॉफ को हराया। टेलर फ्रिट्स ऑचुआ फिस की भी जीत हुई एंड स्टेफानोस सिटसिपास भी जीत गया 6-3 और 6-4 से अगेंस्ट लुशियानो दाडेरी। एंड सो आज भी कई मैच खेले जाएंगे, कल संडे को भी कई महत्वपूर्ण मुकाबले निर्धारित हैं, इन सब की बात करेंगे कल सुबह। वैसे आपको बताएं कि हर वीकेंड की सुबह 7:30 AM एग्जैक्टली शॉप ऑन रेडियो मस्ती हमारी मुलाकात होती है आपसे विद न्यूज़ व्यूज एंड रिव्यूज, लेटेस्ट खबरें, लोकल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज। और आज की रात जो है 7 to 9 बस मस्ती की रात और पैशन की रात स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक कार्यक्रम में। सो वी हैव स्पेन की ला लीगा में एक मैच सस्पेंड हो गया है, रेयो वालेकानो और एथलेटिक क्लब वाला मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि एथलेटिको मैड्रिड और एलावेस के बीच मैच ड्रॉ चल रहा है 1-1। खेल का ये 63वां मिनट है, 63rd मिनट, रात 8:30 बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे नूको में ये मैच खेला जाएगा। तो सांतियागो बेनाबेयू में विल बी हैविंग रियल मैड्रिड वर्सेस विलारियल। जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी 3, 4, 5 मैच समाप्त हो गए हैं, बात करेंगे इस गीत के बाद। कीप टेक्स्टिंग मी ऑन 5499 1294।
1: RM2 Radio Musti.
0: Chunga Beats.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jamka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: और इस बीच मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टोटनहम हॉटस्पर वाला मैच जो शुरू होगा 8:30 बजे, उसकी लाइनअप तैयार हो गई है. सो वी हैव द स्क्वाड्स दोनों ओर से. मैनचेस्टर यूनाइटेड का के फर्स्ट 11 है सैन लामेंस एज गोलकीपर, हैरी मैग्वायर, मार्टिनेज, फर्नांडेज, मैथियस कुनिया, यूरो अमाद, यूरी चेलमांस, ब्रायन एम्बेमो, ल्यूक शो और कोबी माइनू एज फर्स्ट 11 प्लेयर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. सब के रूप में डालू हेवन, एंड्रू सैंटोस, बलेबा, माउंट, लैसी, राशफोर्ड एंड ज़र्क्ज़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से. जबकि टोटनहम हॉटस्पर भी एकदम हॉट होकर आ रही है. वो लास्ट पोजिशन पे अभी टोटनहम हॉटस्पर एक भी जीत हासिल नहीं की है. सो वी हैव किंग्स की सेनेसी, वन हेक, गलागेर, उद्योगी, ग्रे, बैगवाल, टोनाली, सावियो, डोमिनिक सोलंकी एंड कुरुस, मोहम्मद कुरुस टोटनहम के 11 प्लेयर्स में. और ये मैच खेला जाएगा 8:30 बजे, 8:30 PM. स्टे ट्यून्ड टू RM2, आपको देंगे ढेर सारी खबरें इसको लेकर. एंड वी हैव ए मैसेज ऑन 5499-1294 प्रेमा जी की ओर से. ऑफ पुतदो कैरी के नाइस सिलेक्शन 1920 का तुम्हें इतना प्यार, इट्स योर फेवरेट. एंड ये था आपके पति रवि के लिए.
2: Radio Musti.
1: Jhankar Beats.
3: और आते जाते यहां पर ऐसा भी होता है.

खुश रहो. We have the full-time results. English Premier League के मैचों के results. Arsenal 2, Leeds 1. Aston Villa 2, Brentford 2. मैच अभी injury time पे है. Chelsea ने finally Bournemouth को 5-1 से हराया. Ipswich Town 2, Fulham 1 and Sunderland 0, Brighton 2.

0: रात के 8 बज रहे हैं।
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झलकार बीट्स

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: और जंकर बीट्स की हर बीट्स पे हर धड़कन में आप ही आप हैं और आप हैं तो हम हैं ऑन 5499-1294-5499-1294 पे ये मैसेज है बेटी की ओर से फ्रॉम पिचिया कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है रॉकिंग थैंक यू बेटी जुड़ने और चुनने के लिए और फॉर मेकिंग आवर सैटरडे लाइवली एंड लवली इस मैसेज के लिए भी बहुत धन्यवाद और ये अगला गीत जो है आपके फूफू सूर्यवती और शुभा के लिए एंड ऑल्सो फॉर योर पेरेंट्स आपके माता पिता के लिए दर्शन और माला फ्रॉम बुनाके आपको भी शुभरात्रि 5499-1294 दिल तोड़ना नहीं है दिल यहाँ पर जोड़ना है कहीं ऐसा न लगे कि ये गाने जो चलाए जा रहे हैं बजाए जा रहे हैं वो टूटे दिलों के लिए हैं ऐसा कुछ नहीं है सो ये एक क्या कहते हैं इसको एक एक प्रकार के गाने होते हैं जो पसंद आते हैं कि कुछ लोगों को और कुछ लोग चाहते हैं कि एकदम से हाई बीट्स वाले गाने वो भी हैं इन जंकर बीट्स हर फन मौला है और संगीत के साथ स्पोर्ट्स की खबरें भी सो वी कम बैक टू इंग्लिश फुटबॉल फुल टाइम रिजल्ट आर्सेनल 2 लीड्स यूनाइटेड 1 एस्टन विला 2 ब्रेंटफोर्ड 2 चेल्सी ने फाइनली बोर्नमुथ को 5-1 से हराया इपस्विच टाउन 2 फुलहम 1 और ब्राइटन ने एवे जाकर संडरलैंड को 2-0 से हराया डे क्यूपर और हाइडम का एक गोल इंजरी टाइम में भी एक गोल बना है सो इट्स संडरलैंड 0 ब्राइटन एंड होव

टू और टेबल में ब्राइटन मजबूती के साथ तीसरे स्थान पे है विद 13 पॉइंट्स, केवल दो अंक पीछे हैं अभी आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी से जिनके पास है 15 अंक। और सिटी कल खेलेगी लिवरपूल के खिलाफ एनफील्ड में, जबरदस्त क्लासिक मुकाबला कल रात 7:30 PM, नॉट टू मिस। फोर्थ पोजिशन पे है ब्रेंटफोर्ड विद 10 पॉइंट्स, चेल्सी के पास भी 10 अंक और लीड्स 9 अंक, लिवरपूल सातवें पोजिशन पर है 9 अंक लिए। Keep sending me your text on 5499-1294-5499-1294 पे।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chanka Beats.
2: RM2, Radio Musty.
3: और 12 मिनटों में इट्स गोइंग टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टोटनहम हॉटस्पर. टोटनहम के लिए भी बहुत सारी गड़बड़ी है अभी. लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल. हमने बताया कि सिटी अभी तक लीग टेबल के शीर्ष स्थान पर है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड कहां पर है? लिवरपूल 7वें पोजीशन पर है विद 9 पॉइंट्स. मैनचेस्टर यूनाइटेड 12वें स्थान पर है केवल 5 अंक लिए, जबकि टोटनहम हॉटस्पर अभी 20वें यानी आखिरी पोजीशन पर है विद ओनली 2 पॉइंट्स, यानी 5 मैचों में 0 विन, 2 ड्रॉ है कि ये, हाँ 2 ड्रॉ एंड 3 लॉसेस. ऐसा शायद पहली बार हुआ है टोटनहम हॉटस्पर के साथ. सो आज का जो मैच है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो भी ओल्ड ट्राफोर्ड में, उनको उनके लिए ये बड़ा ही कड़वा साबित हो सकता है, ख़ास तौर पे डिज़ेबी के लिए, कोच डिज़ेबी के लिए, क्योंकि अन्यथा 2 अंकों के साथ और भी दलदल में टोटनहम हॉटस्पर फंसता जाएगा. सो दे हैव टू वेक अप. और आज ओल्ड ट्राफोर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी जीतना पड़ेगा. हमने लाइनअप आपको दे दी है. सो इट्स गोइंग टू हैपनिंग इन 10 मिनट्स टाइम फ्रॉम नाउ ऑन एट 8:30 ओल्ड ट्राफोर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टोटनहम हॉटस्पर. और बाकी जो चैंपियनशिप है वहाँ पर स्पेन के लालीगा में हमने बताया कि एक मैच कैंसिल कर दिया गया है. सो वी हैव रेयो वालेकानो वर्सेस एथलेटिको क्लब सस्पेंडेड. अलावेस एक एथलेटिको मैड्रिड 2 फाइनल रिजल्ट, फुल टाइम रिजल्ट. एथलेटिको मैड्रिड के लिए अलेहांड्रो ग्रिमाल्डो एंड क्रिस्टियानो रोमेरो ऑन टारगेट. सो उनकी जीत हुई आज. और अभी जो मैच रात 8:30 बजे खेला जाएगा, उसमें बार्सिलोना का मुकाबला होगा न्यूकॉम में गेटाफे के खिलाफ. एंड वी हैव द लाइनअप फॉर एफसी बार्सिलोना: रुआन गार्सिया, गावी, गैब्रियल रेजुस, लामिन यमाल, एस्पात, रोड्रिगो, गोर्डन, जेरार्ड मार्टिन, ओल्मो, कुंडे एंड एरिक फॉर एफसी बार्सिलोना.
2: RM2 Radio Musty
1: Chanka Beats.

0: सारे मैसेज ऑन 5499-1294-5499-1294 पे. वी हैव ऑल्सो सम लोकल न्यूज. सबसे पहले तो बता दें कि लोकल स्पोर्ट्स में वी हैड ट्रायथलन में हमारे एक एथलीट ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस दिया है. आई एम ट्राइंग टू फाइंड चिफानी पियात जो है इजिप्ट में, उसने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है. सो ट्राइंग टू फाइंड द या हियर वी आर. सो मॉरिशस में इजिप्ट में कल सुबह चिफानी पियात ने अफ्रीका यूथ चैंपियन का टाइटल का खिताब जीता और इसी कंपटीशन में केरा राजाबाली चौथे स्थान पे आई. सो चिफानी पियात ट्रायथलन की अफ्रीकन चैंपियन बन गई हैं और लोकल स्तर पर ही स्थानीय तौर पर ओलंपिक वेटेरन कप प्लेनमानियो द्वारा आयोजित ये कप है, ये टूर्नामेंट है. कल संडे को दो मैच निर्धारित हैं. पहला मैच दोपहर 3 बजे पोर्टवी वेटेरन वर्सेस मैड्रिड वेटेरन और रियल मैड्रिड आज रात खेलेगा रात 11 बजे. सो कल दिन के कल दोपहर 3 बजे पोर्टवी वेटेरन वर्सेस मैड्रिड वेटेरन और दूसरा मैच होगा शाम 5 बजे वेटेरन सावन वर्सेस वेटेरन रोजबेल. आई बिलीव ओलंपिक वेटेरन कप प्लान मानियो. सो वहीं पर ये दो मैच खेले जाएंगे. ग्रेट गोइंग ऑन 5499-1294-5499-1294 पे. स्पेन की लालिका के रिजल्ट हमने आपको दे दिए. जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी मैच समाप्त हो गए हैं. ऑक्सबर्ग 2 बायर्न म्यूनिख 2. सो बायर्न म्यूनिख ने मैच ड्रॉ किया डिस्पाइट गोल फ्रॉम साइबारी एंड ब्राउन. ऑक्सबर्ग 2 बायर्न म्यूनिख 2 और होफेनहाइम 2 हैम्बर्ग एसवी 3 माइंस 3 बायर लेवरकुसेन 4 पाडेबोर्न 0 स्टुटगार्ट 2 यूनियन बर्लिन ने एल्वेसबर्ग को 1-0 से हराया और इस समय आरबी लाइप्ज़िग वर्सेस आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट वाला मैच शुरू हो चुका है. खेल का ये पहला मिनट है एंड इसके साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटेनहम हॉट्सपर ये मुकाबला भी एग्जैक्टली 8:30 शुरू हो चुका है.
1: Jhankar Beats.
0: For you, जो हमारे साथ समय जुड़े हुए हैं.

0: your number one Bollywood station.
1: आठ बजकर 34 मिनट और 20 सेकंड यू आर ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती झंकार बीच एवरी सैटरडे 7 to 9 रात बाकी है और बात भी बाकी है

0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: झंकार बीट्स।
2: यस, बी ब्रेव और आ जाओ, जुड़ जाओ हमारे इस झंकार बीट्स में।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: मैच हो चुका है ओल्ड ट्राफोर्ड में, मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 टोटनहम हॉटस्पर 0। खेल का ये 12वां मिनट है और ये मैच जो है एकदम बड़ा मायना रखता है दोनों टीमों के लिए, खासतौर पर टोटनहम हॉटस्पर के लिए जो अभी 5 मैचों के बाद लास्ट पोजीशन पे है विद ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ द 5 मैचेस। सो आज का ये मैच टोटनहम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी। लेट्स हैव लुक अगेन एट द टेबल। सो लीग टेबल में मैनचेस्टर सिटी अभी भी टॉप पोजीशन पे है विद 15 पॉइंट्स, और कल वो अपना लेट मैच खेलने वाले अगेंस्ट लिवरपूल एनफील्ड में ये मैच खेला जाएगा। दिस इज अ रियल टेस्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी, जब से उस पर आरोप लगे हैं 115 चार्जेस उस पर लगे हैं कि घपला करने के लिए। बहुत सारे ये अभी केस तो ऑन इज ऑन, और बहुत सारी टीमें जो हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पंडित सैंक्शन लेने की बात कर रहे हैं। लेट्स सी, क्योंकि सिटी ने अपील भी की है। सो आर्सेनल सिटी 15 पॉइंट्स, आर्सेनल 15, आज उसकी जीत हुई अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड 2-1 से। ब्राइटन तीसरे स्थान पे है विद 13 पॉइंट्स, चौथे पर है ब्रेंटफोर्ड विद 10 पॉइंट्स, चेल्सी के पास हैं 10 अंक, वो पांचवें स्थान पर हैं। आज चेल्सी की जीत हुई 5-1 से। लीड्स हालांकि उसकी हार हुई, वो अभी तक छठे पोजिशन पे है 9 अंक लिए। लिवरपूल के पास भी 9 अंक, वो सातवें स्थान पर है। कल यदि कुछ हुआ, जीत हुई तो छलांग मार सकता है लिवरपूल के, लाल छलांग मार सकते हैं। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द टाइम बीइंग 12वें पोजीशन पे है विद 6 पॉइंट्स ऑफ द, अभी 6 नहीं बल्कि 5 अंक है, अभी मैच ड्रॉ चल रहा है, 5 मैचों के बाद 5 अंक। और टोटनहम हॉटस्पर फिलहाल, क्योंकि मैच ड्रॉ चल रहा है, वो एक कदम आगे बढ़ चुका है 3 अंक लिए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बात करेंगे जाने से पहले सिंगापुर ग्रैंड प्री के को लेकर, रेस कल होगी लेकिन आज पोल पोजीशन हासिल कर लिया है मैक्स वेरस्टैपेन, द सेकंड वीक रनिंग। गत सप्ताह भी उसने पोल पोजीशन हासिल किया था, रेस भी उसने जीती थी, और कल अब क्या होगा सिंगापुर ग्रैंड प्री में बताएंगे इस गीत के बाद।
2: RM2
1: Radio Musti,
2: feel the musti.

कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी खास होते हैं, है ना? उनके किस्से दिल के बहुत पास होते हैं।

0: कहना भी नहीं चाहिए। कभी कभी तो मेरा दिल खुद से मिलने को दिल करता है। मैंने बहुत कुछ सुना है अपने बारे में।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats. RM2, Radio Musti.
0: क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि अपने बारे में ही सुनने को मिलता है? सोचना चाहिए। सोच सोच की बात है और सोच वाली बात यह है कि इस समय इटली के सीरिया में इंटर मिलान हाफ टाइम तक 3-0 से लीड कर रही है अगेंस्ट पामा। गोल कर्टेसी ऑफ सुसिच कन्हानोग्लू एंड मार्किस चुराम ऑन टारगेट। अभी फर्स्ट हाफ समाप्त हुआ ही नहीं है कि इंटर मिलान 3-0 से आगे है। और अभी एक फुल टाइम रिजल्ट ऑल्सो, जिनोवा ने फ्योरेंटिना को 2-1 से हराया और रात को नापोली खेलेगी फ्रोजिनोने के विरुद्ध। जबकि फ्रांस के लीग ए में खेल का ये 78वां मिनट है। लिल 1-0 से लीड कर रही है अगेंस्ट ले आव्र। रात को होगा मोनाको वर्सेस टुलूज और पेरिस सेंट जर्मेन, डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन खेलेगी अपने पार्क दे प्रिंस में ले मंस के खिलाफ। बता दें कि फ्रांस के लीग ए में अभी पेरिस सेंट जर्मेन कहाँ पर है? छठे पोजीशन पर है 5 मैचों के बाद। अभी उसके पास है 8 अंक, जबकि टॉप पोजीशन पे है लिल विद 13 पॉइंट्स। मोनाको के पास है 13 अंक। आज मोनाको अपना मैच खेलेगा रात को टुलूज के विरुद्ध और वो एक बार फिर टॉप पोजीशन पे आ सकती है। सो इज इट लास्ट फॉर द रोड? हाँ, लास्ट फॉर द रोड ये है। आपने साथ दिए इसके थैंक यू जुड़ने और चुनने के लिए। कल सुबह फिर मिलेंगे 7:30 AM शार्प ऑन रेडियो मस्ती फॉर न्यू मोर न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज। तब तक के लिए झंकार बीट्स में अपने साथ दिए इसके लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।

शुभरात्रि। और जाने से पहले एक मैसेज है उर्मिला फ्रॉम इटली, जय माता दी आपको भी, विश ऑल मॉरिशियंस फैमिली शुभ नवरात्रि। और अगला गीत आपके लिए, सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड कहां पर नमस्कार आपको भी। एंड लास्ट वन, आई जस्ट लव स्पोर्ट्स द स्पोर्ट्स शो एंड टॉप प्लेलिस्ट ओरिजिनल एंड या थैंक यू। ये किसकी ओर से, कीप दैट स्पिरिट, नाइस इवनिंग टू यू और शुभ रात्रि।

0: कार बीट्स।
1: वो नहीं आने वाली, आने वाली, आने वाली। वो बेवफा निशलावती, लावती, लावती।

गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करे। यू आर वेल ट्यून टू रेडियो मस्ती, इट्स योर सैटरडे नाइट एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मस्ती की रात में द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ओनली फॉर यू। इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स, व्हाटएवर यू माइट बी, घर पर होंगे, आराम फरमा रही होंगे, नवरात्रि की तैयारी चल रही है, सो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ इन गानों के जरिए बॉलीवुड की दुनिया में आपको ले चले हैं, वो भी रात्रि के 12 बजे तक।

की भागदौड़, जिम्मेदारियों और हजारों ख्यालों के बाद आखिरकार आ गई है वो ही खूबसूरत रात जो हमें खुद से मिलने का एक मौका देती है। थोड़ी देर के लिए दुनिया की फिक्र को साइड पर रखिए, आंखें बंद कीजिए, म्यूजिक को अपने दिल तक पहुंचने दीजिए, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, कुछ रातें सुकून महसूस करने के लिए भी होती हैं, जैसे कि आज की रात।

बाहर आसमान में चांद की रोशनी, हवा में ठंडक और फिजा में एक अजीब सी खामोशी, और इन सब के बीच अगर साथ हो एक खूबसूरत गीत तो रात और भी हसीन हो जाती है। तो दोस्तों, आज के सुकून भरी रात को अपने नाम कीजिए और म्यूजिक के साथ कुछ खूबसूरत पल जरूर बिताइए।

कभी हमें किसी जवाब की जरूरत नहीं होती है, मतलब बस थोड़ी खामोशी, थोड़ा म्यूजिक और कुछ पल अपने साथ गुजारने की जरूरत होती है। रात की खामोशी हमें वो ही मौका देती है, तो जो बातें दिल में हैं, उन्हें आज हवाओं के साथ बहने दीजिए और म्यूजिक को अपना हम सफर बनाइए।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.

रात होते ही अक्सर कुछ पुरानी यादें दिल के दरवाजे पर दस्तक देनी लगती हैं, है ना? कोई चेहरा, कोई मुलाकात, कोई बात या फिर कोई गीत, सब कुछ अचानक याद आ जाता है। लेकिन हर याद को उदासी से नहीं, एक खूबसूरत एहसास की तरह महसूस कीजिए। आज की रात उन्हीं प्यारी यादों के नाम।

थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती एंड म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो बिना कुछ कहे ही दिल की बात समझ लेता है। जब रात गहरी होती है और दुनिया धीरे धीरे खामोश हो जाती है तब एक मधुर गीत दिल के बहुत करीब महसूस होता है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, ज्यादा जोर नहीं, शायद पड़ोसी सो रहे होंगे, और अपने दिल को म्यूजिक की लहरों पर बहने दीजिए।

0: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musti.

दोस्तों हम पूरा दिन सबके लिए जीते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, काम, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, लेकिन रात के ये जो कुछ पल सिर्फ आपके लिए हैं। अपने आप को वक्त दीजिए, अपने दिल की सुनिए और जो कुछ भी दिल को परेशान कर रहा है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आज की रात बस सुकून के नाम कर दे।

रात और रोमांस, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। चांदनी, हल्की सी ठंडी हवा और बैकग्राउंड में एक रोमांटिक मेलोडी, क्या खूब कॉम्बिनेशन है ना। रात का अपना ही एक रोमांटिक अंदाज होता है। ये वो वक्त है जब दिल थोड़ा ज्यादा महसूस करता है और हर खूबसूरत गीत थोड़ा ज्यादा खास लगता है।

क्या होगा कल देखेंगे, आज की रात को कल की टेंशन में खराब क्यों करना भाई। जो हो गया उसे जाने दीजिए, जो आना है वो अपने वक्त पर आएगा। फिलहाल इस पल को महसूस कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए एंड म्यूजिक के साथ अपने दिल को थोड़ा सा हल्का कीजिए।

गीत में कितने हजारों एहसास होते हैं। कभी एक गीत हमें हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी किसी की याद दिलाता है और कभी दिल को अजीब सा सुकून दे जाता है। शायद इसीलिए म्यूजिक को दिल की जुबा कहा जाता है। तो आज के इस पीसफुल नाइट में एक ऐसा गीत सुनिए जो शायद आपके दिल की वो बात कह दे जो आप लफ्जों में नहीं कह पा रहे हैं।

हम भी सोचा करते हैं कि अगर ये संगीत म्यूजिक ना होता तो कैसे जिया जाता। दिन की रोशनी में हम अक्सर दुनिया को देखते हैं, लेकिन रात की खामोशी में हम खुद को देख पाते हैं, अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, अपनी यादें और अपने जज्बात, सब कुछ सामने आ जाता है। तो आज की रात खुद से एक छोटी सी मुलाकात कीजिए और अपने दिल को कहिए सब ठीक हो जाएगा।

सब अपनी जिंदगी में सुकून की तलाश करते हैं, कभी पैसों में, कभी सफलता में, कभी रिश्तों में, लेकिन कभी कभी सुकून बस एक छोटे से पल में ही मिल जाता है। एक कप चाय, एक प्यारा गाना, चांद को देखते हुए कुछ देर की खामोशी या किसी अपने की आवाज में। तो आज की रात इन छोटी छोटी खुशियों को जरूर महसूस कीजिए।

0: कोर्स वही घड़ी आ गई है गुड नाइट विद ब्यूटीफुल वाइब्स। यस, अब इस खूबसूरत रात को एक खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ाते हैं। दिन चाहे जैसा भी रहा हो, रात हमें एक नई उम्मीद देकर जाती है कि कल एक नया दिन होगा, नए मौके होंगे और नए सपने भी होंगे। तो दिल से सारी परेशानियों को थोड़ा सा साइड कीजिए, म्यूजिक को अपना साथी बनाइए और इस सुकून भरी रात को महसूस कीजिए। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दिल में सुकून संभाल कर रखिए। शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।
1: Careful what you wish for.

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।